नमस्कार, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 31 तारीख, तदनुसार 22 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग शु और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शु श्यान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदन वार विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: वंदन वार।

FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। हिंदी समाचार अब से कुछ ही देर बाद आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को

جداً. भूल करने में पाप तो है, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। ये कथन महात्मा गांधी का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

107.7 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब झरोखा में आपको बता दें कि आज इस फ्रीक्वेंसी पर आप कौन कौन से कार्यक्रम किस समय सुन सकते हैं।

अब से थोड़ी देर बाद 6:45 पर आप सुन सकते हैं संगीत सरिता। 7 बजे का वक्त रहेगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का। 7:30 पर आप सुन सकते हैं हम है राही प्यार के कार्यक्रम। देश और दुनिया का ताजा हाल जानने के लिए आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए सुबह 8 बजे। 8:15 का समय रहेगा कार्यक्रम त्रिवेणी का। 8:30 पर आप सुन सकते हैं चित्रलोक कार्यक्रम और 9:30 का समय रहेगा आज का अखबार कार्यक्रम का।

10 बजे पेश किए जाएंगे हिंदी समाचार। 10:05 पर सफर सुरीला सा कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 10:30 पर आप सुन सकते हैं पॉप टाइम कार्यक्रम।

म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम का आप आनंद उठा सकते हैं सुबह 11 बजे। 12 बजे पेश किए जाएंगे हिंदी समाचार। 12:05 का समय रहेगा यादों की महफिल कार्यक्रम का। दोपहर 1:05 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक हिंदी समाचार। 1:10 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक पंजाबी समाचार आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।

फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं 1:15 पर। 1:30 का समय रहेगा कार्यक्रम सुरीला सफर का। 2 आप सुन सकते हैं त्रिवेणी कार्यक्रम। 2:15 पर पेश किए जाएंगे हिंदी समाचार।

0: सदाबहार नगमे, ये आप सुन सकते हैं दोपहर 2:30 पर। 3 बजे का समय रहेगा मन चाहे गीत का। 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम पेश किया जाएगा और आज शाम 4 बजे आप पिटारा में सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज। शाम 5 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं 5:05 पर फिल्म संगीत पेश किया जाएगा। 5:20 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का। 5:30 पर आप सुन सकते हैं डॉक्टर नेमीचंद गोलिया, स्टेट लायसन ऑफिसर यूटी चंडीगढ़ से रमेश कपूर की बातचीत। 6 बजे हिंदी समाचार पेश किए जाएंगे। 6:05 पर फिल्मी गैर फिल्मी संगीत का आप आनंद उठा सकते हैं। 6:10 पर प्रादेशिक हिंदी समाचार और 6:20 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार पेश किए जाएंगे। 6:30 पर आप पंजाबी गीत का आनंद उठा सकते हैं। 6:45 पर ऑर्गन इंडिया प्रायोजित कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 7:00 आज आप सुनेंगे विशेष जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार। 7:47 पर पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। रात्रि 8:00 आप सुन सकते हैं हवा महल कार्यक्रम। 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 8:45 का समय रहेगा समाचार संध्या का। 9:00 आप सुन सकते हैं आपके लिए कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम पेश किया जाएगा। छाया गीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10:00। 10:30 पर प्रादेशिक मुख्य समाचार पेश किए जाएंगे और 10:32 पर सुर सांझ कार्यक्रम पेश किया जाएगा। श्रोताओं, ये तो है वो तमाम कार्यक्रम जो आज आप FM 107.2 MHz पर सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस का भाग 288 और आज आप सुनेंगे सुंदरकांड।

रावण की आज्ञा का अक्षरशः पालन हुआ, किंतु कपड़ा लपेटते घी तेल लगाते हनुमान की पूंछ लंबी होती गई। नगर के भंडार खाली हो गए। नगर में घुमा फिराकर जब पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान ने लघु रूप धारण किया और अटारियों पर जा चढ़े। 49 पवन चले, पवन पुत्र जैसे आकाश छू रहे हों। सारा नगर धू धू कर जल उठा। नगरवासियों में त्राही त्राही मच गई। पार्वती को यह कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जिन्होंने अग्नि की रचना की हनुमान उन्हीं के दूत थे, स्वयं उन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उलट पलट कर हनुमान ने सारा नगर जला दिया और तब जाकर समुद्र में कूद पड़े। तत्पश्चात वे सीता के सम्मुख उपस्थित होते हैं।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: नमस्कार, संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मैं रामकृष्ण दास स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम फिर उपस्थित हुए हैं तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्रा जी के साथ। मिश्रा जी
2: जी,
1: ताल प्रवाह पर कई तालों की चर्चा हो रही है। क्लासिकल में बहुत सारे तालों का नाम सुनते हैं, मत्त ताल, रुद्र ताल, पंचम सवारी, आड़ा चौताल, तिलवाड़ा वगैरह वगैरह। पिछली कड़ी में हमने लोक गीत पर आधारित, लोकगीत में या फिल्मी गानों में जो ताल काफी बजता है, दादरा का जिक्र
2: जी किया
1: आपने की थी, आपने बजाया भी है। और भी एक ताल फिल्म में खूब प्रयोग होता है, उस ताल के बारे में आप बताएं।
2: मैं समझ गया दास बाबू, जहां आपका जिस तरफ इशारा है। पिछली कड़ी में हम थे दादरा
1: जी,
2: और दादरा के बड़े भाई थे, उनका नाम था कहरवा ताल।
1: अच्छा
2: जी हाँ, हम बड़े भाई इसलिए बोले कि जो हमारे श्रोता हैं उन कलाकारों के लिए नहीं, जो सीखने वाले कलाकार हैं, जो हमें सुन रहे हैं
1: जी,
2: जो सीख रहे हैं, जिनको तबला गाना इंस्ट्रूमेंट या नाच सीखने का शौक है। मैं बड़ा भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब आपस में बड़े मित्र हैं, और जिसने तीन ताल को देख लिया
1: जी,
2: वो सारे तालों को देख लेगा, क्योंकि तीन ताल हर ताल का राजा है। और कहरवा उसका छोटा भाई है, आठ मात्रे का है वो
1: जी,
2: धागे न तीन का धीन।
1: और ये दादरा का बड़ा भाई इसलिए कि दादरा चूंकि छह मात्रे का है, इसलिए
2: दादरा को मैं जब
1: बहुत खूब
2: जी हाँ, जब मैं मंच पे बजाता हूँ, जब स्टेज पे बजाता हूँ अपने बेटे सत्यप्रकाश के साथ, तो हमारे कई प्रोग्राम में फारूक भाई रहे हैं, विनोद भी रहे हैं, तो मैं मनीषा जी इसको देता हूँ कि एक स्त्री कैसे चलती है, वो मैंने दादरा दिया है, क्योंकि दादरा का बड़ा सुंदर चलन था। आपको मैंने कल दिखाया था, कभी मंच पे आप मुझे सुनिएगा कि एक नारी कैसे चलती है, धात्र कधीना था तीना, और ठीक उसका बड़ा भाई धागे न तीना कधीना, उसका जरा चलन जरा वीर पुरुष है, थोड़ा सा पुरुष। तो देखिए, दादरा का बड़ा भाई हो गया कहरवा, और तीन ताल का छोटा भाई हो गया कहरवा।
1: वाह,
2: तो आज हम इस कड़ी में कहरवा ताल को लेके चलते हैं, जो आठ मात्रे का है।
1: क्या बात है,
2: और उसमें एक ताली एक खाली है।
1: वाह,
2: धा गे न ती खाली न धी न धा।
1: अच्छा, इस सिलसिले में मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा
2: जी,
1: कव्वाली में भी तो आठ मात्रे का ही कुछ ताल बजता है, कव्वाली ताल या उसका कुछ अलग नाम है?
2: नहीं, वही है, लेकिन उसकी स्पीड अलग होती है।
1: अच्छा
2: हाँ, इसमें बहुत से फिल्मी गाने भी हैं।
1: अच्छा, इसमें और भी एक मैं बात जानना चाहूंगा
2: जी,
1: ये कहरबा के जो ठेके होते हैं, किताब में कुछ लिखा होता है, लेकिन बजाते वक्त जैसे गजल में या कव्वाली में या भजन में या ठुमरी में ही अलग अलग ठेके बजते हैं, अलग अलग बोल होते हैं, उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को
2: बहुत
1: कुछ बताइए।
2: अरे बहुत सुंदर सवाल किया आप। देखिए क्या है, हमारा अंदाज तो वही है, इसके जो मेन ठेके हैं धा गे न ती न क धी न, अगर हम इसको किसी गजल के साथ या भजन के साथ बजाएंगे और अगर वही ठेका बजाएंगे तो वो उससे मैच नहीं होगा
1: जी,
2: उससे मैच नहीं होगा, इसलिए हम उसको प्रकार में पलटे में बजा के धा गे न ती न क धी न धा गे न। अब इसको हम थोड़ा सा अगर अंदाज

0: ये छपकी जो है ना, छपकी ये श्रेय जाता है नौशाद साहब को,
1: अच्छा,
0: एलपी साहब को, कि उन्होंने दादा कहरवा को छपकी में कैसे लिया। इसको कहते छपकी, जो धिरकिट हम बजाते हैं, देखिए वहीं से आया वो। है भाई अंदाज।
1: अच्छा, नाल में भी क्या तबले की अंदाज बसता है या
0: नहीं? नाल का अंदाज अलग हो गया, लेकिन ये आपस में बड़े अच्छे मित्र हैं।
1: क्या बात है,
0: ये आ गया उड़ीसी के साथ जो

0: पर है कहरवा का चलन है वो, है
1: लावणी,
0: लावणी, लावणी। तो हम आज आपके सामने छोटा सा कहरवा ताल में श्रोता इसका आनंद लीजिए, देखिए क्या आनंद है। विनोद जी एक छोटा सा कुछ मुखड़ा बजाएंगे, मैं उसी में आता हूँ
1: जरूर।

0: अब इसमें उड़ान, ये खास बनारस से आया है।
1: अच्छा,
0: ये बनारस में ही उड़ान बजाते हैं। उसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उस अपने गुरु लोगों का जिन्होंने उस चीज को पैदा किया है
1: जी।
0: कंठे बाबा किशन महाराज जी, उड़ान क्या चीज है
1: जी,
0: उसको कहते हैं ठीक।

0: ये था तहरवा का अंदाज।
1: बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या खूबसूरत चीजें आप हमारे श्रोताओं के लिए पेश कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है।
0: इसमें आपको बता दूं और श्रोताओं को बता दूं कि नौशाद साहब, एक बात बताना चाहूंगा। कई बार हम जब प्रोग्राम बजाते थे, मतलब बजाते हैं, जब नौशाद साहब जिंदा थे
1: जी,
0: उन्होंने मेरा एक कायदा सुना था धीरे धीरे करके तक
1: जी,
0: तो वो बैठे थे और बोले कि बेटा कालीनाथ, तुमने बायां और धीरघिट का बड़ा अच्छा अंदाज किया है। तो उनका मुझे आशीर्वाद मिला। उन्होंने एक पिक्चर गंगा जमुना, ताल कहरवा में ही है और राग है मिस्र पहाड़ी, हमारे रफी साहब ने गाए हैं। उसका गाना है, जरा सुर दे देना भैया। हो नैन लड़ जई हैं तो मनवा माँ कसक होई बे।

काल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी छठी कड़ी। जाने माने तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
1: अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: बीकू वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: हाँ, अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, सुबह का समय है, चाय का कप तो आपके हाथ में होगा ही, तो आइए इस चाय के कप के साथ सुबह की भीनी भीनी शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और साथियों के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने, और फिल्म का नाम न्यू दिल्ली।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।

शेवन रिजवी का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी धुन बनाई है एआर कुरैशी ने। आलम आरा फिल्म से गीत है और गीत को स्वर दिया है आशा भोसले ने।

0: रुपहले पर्दे की एक अभिनेता।
1: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि हाँ। तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है वो।
0: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार।
1: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी, सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
0: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
1: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
0: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज़, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शिरीन फरहाद, इस फिल्म का गीत आपने अभी सुना तलत महमूद की आवाज में। तनवीर नकवी ने इसे लिखा था और एस मोइंदर का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाजें, आवाज हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, तूफान और दिया। इस फिल्म से गीत रॉय की आवाजें, भरत व्यास का ने इसे लिखा है और वसंत देसाई का संगीत।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही

0: मौसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज थी आशा भोसले की, भरत व्यास के बोल, वसंत देसाई का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये गीत था फिल्म सिम सिम मर्जीना से। सुधा मल्होत्रा की आवाज थी, असद भोपाली ने इसे लिखा और एआर कुरैशी का संगीत। इसी के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम, हम हैं राही प्यार के, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। स्वीकार कीजिए नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं राजा रानी इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाजें दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में सुनिए ये अगला गीत, फिल्म का नाम मदहोश। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों में बेटी फिल्म का गीत, शकील बदायूनी की रच

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: कार्यक्रम हम है राही प्यार के, और आइए अब आपको सुनवाते हैं अप्रैल फूल, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन की धुन।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गुलशन बावरा ने इसे लिखा है, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं आप विविध भारती से सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर आप आज के फनकार में सुनेंगे फिल्मकार किशोर साहू पर आधारित कार्यक्रम, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, और इसी कार्यक्रम को रात्रि 9:30 पुनः सुना जा सकता है। इसी के साथ आज का हम है राही कार्यक्रम ये हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। देश और दुनिया का ताजा हाल जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, AI और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और एम्स्टरडैम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल

0: रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। पे तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
4: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति

0: को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हमको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारी

0: लोगों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.ue.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
1: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी ईगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, घमंड, हाँ घमंड यानी अहंकार, एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो अत्यधिक आत्मसंतुष्टि या अपनी उपलब्धियों जैसे कि धन, पद, रूप या ज्ञान के गलत इस्तेमाल से पैदा होती है। ऐसे लोग हर समय अपनी महानता साबित करने के लिए अक्सर दूसरों की कमियां निकालते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई इन्हें इनकी गलती बता दे तो ये बहुत जल्दी आक्रामक रुख अपनाने लगते हैं। ऐसे अहंकारी लोगों के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते क्योंकि वे दूसरों को सम्मान नहीं देते। ये लोग हर समय खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और उन्हें खुद से कमतर आंकते हैं। इन्हें हर जगह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की आदत होती है। देखा जाए तो अहंकार को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है।

0: ये दंभ हमारी बुद्धि और विवेक दोनों को भ्रष्ट कर देता है और अंततः ये व्यक्ति के पतन और विनाश का कारण बनता है।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा।

घमंड यानी अहंकार, जिस पर आज हम अपनी बात रख रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु इसलिए है क्योंकि ये आपकी यानी हमारी सीखने की क्षमता को नष्ट कर देता है, विवेक को भ्रमित करता है और रिश्तों में खटास पैदा कर देता है। जब किसी व्यक्ति में घमंड आ जाता है तो वह दूसरों के अनुभव और सलाह को कमतर आंकने लगता है और हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है। साथ ही ऐसे लोग हमेशा दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने का कोई अवसर ऐसे लोग नहीं छोड़ते। गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुणों द्वारा सब कर्म किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित अज्ञानी ये मान बैठता है कि मैं ही करता हूँ। बाइबल भी बार बार घमंड के खिलाफ चेतावनी देती है क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति अक्सर घमंड से भरा, आत्मकेंद्रित और दूसरों को तुच्छ समझने वाला होता है। लेकिन ये सभी बातें, ये सभी आदतें यानी ये अहंकार मसीह के स्वभाव के विपरीत है।

अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ये हम सभी जानते हैं। इसके विपरीत सरलता और विनम्रता हमारे सबसे सुंदर और प्रभावशाली आभूषण हैं। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हमारा वास्तविक व्यक्तित्व निखर कर आता है। विनम्रता न केवल हमें दूसरों को सम्मान दिलाती है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के दरवाजे भी हमेशा खुले रखती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। दुर्योधन, जी हाँ दुर्योधन, हर सलाह को साजिश समझता था, क्योंकि अहंकार सवाल सुन नहीं पाता। जो खुद को हमेशा सही माने उसका अंत अक्सर अकेला होता है। इसलिए याद रखें, हर व्यक्ति का अपना महत्व है। अहंकारी नहीं, विनम्र बनिए। दूसरों में कमियां खोजने के बजाय अपनी कमियों पर हमें नजर रखनी चाहिए। साथ ही हमें ये याद रखना चाहिए कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक छिपी हुई ताकत और महानता की पहली सीढ़ी है।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: रुपहले पर्दे की एक अभिनेता।
1: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि हाँ। तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है वो।
0: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार।
1: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी, सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
0: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
1: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
0: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में, कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और अब आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। श्रोताओं, सुबह का वक्त सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं बल्कि नई उम्मीदों और नई ऊर्जा का आगाज है। इसी खुशनुमा सुबह में कुछ दिलचस्प सवाल, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारा रोमांच लेकर हाजिर हैं आपकी अपनी दोस्त नेहा आगरकर देसाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। पहले आपको सुनवा रहे हैं

बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत आवाज विशाल ददलानी की, प्रशांत इंगोले ने इसे लिखा है और जैकी वंजारी का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

साथियों, कभी कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमेशा बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं होती। कभी प्यार से कही गई दो बातें भी किसी का पूरा दिन बेहतर बना सकती हैं। और हाँ, अगर आप अपने साथी का पसंदीदा गाना जानते हैं तो हो सकता है आप उसे वो सुनवा दें और वो उस छोटे से गाने को सुनकर ही खुश हो जाए। और यदि वो गाना आपकी आवाज़ में आप खुद गा दें तब भी आप अपने साथी को खुश कर सकते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो भी हमारे दिन को खुशनुमा बना देती हैं। आइए सुनते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म का गीत, अरिजीत सिंह की आवाज़ में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अम्बाला शहर। फोन 8950633224।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: हमारे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं प्रीतम के संगीत निर्देशन में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ ये गीत, आवाजें अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की, फिल्म का नाम दिलवाले।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बाघी फिल्म का गीत सुनिए मीत ब्रोज, अरिजीत सिंह, रोज किला और खुशबू ग्रेवाल की आवाजों में। इसे लिखा है कुमार ने, मीत ब्रोज का संगीत।

0: एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
1: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
0: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
1: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
3: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं हमारी अधूरी कहानी इस फिल्म का गीत, जिसे लिखा है कुणाल वर्मा ने, आवाज और संगीत अमी मिश्रा का।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस फिल्म का गीत आवाज अरमान मलिक की, मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा है, अमाल मलिक का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं शानदार फिल्म का गीत अमित त्रिवेदी और अमिताभ भट्टाचार्य की ने इसे लिखा है, अमित त्रिवेदी का संगीत और आवाज़। फिल्म का नाम शानदार।

0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कार्यक्रम आज का अखबार लेकर हाजिर हैं हम।
2: आज का अखबार।

श्रोताओ, कार्यक्रम आज का अखबार में मैं हूं आपके साथ रतीश कुमार। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों में बसता है, बल्कि सच माने तो हमारे देश का भविष्य आज हमारे ही आंगन में खेल रहा है, सीख रहा है और बड़ा हो रहा है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम न केवल बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, बल्कि उन्हें ऐसी परवरिश दें जो उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक चिंता ये भी है कि बच्चे धीरे धीरे खेल के मैदान से दूर और मोबाइल स्क्रीन के नजदीक होते जा रहे हैं। मोबाइल गेम, वीडियोस और सोशल मीडिया उनकी दिनचर्या का बड़ा हिस्सा बनते जा रहे हैं, जो उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर अनफिट कर रहे हैं। ऐसे में खेल बच्चों के जीवन में संतुलन लाने का एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। सोचिए, जब आपका बच्चा मैदान में खेलता है तो वो जिंदगी के जरूरी पाठ सीखता है। वो अपने साथियों से तालमेल बनाना, अपनी बारी का इंतजार करना, नियमों का पालन करना और जीत हार को स्वीकार करना सीखता है, और साथ ही सीखता है हारने के बाद जीत के लिए फिर से कोशिश करना। दोस्तों, बच्चों को कहना कि मोबाइल बंद करो हमेशा कारगर नहीं होता, इसलिए उन्हें विकल्प दें, उन्हें प्रेरित करें, उनका साथ दें। कभी हो सके तो उनके साथ खेलें, पढ़ाई भी हो, खेल भी हो और मोबाइल का इस्तेमाल भी संतुलित हो। तभी हमारे आंगन में खेलता आज का बच्चा कल देश का मजबूत भविष्य बनेगा। और दोस्तों, बच्चों की परवरिश में प्यार के साथ साथ थोड़ा अनुशासन भी जरूरी होता है। कई बार माता पिता की सख्ती बच्चों को अच्छी नहीं लगती, उन्हें अनुशासित रहना मुसीबत लगता है। ऐसे में बच्चों को समझाएं कि ये अनुशासन उन्हें जीवन में एक बेहतर इंसान और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा और वो अपने देश को कामयाबी की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनिए कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला। हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें अपनी फरमाइश भेजें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है AIR चंडीगढ़। तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
3: कार्यक्रम आज का अखबार का आप आनंद उठा रहे हैं, आइए अब आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से रूबरू करवा दें।

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई में जल आपूर्ति और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए किया समझौता। भारत ब्राजील के बीच टेलीकॉम और आईसीटी सहयोग पर समझौता, डिजिटल नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने देश भर में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की।

0: ग्रीस स्थित भारतीय दूतावास पहुंची इजरायली राजदूत, बोली हमारे सबसे अच्छे मित्रों में से एक भारत। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत बढ़ाएगा ऑयल रिफाइनिंग क्षमता, 300 MMTPA का लक्ष्य। भारतीय शोधकर्ताओं ने कैंसर की संभावित जड़ का पता लगाने के लिए जेन AI प्लेटफॉर्म का किया विकास। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग रविवार यानी 23 अगस्त को नई दिल्ली में मनाएगा अपना 32वां स्थापना दिवस। भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने BWF विश्व चैंपियनशिप में चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और भारतीय महिला पहलवान काजल धोचक ने अंडर 20 2026 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में दूसरी बार जीता स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलहाल बस इतना ही।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: बातें मुझे
1: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
2: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम आज का अखबार का आप आनंद उठा रहे हैं, आइए अब आपको क्षेत्रीय सुर्खियों से रूबरू करवा दें।

पंजाब सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 2024 बैच के 10 प्रशिक्षार्थी आईएएस अधिकारियों को जिलों में सौंपी नई जिम्मेदारी। पंजाब में बाढ़ में ढहे 500 सरकारी स्कूलों को मिलेंगे नए ग्रीनफील्ड भवन। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब में भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। पंजाब के स्कूलों में अब युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने गतिविधि कैलेंडर किया जारी। पंजाब सरकार ने बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए

0: परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने और कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने के संदर्भ में लिए अहम फैसले। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर साइंस विषय के स्नातकोत्तर शिक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण के परिणाम किए घोषित। हरियाणा में विकास कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और उनकी निगरानी मजबूत करने के लिए सरकार ने हरियाणा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल किया शुरू। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों से पुराने ट्रकों और बसों को हटाने की प्रक्रिया की तेज। एनसीआर के जिलों में BS1 से BS4 श्रेणी के ट्रकों और बसों के मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने SOS और नियमित विद्यार्थियों की सितंबर और अक्टूबर में प्रस्तावित परीक्षाओं के लिए 167 परीक्षा केंद्रों का किया गठन। और हिमाचल प्रदेश में मॉनसून पड़ा कमजोर, आने वाले दिनों में मौसम में नरमी रहेगी। क्षेत्रीय सुर्खियों में फिलहाल बस इतना ही।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: कार्यक्रम आज का अखबार का आप आनंद उठा रहे हैं और आइए अब आपको रूबरू करवा दे क्या कुछ हो रहा है आपके आसपास, क्या कुछ हो रहा है खास बताएं आपको स्थानीय समाचारों के माध्यम से। चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 26 की मंडी में फिर शुरू होगी पेड पार्किंग, एंट्री पर कटेगी पर्ची, पहले 15 मिनट होंगे फ्री। आठवां सेंट्रल पे कमीशन 16 से 18 सितंबर तक चंडीगढ़ दौरे पर रहेगा। कमीशन से मीटिंग के इच्छुक स्टेक होल्डर्स 25 अगस्त तक अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। यूटी पुलिस के 669 जवानों को पर्सनल रैंक पर मिलेगी प्रमोशन। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इलेक्शन से पहले सिक्योरिटी की गई सख्त, एंट्री के लिए आई कार्ड और वाहनों पर स्टिकर होना जरूरी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में गरज चमक के साथ बारिश और बौछारों का अनुमान जताया। और जीएमसीएच 32 में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के एमबीबीएस में दाखिले की प्रक्रिया हुई तेज, एमबीबीएस दाखिले की काउंसलिंग 24 और 25 अगस्त को। स्थानीय सुर्खियों में फिलहाल बस इतना ही।
1: लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, परेड थम, जवान पीछे से गाना गाएगा।

0: इस गीत के साथ अब रतीश कुमार को कार्यक्रम आज का अखबार समाप्त करने की दीजिए इजाजत।
1: आज का अखबार।
0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आपसे कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: आकाशवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के लिए राज्य सरकार की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास शिक्षा कौशल रोजगार उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने बताया है कि संशोधित नियमों के तहत इस महीने की 20 तारीख तक कुल 29 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव शामिल हैं। ये निवेश सूचना प्रौद्योगिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूचना और संचार विनिर्माण फार्मास्यूटिकल डेटा केंद्र और परिवहन सेवाओं सहित

0: कई क्षेत्रों के लिए है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। यह सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग कल नई दिल्ली में अपना 32वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले उपस्थित रहेंगे। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टल फेन में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगापथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। अम्स्टल फेन में एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप के अपने पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। वक्त है कार्यक्रम सफर सुरीला सा का। आइए आगाज करते हैं कार्यक्रम का दे दे प्यार दे फिल्म के गीत के साथ। आवाज अरिजीत सिंह की, गीत के बोल कुणाल वर्मा के हैं, संगीत से सजाया है अमाल मलिक ने।

0: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
1: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
0: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
1: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
2: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
3: कार्यक्रम सफर सुरीलासा में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का गीत, सुकृति कक्कड़, मन्नत नूर और रोचक कोहली की आवाजों में। कुमार के बोल हैं, संगीत रोचक कोहली का।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: कार्यक्रम सफर सुरीला सा का आप आनंद उठा रहे हैं, आइए अब आपको सुनाते हैं तेरी भाभी है पगली फिल्म का गीत मिक्का और आनिया की आवाजों में। फिल्म के गीत के बोल अतिल सईद ने लिखे हैं और संगीत से सजाया है अनामिका चौहान ने।

SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.

मोहल्ला 80 फिल्म का आपने गीत सुना मधुश्री और उदित नारायण की आवाजों में। गीत के बोल गुलजार के थे, संगीत अमोद भट्ट का। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म से श्रेया घोषाल और विशाल डडलानी की आवाजों में। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत अजय अतुल का।

और कार्यक्रम का आखिरी गीत स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म से देव नेगी, पायल देव और विशाल डडलानी की आवाजों में। गीत के बोल वायु के, संगीत विशाल और शेखर का।

0: इस गीत के साथ अब कार्यक्रम सफर सुरीला सा समाप्त करने की दीजिए इजाजत।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। वक्त है कार्यक्रम पॉप टाइम का।

0: पॉप टाइम प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार।
1: हेलो मेरे मालपूड़े जैसे मिठे पाजी।
0: हेलो पिंके, आज तुमने मुझे पूड़े जैसा बना दिया, पर अभी तक तुमने मुझे एक भी पूड़ा नहीं खिलाया।
1: नानके आए हैं सावन के महीने में मेरे गोलू मोलू पाजी। और मैं कौन सा आपकी नानी हूँ जो पूड़े तल तल के खिलाऊंगी आपको टीडी टी करके।
0: ओहो पिंके, तुम तो शुरू ही हो गए।
1: पाजी मैं कौन सा बारिश हूँ जो शुरू हो गई टीडी टी करके।
0: ओहो पिंके, तुम नहीं सुधरोगे।
1: पाजी सुधार के आपने कौन सा मुझे पूड़े खिला देने हैं टीडी टी करके। वैसे पाजी अब मुझे बाद में सुधारना, पहले श्रोताओं को गाना सुना दो, नहीं तो फिर कहेंगे बातें ही करते रहते हैं गाना तो सुनाते नहीं टीडी टी करके।

0: चुल।
1: पिंके आज शन्नो जी नहीं आई?
2: ओए होए पाजी, 3600 काम है शन्नो जी को। हाँ, शन्नो जी नहीं आई। आपने कौन सा सोने की मोरे दे देनी है या मीठे पूड़े ताल ताल के खिलाने हैं शन्नो जी को? शन्नो जी नहीं आई। वाह जी वाह, हम तो जैसे बंदे ही नहीं है यहाँ पे।
1: ओहो पिंके, तुम भी ना?
2: क्या भी ना पाजी?
1: पिंके आजकल तुम सैर नहीं करते, देखो कितने मोटू हो रहे हो।
2: क्यों पाजी, आपको मेरे मोटापे का बिल आया है GST ला के?
1: पिंके मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ।
2: ओए होए पाजी, पता है आपको शन्नो जी ने तो मेरी सैर के लिए ऑनलाइन एक चिब्बा सा छोटा सा कुत्ता भी मंगवा दिया है, टी-टी-टी करके।
1: चिब्बा सा छोटा सा कुत्ता? मैं कुछ समझा नहीं पिंके, कौन सा?
2: ओए होए पाजी, वही जो टीवी में एड करता है, मशहूरियां करता है। इस चिब्बे छोटे से कुत्ते का आजकल बड़ा रिवाज है। हाँ, जिसे देखो बस हाथ में लाल सा पटा लेके उसको लेके सड़कों पे निकल जाते हैं। मकान की किस्त दी जाए ना दी जाए, स्कूटर मोटरसाइकिल की गड्डी की किस्त दी जाए ना दी जाए, बस ये चिब्बा छोटा सा कुत्ता जरूर लेके जाएंगे सैर करने, टी टी टी करके।

0: सैर के लिए कुत्ता?
1: हाँ जी बाजी, मैंने कहा ना शन्नो जी ने ऑनलाइन मंगवा के दिया है ये चिब्बा सा छोटा सा कुत्ता सैर के लिए।
0: अच्छा, कुत्ते भी ऑनलाइन मिलने लगे हैं?
1: हाँ जी बाजी, कहाँ आप 2G के जमाने में जी रहे हैं यार, 4G बनो 4G। पाजी, एक दिन शन्नो जी कहने लगी चलो जी सैर करके आओ, बड़ी टॉर्श और बनेगी।
0: अच्छा, फिर बनी तुम्हारी टॉर्श और?
1: पाजी, मैं पार्क में सैर करने चला गया, वहाँ किसी ने मुझे देखा तक नहीं यार, कहानी पाई। लोग उन लोगों को देख रहे थे जो अपने कुत्तों के साथ आए थे सैर करने। ओए होए, बड़ी मोटी सामी लगती हैं ये कुत्तों के साथ सैर करने आए हैं भाई।
0: अच्छा।
1: हाँ जी भाजी, मैंने शन्नो जी को ना सारी कहानी सुनाई आगे, भी वहां तो मुझे किसी ने देखा तक नहीं, कहानी पाई मुझे। बस शन्नो

0: मनोजी ने फटाफट अपना मोबाइल उठाया और दो तीन दिन बाद
1: क्या हुआ पिंके?
0: पाजी शन्नो जी कहने लगी, उठो जी दरवाजे में तेल चोवो, देखो हमारे घर कौन आया है।
1: कौन आया था?
0: छींकों की आवाज। पाजी मैंने सोचा सोन जुकाम आया है।
1: पर क्या पिंके?
0: पाजी मैंने बाहर देखा, ओए होए एक छोटा सा चिब्बा सा कुत्ता जो टीवी में ऐड करता है, पाजी वो भौंक रहा था और भौंक ऐसे रहा था जैसे सोन जुकाम छींके मारता है। और जैसे सोन जुकाम ने अपने जुकाम की रिंग टोन इस कुत्ते में ट्रांसफर कर दी है, टीडी टी करके।

0: अच्छा, शन्नो जी ने टीवी में ऐड करने वाला वो छोटा सा कुत्ता मंगवा के दिया है तुम्हें सैर करने के लिए। फिर पिंके, तुम उस डॉगी के साथ गए सैर करने, क्या हुआ, लोगों ने तुम्हें देखा अजीब नजरों से?
1: पाजी, आप भी ना, दे सवाल पे सवाल, 14 सवाल पूछ चुके हैं। कौन बनेगा सैरपति, खेल रहे हैं मेरे साथ टीडी टी करके।
0: ओहो पिंके, बताओ ना, गए थे तुम उस नए कुत्ते के साथ सैर करने, क्या हुआ?
1: पाजी, जब मैं कुत्ते के बगैर सैर करने गया तो किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं यार, किसी ने कहानी पाई। जैसे ही मैं इस चिब्बे कुत्ते के साथ सैर करने गया, लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं बड़ी तगड़ी चीज हूँ। ओए होए पाजी, हर सैर करने वाले की नजर मुझ पर, बड़ी पैहे वाली पार्टी लगती है। टीवी वाला कुत्ता लेके सैर करने निकले टीडी टी करके।
0: अच्छा, इसका मतलब ये है कि इस छोटे से कुत्ते ने तुम्हारी टॉर्च और बना दी।
1: पाजी, मैं सैर कर ही रहा था इस चिब्बे से कुत्ते के साथ, तभी एक बंदा आया और कहने लगा,
2: भाई साहब, ये वही कुत्ता है ना जो टीवी में ऐड करता है।
1: क्यों, तुमने इससे ऑटोग्राफ लेना है टीडी टी करके?

0: भाजी, कुल मिला के लोग सैर कट करते हैं, शोशेबाजी ज्यादा हो गई है, टीड़ी टी करके।
1: हाँ पिंके, आजकल लोग दिखावा ज्यादा करने लगे हैं। चलो खैर, मौसम औसम हो रहा है।
0: हाँ जी भाजी, अब देखे ना, बारिश का मौसम है, कई लोग तो इसे बहुत एंजॉय करते हैं, पर दूसरों का ध्यान भी रखते हैं।
1: हाँ पिंके, पूड़े शूड़े खाते हैं, खिलाते हैं, पर अभी तक तुमने मुझे पूड़े नहीं खिलाए।
0: क्यों, नानके आए हैं? भाजी एक दिन बारिश हो रही थी, मैं अपनी दिलरुबा, ओहो हमारी मोपड़ी यार, उस पर मैं ना पूड़े लेने जा रहा था, तभी
1: क्या हुआ पिंके?
0: भाजी एक टोए, मेरा मतलब है गड्ढे में ना बारिश का पानी भरा था एन फुल, एक कार वाला बड़ी तेजी से आया और
1: क्या,
0: उस गड्ढे का गंदा मंदा कीचड़ वाला पानी सीधा मेरे ऊपर। और ठहर तू, ओए हम बंदे नहीं, सारा गंदा पानी मेरे ऊपर डाल दिया टीड़ी टी करके।
1: ओहो
0: क्या, चच चच भाजी। आगे जाके कार रुकी और खिड़की में से उस कार के ड्राइवर ने ना अपनी सिरी बाहर निकाल ली और हंस के बोला,
2: मौसम ऑसम है, आनंद लो जी आनंद।
1: अच्छा, एक तो गंदे पानी के छींटे डाल दिए तुम्हारे ऊपर, और पिंके तुमने उसे कुछ नहीं कहा?
0: पाजी मैंने कहा ना, ओए ऑसम, कार से बाहर आ। कार से बाहर आके ना पूरा आनंद लो इस औसम मौसम का।
1: अच्छा फिर?
0: पाजी वो औसम बाहर आया कार से, जहां वो खड़ा था ना वहीं पर एक और

0: गड्ढा था जिसमें बारिश का ढेर सारा पानी भरा था। मैंने उस गड्ढे में दो पत्थर मारा और गंदे पानी के छींटे उस ऑसम के ऊपर टीड़ी टी करके वो कहने लगा,
1: ये क्या
0: मौसम ऑसम है, पूरन आनंद लो गंदे पानी और कीचड़ का टीड़ी टी करके।
2: ओहो पिंके, एक तो उस कार वाले ने गलती की और दूसरी तुमने। पिंके, जब भी ऐसे बारिश हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गंदे पानी के छींटे सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों पर ना पड़े। कोई दफ्तर जा रहा है तैयार होके, कोई अपने काम पे जा रहा है, क्यों परेशान करना किसी को।
0: हाँ जी बाजी, कुल मिला के खुशगवार मौसम में खुद गवार ना बने टीड़ी टी करके। दूसरों का भी ध्यान रखें। पाजी, अब आप फटाफट श्रोताओं का ध्यान रखो और गाना सुनाओ, नहीं तो फिर कहेंगे बातें ही करते रहते हैं, बातें ही करते रहते हैं, गाना तो सुनाते नहीं टीड़ी टी करके।

0: मेछी पाजी अब मैं जाऊँ, चन्नो जी के बगैर मेरा दिल उदास हो गया है, टीरी टी करके।
1: हाँ हाँ पिंके जरूर।
0: अच्छा पाजी, ओके बाय।
1: बाय पिंके। श्रोताओ, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपनी राय जरूर दें। अब आज का पॉप टाइम प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पॉप टाइम।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: FM 107.2 MHz पर लेकर हाजिर है आपके लिए कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमें अपनी फरमाइश लिखकर भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर AIR चंडीगढ़ पर। तो चलिए आगाज करते हैं कार्यक्रम का दो रास्ते फिल्म के गीत के साथ। फरमाइश करते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। इसके अलावा कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबराय सुनना चाहते हैं इसी फिल्म का गीत।

0: सिर्फ ₹1 में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
1: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
0: और ₹2399 का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
1: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
0: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
0: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने

0: मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी एक से तीन मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: तो कहिए अपने शहर अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस का आप आनंद उठा रहे हैं और अगला गीत जो हम तक रिक्वेस्ट आई है वो है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा नमस्कार लिखकर भेज रहे हैं और सुनना चाहते हैं इस फिल्म का गीत। इसके अलावा किसी भी फिल्म का कोई भी गीत सुनने के लिए हम तक रिक्वेस्ट आई है। नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा की। तो चलिए आपकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत।

म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे हैं। और अगली फरमाइश हम तक आई है पवन कनौजिया, वंदना कनौजिया, गरिमा कनौजिया की श्री आनंदपुर साहिब से। सुनना चाहते हैं आशिकी फिल्म का गीत।

म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है 20 साल बाद फिल्म का गीत सुनने के लिए ललिता पाल हुकमचंद ईशु निशु दुधला मंडी अंबाला कैंट से।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे हैं और अगली फरमाइश हम तक आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से. टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल वर्मा, जय सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज की सुनना चाहते हैं जोशीला फिल्म का गीत. इसके अलावा हितेंद्र दास स्टेट आसाम से किसी भी फिल्म का कोई भी गीत सुनने के लिए हम तक फरमाइश भेज रहे हैं.

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे हैं और अगली फरमाइश हम तक आई है। घर फिल्म का गीत सुनने के लिए फरमाइश करता है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी से, महाराष्ट्र

कार्यक्रम में अगली फरमाइश धर्मवीर फिल्म के गीत की आई है। पंचकुला सेक्टर 21 से मोहम्मद अनस और मोहम्मद अरहान सुनना चाहते हैं इस फिल्म का गीत। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गरबी और बेबी बॉय हिमाक्ष।

म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे हैं और एक दूजे के लिए फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। फरमाइश करने वाले हैं पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। इसके अलावा इसी फिल्म का गीत सुनने के लिए हम तक फरमाइश आई है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो की।

म्यूजिक हैशटैग इंस्टा पे इस कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे हैं और अगला गीत सुनना चाहते हैं नगीना फिल्म से। फरमाइश करता है झांसला पिंड राजपुरा से विक्रांत बहल, अब्दुल बारिक, इंद्रपाल सिंह, अभिषेक चतुर्वेदी, गुरप्रीत कौर और मोहम्मद असलम। इसके अलावा इसी फिल्म का गीत सुनने के लिए हम तक फरमाइश आई है गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवाशहर पंजाब से सुरेंदर संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रतीक्षा संधु और मैक्स की। नगीना फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप।

और कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं रॉकी फिल्म के गीत के साथ। सुरेंद्र कुमार, माधुरी सिंह, आराध्या सिंह, अनंत कायरा, अंबेडकर कॉलोनी ढकोली, जिला मोहाली से इन्होंने हमें फरमाइश भेजी है। इसके अलावा इसी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार।

ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी भी इस कार्यक्रम में गीत सुनना चाहते थे। साथ ही रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, देवांशु गुलाटी, चित्रांशु गुलाटी, दीपांशु गुलाटी सेक्टर 9 पंचकुला से भी फरमाइश हमें भेजी थी। सतीश कुमार, सुनीता कुमारी, कृष्णा शर्मा, निहारिका और शेरी शर्मा सेक्टर 42 भी चंडीगढ़ से इनकी फरमाइश आई थी। मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद कादिर, मोहम्मद रफी, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अली हुसैन सेक्टर 12 ए पंचकुला से फरमाइश भेजी थी। साथ ही अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुचि सिंह पाठक, विनोद पुरी ने भी हमें फरमाइश भेजी थी।

दोस्तों, समय की कमी की वजह से हम कई श्रोताओं का गीत अपने इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उनका नाम लेना चाहेंगे। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जगदेशपुरी।

0: इस गीत के साथ हम रतीश कुमार को कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस से यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस, इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। हिंदी समाचार अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। 57वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है ताकि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के

0: कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम काम नहीं कर पाया। इससे टरबाइन की गति अचानक बढ़ गई और इसमें विस्फोट हो गया। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में बढ़ते तापमान और पर्याप्त कूलिंग व्यवस्था नहीं होने की जानकारी प्रबंधन को पहले से ही दी गई थी, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टर्डम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: कुछ दिल ने कहा।
1: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
0: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
0: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ

परवीन सुल्ताना की आवाज थी कुदरत फिल्म का ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ था। संगीत आर डी बर्मन का, विविध भारती पर चल रही है यादों की महफिल।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: यदु की महफिल कार्यक्रम में अब चश्मे बद्दूर फिल्म का गीत येसुदास और हेमंती शुक्ला।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी।
3: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी, हाँ।
3: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं, अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
4: है ना? बोलो, बोलो।
3: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

था लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित किए जाएंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफ़र। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा दिन में 2 बजे। 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे। कार्यक्रम मनचाहे गीत प्रसारित किया जाएगा 3 बजे। 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम में नाटक सुनिए जैसी करनी वैसी भरनी। लेखक हैं रोमी शिराज, निर्देशक मुद्रा राक्षस। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज। आज इस कार्यक्रम में अभिनेता आलोक गाडेकर से बातचीत सुनवाई जाएगी। शाम 5:20 पर कार्यक्रम होगा, प्रायोजित कार्यक्रम होगा लम्हे। 5:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। आज इस कार्यक्रम में स्टेट लाइजन ऑफिसर यूटी चंडीगढ़ डॉक्टर नेमीचंद गोलिया से बातचीत सुनवाई जाएगी। शाम 6:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया। संगीतकार कल्याण जी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला सुनिए शाम 7 बजे। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 पर, रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे सुनो कहानी के अंतर्गत गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला का पहला भाग प्रसारित किया जाएगा। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का ही कार्यक्रम फिल्मकार किशोर साहू पर केंद्रित रहेगा।

0: और रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज रात तक प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
2: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
1: सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरेमाइन मेलेट और फिनाइल एफरीन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। यह निर्णय विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के बाद लिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने हरियाणा में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। व्यापारियों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करना और अपने वर्तमान स्टॉक की घोषणा करना तुरंत प्रभाव से अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही व्यापारियों को हर शुक्रवार पोर्टल पर नियमित रूप से अपने स्टॉक का विवरण अपडेट करना होगा। भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार चीनी व्यापारियों के लिए नई स्टॉक सीमाएं तय की गई हैं। इस नए नियम के तहत अब कोई भी व्यापारी चीनी के स्टॉक को प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के अधिक समय तक नहीं रख पाएगा। इसके अलावा किसी भी व्यापारी को किसी भी स्थान या समय पर अधिकतम 4000 क्विंटल यानी 400 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने राज्य में चीनी की कीमतों और आपूर्ति की निरंतर निगरानी का आश्वासन देते हुए आम जनता से घबराकर अनावश्यक खरीदारी या जमाखोरी न करने की अपील की है। यह विशेष आदेश 30 नवम्बर 2026 तक लागू रहेगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि पोर्टल पर पंजीकरण न कराने,

विलंब करने या गलत और अधूरी जानकारी देने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का त्वरित व प्रभावी ढंग से लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हरियाणा में इस प्लेटफॉर्म पर किसानों का पंजीकरण करने का लक्ष्य अगले 3 दिन में पूरा किया जाएगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, ए आकाशवाणी हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। सरकार ने कहा है कि देश कोल खंड दा काफी भंडारे आते घरेलू जरूरतां नूं पूरा करन लई कोई कमी नहीं है। खपतकार मामले खुराक अते जनतक वंड मंत्रालय ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तियां विच खंड दी कीमत 48 रुपए तो वध के करीब 55 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। सरकार कीमतां ते लगातार नजर रख रही है। कीमतां नूं कंट्रोल करन लई सरकार ने खंड व्यापारियां ते 400 टन दी भंडारण हद लागू कीती है। यह हद 1 अगस्त तो 3 नवंबर तक लागू है। सरकारी विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल पटियाला दे अध्यापक श्री दिनेश कुमार ने सिक्ख्या खेत्र विच मिसाली योगदान लई वक्कारी कौमी अध्यापक अवार्ड 2026 जीत के पंजाब का नां रोशन कीता है। जिक्र योग्य कि यह अवार्ड जो कि देश भर विच अध्यापकां लई सर्वोच्च सम्मानां विचों इक है, सिक्ख्या दे खेत्र विच बेमिसाल कारगुजारी, नवीं विचारां अते समर्पित भावना नूं मानता दिंदिआं हर साल 5 सितंबर नूं अध्यापक दिवस मौके भारत दे राष्ट्रपति वल्लों प्रदान कीता जांदा है। श्री दिनेश कुमार नूं वधाई दिंदिआं पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने उन्हां नूं सूबे दे समुच्चे अध्यापक भाईचारे लई प्रेरणा स्रोत दस्सिआ। सैर सपाटा ते सभ्याचारक मामले विभाग पंजाब ने दस्सिआ है कि सूबा सरकार श्री गुरु रविदास जी दे 650वें प्रकाश पुरब नूं पूरी श्रद्धा ते धार्मिक जाहो जलाल नाल मनाउण लई लड़ीवार ढंग नाल साल भर चलण वाले धार्मिक, सभ्याचारक, विद्यक अते समाजिक प्रोग्राम करवा रही है। इस बारे जानकारी दिंदिआं विभाग दे सलाहकार श्री दीपक बाली ने दस्सिआ कि समागमां दे हिस्से वजों पंजाब दे सारे विधानसभा हलकियां नूं कवर करदिआं 92 ड्रोन शो कराए जाणगे जो इन्हां समागमां दा मुख आकर्षण होणगे। इह शो 3 कलस्टरां मालवा, दुआबा ते माझा विच करवाए जाणगे जो 1 सितंबर तों शुरू होणगे। इह ड्रोन शो आधुनिक तकनालोजी राहीं श्री गुरु रविदास जी दे जीवन, सिक्ख्यावां ते फलसफे नूं पेश करनगे अते नौजवान पीढ़ी नूं गुरु जी नाल संबंधित अध्यात्मिक ते अमीर सभ्याचारक विरसे नाल जोड़न लई इक ढुकवां मंच प्रदान करनगे। जलंधर विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध SIR 2025 तहत 12 सितंबर तक दावे अते इतराज़ प्राप्त करने लई चल रही मुहिम दौरान जिले के सारे स्कूलों ते कॉलेजों विच पढ़ते 18 साल जां इस तों वध उमर दे योग विद्यार्थियों की वोट बनाउण लई विशेष कैंप लाए जाणगे। डिप्टी कमिश्नर ते जिला चोण अफसर वरजीत वालिया ने इस बारे जानकारी देंदिआं दस्सिआ कि उन्हां जिले दीआं सारीआं विद्यक संस्थावां नूं हदायत कीती है कि योग विद्यार्थियों नूं वोटर वजों रजिस्टर करन लई आपणे आपणे विद्यक अदारिआं विच समें समें ते विशेष कैंप लाए जाण तां जो कोई भी योग वोटर अंतम वोटर सूची प्रकाशन विच शामिल होण तों वांझा ना रहि जावे। श्री वालिया ने भी कहा कि विद्यक अदारिआं विच बणे इलैक्टोरल लिटरेसी क्लबां अते कैंपस अंबैसडरां राहीं वध तों वध विद्यार्थियों नूं आपणी वोट बनाउण लई जागरूक कीता जावे। कैनेडा दी अल्बर्टा दे गुरुद्वारे विच 2 व्यक्तियां ते चाकू नाल हमला कीता गया। यह हमला ब्याह दीआं रस्मां तों पहलां सवेर दे दीवान दौरान होया दस्सिआ जा रिहा है। यह घटना एडमंटन दे उत्तर पूर्वी बार इलाके विच स्थित नानकसर गुरुद्वारे विखे तड़के 5 बजे वापरी। एडमंटन पुलिस ने दस्सिआ कि यह घटना 14 स्ट्रीट अते हॉर्स हिल रोड नेड़े वापरी है। पुलिस मौके ते पहुंची ते शक्की व्यक्ति नूं गिरफ्तार कर लिया। जख्मियों दा इलाज कीता जा रिहा ते उन्हां दी हालत स्थिर है। घटना दे कारणां दा पता नहीं लग्गिआ है। कैनेडा दे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने हमले की निखेधी करदिआं पीड़ितां ते सिख भाईचारे प्रति संवेदना प्रगट कीती है। विश्व अंगदान दिवस के मौके ते RG अस्पताल लुधियाना वल्लों अंगदान की अहम लोड़ प्रति लोगों नूं जागरूक करन अते जीवन रक्षक ट्रांसप्लांट प्रक्रियावां नाल जुड़े भरम भुलेखिआं नूं दूर करन लई शहर पदरी जागरूकता कार रैली कराई गई। इस रैली नूं मुख मेहमान डॉ. रमनदीप कौर, सिविल सर्जन लुधियाना वल्लों RG अस्पताल के ओके डॉक्टरां ते किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके मरीजां दी हाजरी विच फिरोजपुर रोड लुधियाना स्थित RG अस्पताल तो हरी झंडी दिखा के रवाना कीता गया। एक काफिला शहर के प्रमुख रूटां तो हुंदा होया चंडीगढ़ रोड लुधियाना स्थित होटल रीगल ब्लू विखे जा के समाप्त होया। पंजाब पुलिस दीआं टीमां ने नशियां विरुद्ध अपनी मुहिम युद्ध नशा

FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं दीवाना फिल्म के गीत से। आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आंधी फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: आंधी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: FM 107.2 MHz पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
2: जल्दी गाना खत्म हो गया। जो अच्छे गाने होते हैं उनके खत्म होने पर यही लगता है, अरे ये गाना खत्म हो गया। एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारा सबसे नजदीकी शहर अयोध्या है, जहां राम की पौड़ी पर 12 महीने नहाते भीगते पिकनिक का मजा लीजिए, पुण्य कमाइए। एक और श्रोता है जो अपने जलंधर शहर के आसपास के घूमने के इलाकों के बारे में बता रहे हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो नर्मदा जी काफ़ी ऊपर तक आ चुकी हैं और शासन ने मना किया, उसके बावजूद लोग पुल पार कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये कह रहे हैं कि बनारस में बारिश के समय 3 जगहों पर सब लोग पिकनिक करते हैं, सबसे पहले सारनाथ, फिर नमो घाट और फिर बनारस का 80, फिर क्या मजा है, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आप भोपाल आ जाइए, कोलार डैम चलते हैं, जंगल में चलते हैं, पिकनिक मनाएंगे, बहुत मजा आ जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि बीते 3 महीनों से हम पुणे में हैं, लोनावाला, तमहिणी घाट, अनेकों झरने और इस बार तो इंद्रदेव पूना पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। और जहां तक बारिश में भीगने की बात है तो हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है शकील आजमी, वो कहते हैं खुद को इतना मत बचाया कर, खुद को इतना मत बचाया कर, बारिशें आए तो भीग जाया कर, क्या समझे आप। एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि बारिश में भीगना तो होता है पर कभी कभी आंसू भी भिगो देते हैं, जज्बाती बात इन्होंने लिखी है। एक श्रोता लंदन में है जो बारिश का इंतजार कर रही हैं और कहती हैं कि इतनी गर्मी कि बगीचे की घास तक सूख गई है। एक और श्रोता है जो इंदौर में है, लिखती हैं कि मांडू बहुत आसपास है और वहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि मैं और मेरे पतिदेव जब भोपाल में मिलते थे तो बड़े तालाब के किनारे हाथों में गर्मा गर्म भुट्टा और फिर भीगने का मज़ा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे शहर के आसपास कारहांडला का जंगल है और ताडोबा है, पिकनिक मनाने के लिए बड़ी सुंदर जगह है। तो इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि किस तरह से उन्हें भीगने में मज़ा आता है और कैसे उनके घर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां बारिश के दिनों में मनाया जा सकता है पिकनिक। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो सागर शहर में पिकनिक मनाने की जगहों के बारे में लिख रही हैं। एक श्रोता हैं जो गोरखपुर में हैं और लिखते हैं कि रामगढ़ ताल गोरखपुर में बारिश में घूमने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बिल्कुल अब तो वहाँ जो चलने के लिए जगह बन गई है वो भी बड़ी सुंदर है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं जयपुर में आमेर, जलमहल, नाहरगढ़, जयगढ़, क्या बात है। तो भैया सारे देश की जो बारिश की शानदार जगह हैं उनके बारे में हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पिकनिक मनाया जा सकता है। खंडवा के पास हनुमंतिया टापू है, बैक वाटर का बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट, वहाँ भी बहुत मज़ा आता है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि 5 और 6 जुलाई को बहुत बारिश हुई और हम लोग मारवे बीच चले गए, बिल्डिंग की पूरी टोली गई थी पर भीगने नहीं दिया गया क्योंकि रेड अलर्ट लगा था। बिल्कुल समंदर जब चढ़ा हुआ हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, बारिश में दुर्घटनाएँ भी बहुत होती हैं। चलिए आज सुबह से आपके होठों पर कौन सा गाना तैर रहा है?
3: रंगीला रे,
2: क्या ये गाना इस गाने की गीतकार कौन है ये आपको है बताना।
3: रंगीला
2: और हाँ ये भी बताइए कि आपने सबसे सबसे अभी अभी कौन सी फिल्म देखी, नई या पुरानी, एकदम अभी।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: चाहे वो नई हो या पुरानी हो, तो कितनी मजेदार फिल्मों का इंद्रधनुष सज गया। बिल्कुल ताजा ताजा रिलीज हुई फिल्मों में से भी कुछ देखी है। अब जैसे एक श्रोता है जिन्होंने अपना देश देखी है, एक और श्रोता है जिन्होंने पुरानी वाली खामोशी देखी है, यानी वो खामोशी जिसमें गाना है हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू या तुम पुकार लो। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने दोस्ती देखी है, वाह वाह वाह, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत वाली दोस्ती। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बटवारा 2 देखी है और आवरापन 2 या 3 जो भी है वो देखी है। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने टैक्सी नंबर 9211 उनकी देखी हुई आखिरी फिल्म है। एक श्रोता है जिन्होंने परख फिल्म देखी है और उनके होंठों पर सजा हुआ है गाना मिला है किसी का झुमका, वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात है। इसके अलावा आज का अर्जुन फिल्म कोई श्रोता है जो देख रही थी और लाइट चली गई। और इसके अलावा दीवाना मस्ताना कोई देख रहा है, कोई देख रहा है हम साथ साथ हैं, दो आंखें बारा हाथ, साहब बीवी और गुलाम। और इसके अलावा मैं वापस आऊंगा। और इसके अलावा देखिए मेरे

महबूब, ओहो हो, नमकीन, गुलजार साहब की फिल्में भी कितने सारे लोग देख रहे हैं, और इसके अलावा भागम भाग, जंगल और कुदरत। देखिए सिर्फ नाम अगर पढ़ें तो कितने सारे लोग क्या क्या फिल्में देख रहे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक बार लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, सोचा था रास्ते में बारिश होगी, गाने बजेंगे, मौसम रोमांटिक होगा, बारिश हुई, गाने बजे पर रोमांस की जगह पीठ ने आवाज लगाई, पहले कुछ खाने का इंतजाम करो फिर आगे बढ़ना, आखिरकार मंजिल से पहले एक ढाबा मिल गया, तो समझ में आया कि कुछ सफर पेट के रास्ते भी तय किए जाते हैं। मजाक की बात लेकिन दिलचस्प। और इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अलग अलग तरह की फिल्में देख रहे हैं, जैसे एक श्रोता है जिन्होंने स्पाइडरमैन देखी है, उसके अलावा देखिए कितनी फिल्में भाई, आराधना कोई देख रहा है, कोई गाइड देख रहा है। गाइड से एक चीज याद आ गई, आज गाइड फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति का जन्मदिन है, मार्को की भूमिका निभाई थी, उनकी याद का दिन आज है। कौन है वो कलाकार ये बताइएगा। योगेश के बोल आ रहे हैं। अब जाहिर है कि सवाल ये तो नहीं होगा, इस गाने के संगीतकार बताइए।

इस गाने के जरिए योगेश जी बहुत बहुत बहुत याद आया, आपके इस दोस्त को उनके साथ बहुत वक्त बिताने का मौका मिला है, और एक बेमिसाल इंसान, सादा लेकिन कितने गहरे गीतकार, कभी उनके बारे में बातें की जाएंगी। एक श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि गाइड के मार्को यानी किशोर साहू जी, उनकी याद का दिन है। जी हाँ, किशोर साहू

उनकी याद का दिन आज 22 अगस्त 1980 को उनका निधन हुआ था। और किशोर साहू मध्य प्रदेश के राजनांदगांव के रहने वाले थे और वहां से मुंबई आए और एक्टिंग की दुनिया में तो नाम कमाया, लेकिन वो एक निर्देशक भी थे और फिल्म लेखक भी थे। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने कुछ फिल्में लिखी और इसके अलावा कई फिल्मों का निर्देशन भी किया है। क्या आपको पता है कि किशोर साहू की निर्देशित मशहूर फिल्में कौन सी हैं? एक फिल्म मैं बताता हूं, बाकी आप बताइएगा। हरे कांच की चूड़ियां किशोर साहू के निर्देशन वाली फिल्म थी। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मायूसी में गाने सुबह पर आते हैं, बड़ी बड़ी सुनी सुनी सी है जिंदगी, किसका रास्ता देखें, जिंदगी देने वाले सुन। एक श्रोता हैं जो कहते हैं अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा। और इसके अलावा कहानियां सुनाती है पवन नाती जाती, ये एक श्रोता को बहुत ज्यादा पसंद है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज तो जैसे गानों का रिवीजन हो रहा है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि इंदौर में एक पुराना सिनेमा घर है मिल्की वे, जिसकी छत पतरे की थी और बारिश आने पर अलग ही पार्श्व संगीत बजता था। अब मुझे तो जावेद साहब के बोल याद आ गए, बजता है जल तरंग टीन की छत पे यूं। शायद इसी तरह के किसी एहसास के लिए उन्होंने लिखा होगा, बजता है जल तरंग टीन की छत पे यूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि किशोर कुमार की मखमली आवाज, योगेश के दार्शनिक बोल, राजेश रोशन का ये संगीत, ये गाना अपने आप में अनमोल है। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे श्रोता अभी भी किशोर साहू को याद कर रहे हैं, मार्को जिनकी याद का दिन आज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अनमोल गाने की तरफ बढ़ते हैं जो एक बहुत नाजुक से एहसास को बयां करता है। सवाल यह है कि इस गाने को किसने लिखा।

0: एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शायद ये गीत का मालूम रूही ने लिखा है, जो गलत जवाब है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि भाई ये गाना जो है ये कैफ भोपाली का लिखा गाना है और ये सही जवाब है। कैफ भोपाली एक बहुत ही नामी शायर, अगर आप मुशायरों के शौकीन रहे हैं तो वो ये गज़ल जो है बहुत तरन्नुम में सुनाया करते थे। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, और तिरछे तिरछे तीर नज़र के लगते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, और आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक समाना लगता है। ये कैफ भोपाली बहुत ही मशहूर वयोवृद्ध शायर भोपाल के, और उन्होंने ये गाना लिखा था, बहुत ही मशहूर गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, एक गुजराती कमेंट है जिसे मैं ट्रांसलेट करके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो मुझे मिल गया। वो जिस तरह से लिखा है, मैं अगर ये लिपि पढ़ने की कोशिश करूँ तो लिख रहे हैं कि मुझे तो उदास गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आए तुम याद मुझे जब जब बहार आई, इस तरह के गाने पसंद हैं। देखिए मैंने गुजराती लिपि भी पढ़ ली। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज की तेज प्रश्नावली जो है और दिलकश गाने हैं, शुक्रिया। और इसके अलावा चिलमन का अंदाज, आनंद बख्शी ने भी चिलमन पर एक गाना लिखा है, सही पहचाना है आपने, उस गाने की बाद में करेंगे। इसके अलावा मन्ना डे का भी एक चिलमन वाला गाना है, अगर आपको याद हो तो जिक्र कीजिएगा यहाँ पर। एक श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि धुएं की लकीर का एक गाना लोकप्रिय हुआ था, तेरी झील सी गहरी आंखों में कुछ देखा है। एक श्रोता है जिन्हें मुझे करेक्ट किया है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हम पुराने ज़माने के लोग हो गए, उस ज़माने में राजनांदगांव मध्य प्रदेश में हुआ करता था, आपने सुधार किया, शुक्रिया राजनांदगांव छत्तीसगढ़।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: और प्रीत पराई, मुझे क्यों लग रहा है कि दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू की निर्देशित, यस दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू की निर्देशित फिल्म है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा शुक्रिया इन तमाम जवाबों के लिए। अगला गाना आ रहा है और ये बताइएगा कि फिल्म प्यासा आपने कितनी बार देखी है।

0: दिल को सजा दे।
1: एक श्रोता लिखती हैं कि प्यासा फिल्म बार बार देखी है फिर भी मन में प्यास रह जाती है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग श्रोता हैं। एक श्रोता ये हैं जो कहते हैं कि सबसे दिलचस्प लगेगा जब आखिर में आप कहेंगे अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। आपको कैसे अंदाजा लगा कि आखिर में यही गाना बजेगा, क्योंकि यही गाना तो हमने रख छोड़ा है आखिर में बजाने के लिए। एक दौर था जब दूरदर्शन पर रविवार को फिल्म आया करती थी और रविवार को जो फिल्म आती थी उसका बहुत इंतजार रहता था। उस दौर में देखी गई जो सबसे यादगार फिल्म थी आपकी वो कौन सी थी, ये बताइएगा। दूरदर्शन के जमाने में जो रविवार की सबसे यादगार फिल्म होती थी, एक झलक इस गाने की बजा रहे हैं क्योंकि इस गाने का एक अंश आज की इबारत में था और उसके बाद आपसे विदाई लेने वाला वो गाना जिसके बारे में अभी अभी हमने कमेंट पढ़ा।

ये गाना जैसे रोमांच पैदा कर देता है। शैलेंद्र के ये बोल, सली चौधरी के तर्स, बेमिसाल गाना है। इस गाने को काटते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसे शामिल करने का मन था। और अब वो गाना जो आप सभी से ये कहने की इजाजत देता है कि अब हम चलते हैं।

0: त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, घमंड, हाँ घमंड यानी अहंकार, एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो अत्यधिक आत्मसंतुष्टि या अपनी उपलब्धियों जैसे कि धन, पद, रूप या ज्ञान के गलत इस्तेमाल से पैदा होती है। ऐसे लोग हर समय अपनी महानता साबित करने के लिए अक्सर दूसरों की कमियां निकालते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई इन्हें इनकी गलती बता दे तो ये बहुत जल्दी आक्रामक रुख अपनाने लगते हैं। ऐसे अहंकारी लोगों के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते क्योंकि वे दूसरों को सम्मान नहीं देते। ये लोग हर समय खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और उन्हें खुद से कमतर आंकते हैं। इन्हें हर जगह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की आदत होती है। देखा जाए तो अहंकार को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है क्योंकि ये दंभ हमारी बुद्धि और विवेक दोनों को भ्रष्ट कर देता है और अंततः ये व्यक्ति के पतन और विनाश का कारण बनता है।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा।

घमंड यानी अहंकार, जिस पर आज हम अपनी बात रख रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु इसलिए है क्योंकि ये आपकी यानी हमारी सीखने की क्षमता को नष्ट कर देता है, विवेक को भ्रमित करता है और रिश्तों में खटास पैदा कर देता है। जब किसी व्यक्ति में घमंड आ जाता है तो वह दूसरों के अनुभव और सलाह को कमतर आंकने लगता है और हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है। साथ ही ऐसे लोग हमेशा दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने का कोई अवसर ऐसे लोग नहीं छोड़ते। गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुणों द्वारा सब कर्म किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित अज्ञानी ये मान बैठता है कि मैं ही करता हूँ। बाइबल भी बार बार घमंड के खिलाफ चेतावनी देती है क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति अक्सर घमंड से भरा, आत्मकेंद्रित और दूसरों को तुच्छ समझने वाला होता है। लेकिन ये सभी बातें, ये सभी आदतें यानी ये अहंकार मसीह के स्वभाव के विपरीत है।

अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ये हम सभी जानते हैं। इसके विपरीत सरलता और विनम्रता हमारे सबसे सुंदर और प्रभावशाली आभूषण हैं। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हमारा वास्तविक व्यक्तित्व निखर कर आता है। विनम्रता न केवल हमें दूसरों को सम्मान दिलाती है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के दरवाजे भी हमेशा खुले रखती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। दुर्योधन, जी हाँ दुर्योधन, हर सलाह को साजिश समझता था, क्योंकि अहंकार सवाल सुन नहीं पाता। जो खुद को हमेशा सही माने उसका अंत अक्सर अकेला होता है। इसलिए याद रखें, हर व्यक्ति का अपना महत्व है। अहंकारी नहीं, विनम्र बनिए। दूसरों में कमियां खोजने के बजाय अपनी कमियों पर हमें नजर रखनी चाहिए। साथ ही हमें ये याद रखना चाहिए कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक छिपी हुई ताकत और महानता की पहली सीढ़ी है।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। प्रतीक्षा समाचारों की।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

0: सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया के साथ 2 विदेशी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया। इसमें 22 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर की जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटल कोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटल कोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान PLI योजना से की।
2: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी

0: की और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज MT सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज MV 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
2: 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वॉशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले 2 छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
3: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवरस्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातू मार्ग जाम कर दिया। मैं

0: रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
2: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14,00,000 लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर हैं और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बास बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
4: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फेन और झांगशू जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडेम में भारत का सामना शाम 7:30 से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिलामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

सुन के मत वाले काले बादलों का शोर।

0: मजू सुल्तानपुरी के बोलते एस डी बर्मन की तर्ज अच्छा भोसले की आवाज जाता
1: रिमी छिमी बरसे पानी आज मोरे अंगना रिमी छिमी

0: सुनहरे खाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: अभिनेत्री फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में था, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा। सुनिए उनकी जिंदगी उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी। मन चाहेगी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो भाई, मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू किया जाए। और आप सभी श्रोताओं की चिट्ठियां आई हैं। नागपुर जिला पाटन सावंगी से गजानन लिखार, मनोज लिखार और संचना लिखार, महमूद आरिफ, आरिफ फातिमा, एम एच शरीफ, आरिफ हुसैन और साथियों की चिट्ठी रामना हल्ली बेंगलोर से आई है। और ये जो चिट्ठी है, मौजे गोवर्धन जिला वाशिम से रविंद्र पवार, मीना पवार और श्रीकांत की है। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और महेंद्र जैन की चिट्ठी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश। और इसके अलावा हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन, न्यूटन चिकली परासिया, छिंदवाड़ा से अनिल वाघ, संगीता वाघ, रविंद्र वाघ, वंदना वाघ, अंकेश वाघ, अनुतेश वाघ और ऋतिक वाघ की फरमाइश पर ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गुलजार, राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम आंधी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है,

0: मिलन
1: विविध भारती पर आप मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और जी हाँ बिल्कुल सही झलक सुनाई दी आपको, यही गाना आगे बजने वाला है। लेकिन पहले उन श्रोताओं के नाम तो आपको बता दें जिनकी चिट्ठियां हमें मिली हैं। पुणे से पंकज वडोदे, आर्या, प्रियंका, वीटी वडोदे और चंद्र प्रभा वडोदे, और ये चिट्ठी अलंकार मार्केट देवा से मकबूल हुसैन बोहरा, मुस्तफा हुसैन और नजमुद्दीन की है। बाबू रामानंद, बीना आनंद और खुशी आनंद ने नंदग्राम गाजियाबाद से हमें खत लिखा है। रामगंज खंडवा से विजय मोहबिया, कविता

महोबिया और प्यारे बाबू और गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज और प्रमोद, आनंद रत्नानी, अजय रेखा रत्नानी, अभय भाग्या और मीरा रत्नानी ने नर्मदापुरम से इस गाने की फरमाइश भेजी है। सुनते हैं ही रांझा फिल्म का गाना।

अगले गाने के लिए आप सभी की फरमाइश आई हैं। छत्तीसगढ़ बेमित्रा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, सुनील कुमार, वीरेंद्र सारथी, रुद्र कुमार और व्रिज कांत सारथी। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहू, रंजीत कौर मन्नत, गुरकीरत और गुरुशब्द सिंह राहुल। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हरिया बाजार पूर्णिया से दिलीप कुमार सेंचुरी, बिमला रानी सेंचुरी, शिम्पी रानी साह, सुरेश लाल साह और अमित राजा। और ये फरमाइश आई है कर्नाटक बेंगलोर से मेनका नतारा की। इसके अलावा जी यही एक नाम है और अनीता, प्रीति, येसु और निसार की फरमाइश है। और कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन और दीपक जैन की लुधियाना पंजाब से फरमाइश हमें मिली है। इसके अलावा एक और चिट्ठी, और वो चिट्ठी भेजी है पूरे बाकड़े परिवार ने, जिसमें पवन कुमार, ज्योतिताई, संतोष राव बाकड़े शामिल हैं अकोला से। और ये है आपकी पसंद का गाना, फिल्म का नाम है अनजाना।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
1: हाँ जी वादा।
4: मंचाई गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगली फरमाइश है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनकर, रेणु जीनकर, अजय प्रिंस और कुलदीप की शाहूनगर यवतमाल से, राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, स्वीटी बेबी प्रियांशी, कस्बा हरदुआगंज अलीगढ़ से, मुन्ना खानसारी, शहीद अहमद, नफीस अंसारी, अनाविया अजान और अयान, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, रहीम मुन्ना, महीन फातिमा, अदीब, दानिश, आसिफ, जोहरान शेख, मालवा मिल कंपाउंड इंदौर से परमिंद्र कुशवाहा, कैलाश कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, मंजू चौहान और कामिनी चौहान। कलाकार फिल्म का गाना, इंदीवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज, किशोर कुमार की आवाज।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सभी की फरमाइश है, महादेव डोंगरे राधा नगरी कोल्हापुर से। ये श्रोता संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके साथी घंटाघर चौक खंडवा के श्रोता हैं। काटोल नागपुर से सुरेश मलमकार, श्रीमती रजनी मलमकार। ये फरमाइश बीड़ शहर से रंजीत कुमार, नामदेव थोरात, रितेश, आकाश, रंजना, रश्मि और गबरू पहलवान की, महेंद्र सटकरकडे, विजया सरकटे और मिलिंद वरुण जौल का से, और वर्धा से दिलीप खैर का, शोभा रविंद्र सारिका और स्वरा।

0: विविध भारती।
1: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक जैसी करनी वैसी भरनी। लेखक रोमी शिराज, निर्देशक मुद्रा राक्षस।

0: सुभद्रा सुभद्रा,
1: ये मकान मालिक तो कुछ करता नहीं, इतने दिन से कहा जा रहा है, छत तक ठीक नहीं करवाई, अब देखो ये देखो जगह जगह से टपक रही है।
0: अरे मैं कहता हूँ तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? शाम को जो चाट खाई थी लगता है बहुत खराब थी, खाकर और तबीयत खराब हो गई।
1: तुम्हारी तो तबीयत ही खराब रहती है।
0: अरे ऊपर कुछ ऐसी आवाज हुई जैसे कोई कूदा हो।
1: अरे तेज हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा।
0: हा?
1: तुम भी बस बुढ़ापे में लगता है ज्यादा सुनने लगे हो।
0: क्या क्या क्या, अरे अरे अरे जी जी जी जी, क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? मैं बूढ़ा कब से हो गया जी है? कब बूढ़ा हुआ मैं? कौन आ गया?
2: कौन? जीवनलाल जी यहीं रहते हैं क्या?
3: अरे भाई दरवाजा खोलिए।
0: कौन है देखूं तो जरा?
2: कौन है?
0: अरे पुलिस?
2: जीवनलाल जी आप ही हैं?
3: हाँ यही है जीवनलाल जी। अरे बाबा बहुत गंडगोल हो गया है। तुम्हारा जो फादर था ना,
0: हाँ।
3: वो हमारा पागल खाने में सुसाइड कर लिया।
0: क्या?
3: ये इंस्पेक्टर साहब बोलता है उसका लाश को आइडेंटिफाई करना है।
0: हाँ।
3: अभी चलना है।
0: अच्छा अच्छा चलता हूँ, जरा कपड़े पहन लूँ, अभी आया।
1: बात क्या है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं?
0: पागल खाने से इंस्पेक्टर साहब खबर लाए हैं।
1: पागल खाने से क्या?
0: पिताजी ने आत्महत्या कर ली है।
1: आत्महत्या?
0: हाँ।
1: जब तक जिंदा थे तब तक तो हमारे लिए मुसीबत थे ही, अब मर कर भी चैन नहीं लेने देंगे।
0: अरे ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। लाओ देखो मेरा छाता कहाँ रखा है, लाओ जरा।
1: अरे अरे इस आंधी तूफान में कहाँ निकले जा रहे हो, कल सुबह चले जाना।
0: अरे बेकार की बातें मत करो, अभी जाना होगा मुझे, इंस्पेक्टर साहब लेने आए हैं मुझे।
1: लो अब उनकी वजह से द्वारे पुलिस आकर भी खड़ी हो गई।
0: बकबक बंद करो, देखो भाई छाता कहाँ रखा है, और सुनो कुछ पैसे भी दे देना। मेरा कुर्ता कहाँ रख छोड़ा है?
1: कुर्सी के पीछे टंगा तो है।
0: हाँ हाँ
1: ये लीजिए।
0: हाँ हाँ अच्छा सुनो मैं चलता हूँ, वो गुड्डू के हाथ अपने देवर को भी खबर भिजवा देना।

0: आइए, इस तरफ से आइए।
1: जी, वेरी सैड, वेरी सैड। वो कल दोपहर से ही गायब था, आज पागलखाना का पीछा का कुआं से उनका लाश को निकला गया। शायद वो कुआं में कूद कर ही उन्होंने जान दे दिया। हाँ, अंदर है। ओरे बाबा, तुम्हारा फादर, माय गॉड, अजीब मैन था, माय गॉड, कल से गायब। इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, माय गॉड, पता नहीं कब कुआं में गिर गया।
2: कुएं में कूद गया। अरे डॉक्टर,

0: साहब आपको अपने रोगियों का ख्याल तो रखना चाहिए।
1: ओरे बाबा की रकम बात करता है तुम आ? हम सभी का पुआर ख्याल रखता है, खाना कपड़ा।
0: हाँ सब जानता हूँ, खाना कपड़ा। अरे इस तरह का खाना तो शायद जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे, और कपड़ा शायद ही किसी मानसिक रोगी को कपड़े पहने देखा हो हमने।
1: माय गॉड, जब पागल लोग अपना कपड़ा फाड़ देगा तो कोई कितना बार पहनाएगा।
0: अरे डॉक्टर साहब आपके पास तो हर चीज का जवाब हाजिर है।
1: जीवनलाल बाबू ये सब बात तो होता रहेगा, पहले आप डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब आप चलिए, हम कल सुबह इनको थाने भेज देगा।
2: अच्छा
0: कितनी बदबू है यहाँ।
1: देखिए इनको पहचानता है?
0: जी जी यही है, यही मेरे पिताजी हैं। इनका इनका ये शरीर इतना फूल कैसे गया?
1: तुम्हारा फादर? माय गॉड, ऐसा पागल तो हमने अपना लाइफ में कभी नहीं देखा। कभी बोलता हम पागल नहीं, कभी बोलता हम पागल हाँ है। कई बार पांच पांच दिन खाना नहीं खाता, और कभी जितना दो बोलता और लाओ, नहीं देने से सब कुछ तोड़ता फोड़ता। ओ ओ देखो ओ खिड़की का ग्लास सब उसी ने तोड़ा, माना करा तो हम पर अंडा खींच कर मारा। रियली ही वाज ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए लूनेटिक।
3: मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे बेटा को घर आकर लिए, उन्होंने मुझे यहाँ बंद कराया है, मैं पागल नहीं हूँ।
1: ओरे बाबा ये यहाँ कहाँ से आ गया? ए, तुम उधर चलो, उधर चलो तुम।
3: मैं पागल नहीं,
1: यहाँ राजा हो तुम काम बोलता है।
3: पागल नहीं हूँ,
1: चलो बाहर जाओ।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये कौन है?
1: पागल है, इसका लड़का लोग छोड़ गया था।
0: हाँ लड़का लोग छोड़ गया था।
1: हाँ
0: लेकिन लेकिन देखने से तो पागल नहीं लगता।
1: हाँ नहीं लगता, पर हाय ठीक आपका फादर की तरह तो नहीं लगता। हा? पर हाय
0: हाँ हाँ लेकिन लेकिन मेरे पिताजी तो पागल थे ना, वो तो पागल थे। हाँ
3: मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरे बेटे को पकड़ो, पकड़ो, उन्होंने बंधा मुझे।
1: अब आप घर जाइए, समझा? बारिश भी थम गया है ना, और कल सुबह थाने में पहुंच जाइएगा। हाँ
0: जी खुश बाबू आप ऐसा करिए, आप जाइए, मैं थोड़ी देर यही पिताजी के पास बैठूंगा।
1: अरे बाबा यहाँ बैठेगा? ठीक है ठीक है, तो तुम बैठो, हम फिर जाता है। हाँ हम जाता है।
0: पिताजी ये आपने क्या कर डाला, क्या कर डाला आपने पिताजी।

0: पिताजी, पिताजी ये आपने क्या कर डाला?
1: क्यों, क्या हुआ?
0: इतनी मुश्किल से प्रॉपर्टी डीलर ने दो लोगों को राजी किया था, वो आए और आपने उनसे बात तक नहीं की।
2: मुझे नहीं बेचना है अपना मकान। जानते हो कितनी यादें जुड़ी हैं इस घर से।
0: 40,000 में खरीदे इस टूटे फूटे मकान के 15 लाख रुपए देने को तैयार हैं होटल वाले।
2: 50 लाख भी अगर दे तब भी नहीं बेचूंगा, और फिर इस उम्र में 15 लाख लेकर करूंगा क्या मैं?
0: पिताजी मेरा नहीं तो कम से कम अपने पोतों का तो ख्याल कीजिए आप।
2: उनका ख्याल तुम करो जीवन, वो तुम्हारे बेटे हैं।
0: पिताजी आप कुछ समझिए तो सही।
2: क्या समझूं, क्या समझूं मैं?
0: 15 लाख में इस मकान को बेचकर किराए का मकान ले लीजिए, कुछ पैसा बैंक में डाल दीजिए और
2: क्या?
0: और फिर पिताजी मुझे भी तो नए सिरे से अपना बिजनेस जमाना है, कुछ पैसा मुझे भी दे दीजिएगा, भले ही उधार दे दीजिए।
2: अपने रिटायरमेंट के पैसे से 30,000 मैंने दिए हैं।

0: तुम दोनों भाइयों को?
1: 30,000? अरे 30,000 में तो पिताजी बाहर एक छींका भी नहीं आता है।
0: होश में रह के बात करो जीवन।
1: होश में तो पिताजी आप नहीं है, मैं चाहूं तो कानूनन अपना हिस्सा ले सकता हूं आपसे।
0: क्या? तो फिर कान खोल कर सुन लो जीवन, मैं ये मकान नहीं बेचूंगा। और यही कह देना छोटे से भी, ज्यादा बहस की तो सारा मकान किसी संस्था को दान कर दूंगा।
1: अरे अरे अरे अरे, आप तो काफी लंबी सोच के बैठे हैं पिताजी। मैं भी देखता हूं आपके सपने कैसे पूरे होते हैं।
0: क्या मतलब, क्या चाहते हो तुम?
1: आग लगाना चाहता हूं इस घर को। यही चाहते ना, तो लीजिए, ये रही माचे।
0: जीवन, पागल हो गया तुम?
1: हाँ हाँ,
0: बिल्कुल पागल हो
1: गया हूं मैं। पागल, मकान बेचकर दो मुझे पैसे, वरना रोककर तुम अभी इस कबाब खाने को। मैं
0: बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ छोड़ माचिस को।
1: नहीं,
0: मैं कहता हूँ माचिस मुझे
1: नहीं छोड़ूंगा।
0: छोड़ दे माचिस,
1: नहीं छोड़ूंगा।
0: जीवन, माचिस
1: और लगा दूंगा इस घर को। जो चीज मेरी नहीं है वो फिर किसी की भी नहीं हो सकती।
0: नीच बेहुदे, बाप से हाथापाई करता है, छोड़ माचिस मैं कहता हूँ।
1: पकड़ो, लो पकड़ो ये माचिस, काम आएगी तुम्हारे कभी।
0: हे भगवान, इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था मैंने तुम दोनों को।
1: अरे इस बात की क्यों धौस मारते हैं आप? कौन बाप नहीं पढ़ाता लिखाता अपनी औलादों को?
0: इस तरह की औलाद से तो बे औलाद ही होना ठीक था। पता नहीं मेरे किस जन्म का पाप हो तुम दोनों भाई।
1: क्या पता कौन किसका पाप है। अरे मेरा मतलब है, अंजनी को देखिए, नई फैक्ट्री के लिए 7,00,000 रुपया दिया है उसके बाप ने उसे।
0: अंजनी, अंजनी जैसे अगर तुम होते ना जीवन, तो 7,70,00,000 का इंतजाम करता मैं तुम्हारे लिए।
1: पता नहीं क्या जिद है आपकी। देखिए पिताजी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये मकान आपको बेचना है या नहीं?
0: एक ही जवाब तुम कितनी बार सुनोगे जीवन?
1: ठीक है, तो मैं भी आपकी जिद तोड़वा करके ही दम लूंगा।
0: हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो जीवन, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुमको। और ये मकान भी किसी संस्था को दान कर दूंगा। कान खोल कर सुन लो, और ना सुन सको तो निकल जाओ इस घर से।
2: अरे पिताजी, क्या हो गया?
0: अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अपने भाई के साथ बैठकर फैसला कर लो। अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहो, वरना निकल जाओ तुम भी। और ये भी, मैं शाम तक वापस आऊंगा।
2: अरे क्या बात हो गई भैया?
1: अरे वही उनकी पुरानी जिद, घर नहीं बेचेंगे।
2: ओ, तो क्या बात ज्यादा बढ़ गई थी?
1: अरे ज्यादा, ये तो कहो संपत मैं ही अपने पर काबू किए था, वरना आज तो
2: इस तरह काम नहीं चलेगा भैया। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दुकान खरीदने के लिए मेरी भी बात चल रही विवेक नगर में। मेन मार्केट में ही दुकान है और 3,00,000 रुपया पगड़ी मांग रहा है। अगर ये मकान बिक जाए तो मजा आ जाए। वो होटल वाले आए थे?
1: अरे आए थे, 15,00,000 रुपए दे रहे थे।
2: 15,00,000? फिर
1: जी, बात ही नहीं की इस बुढ़ो ब, ब, ब, ब, तुम्हारे बाप ने।
2: आखिर क्यों?
1: नहीं बेचेंगे। अरे हम सबकी कब्र जो बननी है यहाँ।
2: 15,00,000? तब तो मैं वो कोनी वाली बड़े दुकान भी ले सकता हूँ। 4,50,000 रुपए पगड़ी है उसकी। ओफो, इस समय पता नहीं कौन आ गया। कौन है भाई?
3: अरे भाई मैं हूँ अवधेश।
2: पता नहीं कहाँ से आमर आइए।
1: सुनो, पैसे वैसे उधार मांगे तो मना कर देना।
2: अरे पहले पिछला उधार चुकाए तो।
3: अरे क्या हो रहा दोस्तों, बड़ा मुंह लटकाए बैठे हो।
4: भाभी जी कहाँ?
1: भाभी तुम्हारी बाजार तक गई हैं।
3: बड़े दुखी नजर आ रहे हो, क्या हुआ?
1: अब क्या बताएं यार अवधेश, हम दोनों को पैसे की जरूरत है। पिताजी से मकान बेचने को जब भी कहते हैं मानते ही नहीं। बस आज इसी बात को लेकर काफी बकझक भी हो गई। आज तो उन्होंने हम दोनों को घर से निकल जाने की भी धमकी दी है। समझ में नहीं आता यार क्या करें। धमका रहे हैं कि ये मकान किसी संस्था को दान कर देंगे।
3: लो यार पान खाओ। तब तो ऐसा करो, एक संस्था तुम लोग भी खोल डालो।
2: देखो अवधेश, मजाक मत करो।
1: अच्छा एक बात बताओ, पिताजी के रहते क्या हम लोग इस मकान को बेच सकते हैं?
3: जब तक वो जिंदा हैं तब तक तो नहीं, मेरा मतलब है उनके रहते।
1: अरे यार उन्हें अभी क्या होने वाला है, इतनी दूर की तो फिर बेकार ही की सोचना।
2: बताओ भला, इतना पैसा पास में है फिर भी जैसे नहीं है।
1: अरे जी तो करता है जबरदस्ती उनसे मकान अपने नाम लिखवा कर बेच डाला।
3: अगर इस तरीके के मूर्ख

0: काई सोचनी है तो मैं चलता हूँ यार।
1: अरे भाई तुम तो भाई तुम ही कुछ अकल की बात बोलो ना।
0: भाई तरीका तो मेरी खुराफाती खोपड़ी में है, पर जरा मुश्किल है।
1: असंभव तो नहीं है।
0: कदापि नहीं बालकों, कदापि नहीं। वो नवजोत चिकित्सा केंद्र का नाम सुना?
2: वो नवजोत चिकित्सा, अच्छा अच्छा वो पागलों वाला अस्पताल, अरे वहाँ जहाँ वो 2-3 बार छापा भी पड़ चुका है।
0: और उसका आर्डन तो सरकारी धन दुरुपयोग में पिछले साल गिरफ्तार होते होते बचा था, तो ठीक है ना?
1: ठीक, मगर ये पागल खाने का क्या चक्कर है उदेश बाबू?
0: देखो भाई, अगर तुम्हारे पिता को पागल करार करके इस पागल खाने में बंद करवा दिया जाए।
3: क्या क्या बच्चों जैसी बातें करते हो यार, एक अच्छे खासे आदमी को पागल खाने में भर्ती कैसे करवा सकते?
0: एक आधे पागल को तो भर्ती करवाया ही जा सकता है ना।
1: यार क्या पहेलियां बुझा रहे हो, सीधी तरह ये बताओ ना कि कैसे संभव होगा।
0: देखो, अपने पिता को रोज थोड़ा थोड़ा वो चूर्ण देना जो मैं बताऊंगा।
1: खा चुके वो ये चूर्ण?
0: अरे खाना तो खाएंगे, बस उसी में चुटकी भर मिलाकर दे देना, मगर खिलाना जरा प्यार से। अब फिर चमत्कार देखना, धीमे धीमे वो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो जाएंगे।
1: क्या?
0: और उसके बाद ही उन्हें पागल खाने में भर्ती करा दिया जाएगा।
1: लेकिन अवधेश, पागल खाने में तो काफी तकलीफ रहेगी उन्हें।
3: और क्या?
0: अरे हर महीने कुछ पैसे मुझे दे दिया करना, मैं उन्हें दे आया करूंगा, कोई कष्ट नहीं होने पाएगा उन्हें।
1: लेकिन मकान तो फिर भी पिताजी के ही नाम रहेगा ना।
3: और क्या,
0: एक दो कागजों में उनका अंगूठा लगवा लेंगे, नहीं काम बना तो 2-3 जाली कागज मैं बनवा दूंगा।
1: मगर नवजोति वाले उन्हें पागल कैसे मानेंगे?
0: तुम दोनों यार आते तो बेवकूफों की श्रेणी में ही हो। मैं तुम लोगों को एक बात पहले से साफ कर दूं कि ये फार्मूला अंधेरे में चलाएगा तीर जैसा है, और ये तीर निशाने पर लगेगा या नहीं इसकी 50-50% उम्मीद ही रखो। हाँ, वैसे तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवजोत में तमाम लोग छुटकारा पाने के लिए अपने पिता से लेकर दूसरी शादी के चक्कर में अपनी पत्नी तक को भर्ती करवा चुके हैं।
1: अच्छा? मगर अवधेश, इसकी जांच भी तो कभी हो सकती है।
0: एक अच्छा भला आदमी साल भर इस कैद खाने में रह ले तो पागल तो हो ही जाएगा। अब वैसे तुम लोग चाहो तो अपने पिता के मरने का इंतजार कर लो, 20-25 साल या।
3: अरे नहीं नहीं भाई, अब तो लगता है 20-25 साल तक भीख मांग करके ही गुजारा करना ही पड़ेगा।
1: मेरे ख्याल से अवधेश की बात ठीक ही है भैया, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना तो पड़ेगा ना।
0: अब पिताजी जैसी पुरानी चीज खोकर अफसोस ही क्या होगा।
3: क्या कर डाला आपने, क्या किया पिताजी?
4: अरे झूललाल बाबू, अभी गया नहीं आप? हैं, यहीं बैठा है।
3: जाता हूँ डॉक्टर साहब, जाता हूँ।
5: बड़ी देर कर दी आपने आने में, संपत भैया 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका।
3: संपत,
6: नमस्ते भैया।
3: नमस्ते नमस्ते, बड़े कमजोर नजर आ रहे हो।
6: अब हम बूढ़े हो गए भैया, फिर पास ऐसा है ही क्या जो खुश रखे, स्वस्थ रखे।
3: पिताजी के बारे में पता चला तुम्हें?
6: पता चला, ये तो होना ही था एक दिन।
3: एक नई मुसीबत भी तो खड़ी हो गई
6: जी।
3: पुलिस सारी बातों की जांच करेगी, तुमको तो पता ही है, उनको पागल सिद्ध करने वाले कागज भी तो जाली ही थे। अवधेश ने जिससे बनवाए थे वो डॉक्टर ही कहाँ था, शायद कोई कंपाउंडर वगैरह था।
6: यानी एक और मुसीबत।
3: एक और मतलब?
6: अब आपसे क्या छुपाना भैया, मेरे लड़कों ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया।
3: अरे अरे, लेकिन संपत, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ?
6: क्या बताऊं, मैं आपसे सब छुपाए रहा भैया।

0: मैंने अपने लड़कों पर भरोसा करके उन्हें सारा पैसा दे दिया, दुकान उनके नाम कर दिया और पैसा पाते उनकी आंखें पलट गई। रोज ही रोज मेरा अपमान होता है, घर से जाने के लिए कहा जाता है, जी तो करता है आत्महत्या कर लूं।
1: लेकिन लेकिन पिताजी वाला मकान बेचने पर तो 7.5 लाख रुपए मिले थे तुम्हें।
0: मिले थे भैया, ज्यादा पैसा होने पर खर्च भी कुछ ज्यादा होता है, फिर पैसा पिताजी की मेहनत का था, हमारी मेहनत का नहीं था, जो ज्यादा खर्च होने पर दर्द होता।
1: सच कहते हो संपत, वो रुपए तो ऐसा लगा मानो सड़क पर पड़े मिले हो। पिताजी की बात और थी, हर काम करने से पहले 20 बार सोचते थे। अब लगता है मकान न बेचने का उनका फैसला भी ठीक ही था। अब देखो किराए के मकान में आए दिन मकान मालिक किराया बढ़ाता रहता है, न बढ़ाओ तो निकालने की धमकी ऊपर से।
0: अच्छा भैया, पुलिस जांच से अगर सारी बातों का खुलासा हो गया तो?
1: अरे नहीं नहीं, तब तो बुढ़ापा ही खराब होगा और जग हंसाई ऊपर से होगी।
0: खैर जो भी हो, मेरे से तो बेहतर स्थिति है आपकी।
1: हाँ ठीक कहते हो, फिलहाल तो बेहतर ही है। लड़की की शादी कर दी, लड़का है बस जरा चुप रहता है, घर आएगा आते ही अपने कमरे में घुस जाएगा, न किसी से बोलना न किसी से चालना।
0: अच्छा भैया चलता हूँ, वो फिर आऊंगा।
1: अच्छा अच्छा,
0: वो भैया वो
1: हाँ?
0: वो
1: कुछ कहना चाहते हो?
0: भैया पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए मेरा मतलब है कि?
1: अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम कर दूंगा। और कुछ?
0: वो कहते तो ठीक नहीं लगता भैया, वैसे अगर मेरे लड़कों ने मुझे निकाल दिया तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ
2: सुनो
0: आकर...
2: जी बात सुनो जरा।
1: हाँ हाँ ठीक है भाई संपत, तुम्हारे रहने पर तो हमें कोई एतराज नहीं है, पर तुम तो जानते हो एक ही कमरा फालतू है और मेहमान है कि आते ही रहते हैं। अब अपनी सुविधा के लिए तुम मुझे तो तकलीफ में डालना पसंद नहीं करोगे ना?
0: क्या कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते भैया।
1: अच्छा, नमस्ते।
0: नमस्ते भाभी।
1: मुसीबत पर मुसीबत, अपने बच्चों से बनाकर रखेगा नहीं और यहाँ टिकने के लिए हाथ फैलाए हैं। एक तो पिताजी ने आत्महत्या करके और मुसीबत खड़ी कर दी, अगर जांच हुई तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा।
2: अरे क्या अशुभ बोल रहे हो?
1: अरे ठीक ही कह रहा हूँ। ये छड़ी किसकी रखी है?
2: अवधेश की होगी, भूल गया होगा।
1: हा? अवधेश? अवधेश कब आया था यहाँ?
2: कल जब आप काम पर गए थे। वो तो आता ही तब है जब आप घर पर ना हो।
1: अरे लेकिन लेकिन वो आता क्यों है यहाँ?
2: क्या पता, अपने बेटे अनिल से पूछिए ना। हा? उसी से मिलता है, शायद कोई बिजनेस करना चाहता है अनिल।
1: बिजनेस? बिजनेस क्या मतलब? बिजनेस और अवधेश के साथ? अरे पता है, सांप है वो, सांप सब कुछ बेच कर खा जाएगा।
2: क्यों, आपकी तो बहुत दोस्ती थी उससे, खाना पीना उठना बैठना।
1: अरे हाँ हाँ, जब थी तब थी। इसी बेवकूफ की बातों में आकर ही मैंने न जाने कितनी गलतियां कितने पाप कर डाले। जवानी के जोश में पता ही नहीं था चला कि मैं पिताजी के साथ क्या सुलूक कर रहा हूं। उस समय तो बस इसी अवधेश और संपत ने मिलकर पिताजी के खिलाफ भड़की आग में घी डाला था।
2: उन्होंने भड़काया और आप भड़क गए।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम भी मुझे ही दोष दे लो। नोच खाओ मुझे, नोच खाओ। उस समय पिताजी को पागल खाने भेजने से तुम भी तो मना कर सकती थी मुझे।
2: हाँ हाँ जरूर, उस समय लाखों रुपए के आगे कुछ सूझ रहा था आपको।

0: उस समय तो खाने में जाने किस किस चीज का चूरन मिलाकर खिलवाते थे आप।
1: क्या बोली क्या बोली क्या बोली, बोलो बोलो, जोर से बोलो, चीखो चीखो ताकि मोहल्ले वाले भी तो सुन ले।
2: अरे जी क्या हुआ, क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं आप?
1: ये एक बात बताओ अनिल, ये अवधेश क्यों आता है यहाँ? क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ? बिजनेस बिजनेस करना चाहते हो? पता है बेचकर खा जाएगा तुम्हें और तुम्हारे कपड़े भी।
2: मगर वो तो आपके दोस्त हैं।
1: कोई दोस्त वोस्त नहीं है, कोई दोस्त वोस्त नहीं है मेरा, समझे?
2: मगर क्या बिगाड़ा अवधेश चाचा ने?
1: उसकी वजह से ही तुम्हारे बाबा ने आत्महत्या कर ली।
2: बाबा ने? वो जो पागलखाने में बंद थे?
1: हाँ हाँ वही।
2: बाबा ने आत्महत्या की?
1: क्या क्या बिजनेस समझा रहा था तुम्हें? क्या बिजनेस समझा रहा था वो तुम्हें?
0: बेटे तुम्हारे बाबा ने अवधेश की वजह से नहीं, इनकी वजह से आत्महत्या की है। इन्होंने
1: चुप कर, मैं कहता हूँ चुप कर।
2: पिताजी क्या हो गया है आपको, माँ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? बिजनेस में बुराई ही क्या है, आखिर मुझे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। महज 3 लाख से मेरा बिजनेस शुरू हो जाए।
1: अच्छा अच्छा, और ये 3 लाख रुपए तुझे देगा कौन?
2: अवधेश चाचा ने कहा है कि रुपया आपके पास है, आखिर आपने भी तो बाबा से पैसा लिया होगा।
1: मैंने क्या मतलब, और क्या बताया अवधेश ने तुझे, और क्या क्या बताया तुझे? कौन खोल कर सुन लो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें, समझे? एक कौड़ी भी नहीं दूंगा।
2: समझिए आप, आप अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो कानूनन अपना हक ले लूंगा मैं आपसे।
1: क्या कहा तुमने? कानूनन अपना हक लोगे? तो जाओ सड़क पर और मांगो कानून से अपना हक।
2: नहीं जाऊंगा, देखता हूं कौन निकालता है मुझे यहां से।
1: और ये हाथ में क्या है तुम्हारे, ये हाथ में क्या है तुम्हारे?
2: हाथ में आपसे क्या मतलब, आप तो घर से निकाल रहे थे मुझे, वैसे ये आप ही के खाने के लिए लाया हूं मैं।
1: खाने के लिए? मेरे खाने के लिए? हो तो ये हो रहा है इस घर में, ये हो रहा है। अरे खुले आम क्यों नहीं खिला देते जहर, अरे गला घोट कर क्यों नहीं मार देते मुझे? खिलाओ खिलाओ खिलाओ जहर मुझे, खिलाओ।
2: ये खिलाओ। क्या अनशन बक रहे हैं आप, कौन क्या खिला रहा है आपको?
1: अरे मैं सब समझ गया हूँ तुम लोगों की चाल, मैं सब समझ गया हूँ। कौन खोल कर सुन लो, आज से अपने लिए खाना मैं खुद बनाऊंगा और तुम माँ बेटे को निकाल कर कहीं दम लूंगा। अवधेश के साथ मिलकर मेरी दौलत हड़पना चाहते हो, मुझे पागल खाने में भर्ती कराना चाहते हो? अरे अरे कमबख्तो, शहर खिलाकर आधा तो मार ही दिया है मुझे।
0: ये क्या कह रहे हैं आप?
3: अरे भाई क्या हो रहा है?
2: देखिए ना चाचा, इनका तो लगता है दिमाग चल गया है, पागल हो गए हैं लगता है।
1: अरे मैं पागल? अरे मैं नहीं हूँ पागल, तुम सब हो पागल, नहीं हूँ मैं पागल। तुम अगर मुझे पागल खाने भेजोगे तो नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा वहां।
3: हाँ आपकी बात भी सही हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन सच तो बताएगा डॉक्टर ही। हा? क्यों अनिल भतीजे?
1: क्या कहा? डॉक्टर? नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं जो नहीं जाऊंगा।

जैसी करनी वैसी भरनी। अभी आपने रोमी शिरास का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे मुद्रा राक्षस और ये नाटक आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: आज के बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत।
2: बहुत बहुत स्वागत आलोक गागड़ेकर जी विविध भारती के स्टूडियो में।
3: जी जी जी नमस्कार, धन्यवाद
2: आलोक जी।

0: रेडियो से जो आपका जुड़ाव है, वो जब हमारी स्टूडियो में आते आते बातचीत हो रही थी तो बहुत सारी बातें सामने आई, तो मुझे रेडियो से जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाएं बताइए जो आपके जीवन में घटित हुई हैं।
1: जी, यानी ये कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है
0: जी
1: बचपन से,
0: जी
1: क्योंकि घर में तो टीवी भी था, कलरमैन टीवी था हमारे पास, और सभी संसाधन थे, लेकिन मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी, और वहाँ एक लकड़ी का रेडियो था।
0: वो किस जगह रहती थी?
1: वो हमारे अहमदाबाद में ही, अहमदाबाद
0: हाँ
1: हमारा जो

0: उठने का प्रण बनता था कि रेडियो शुरू हो गया, इसका मतलब सुबह हो गई है। अब रेडियो पे ये गाने चल रहे हैं, इसका मतलब दोपहर हो गई है। तो यानी कि जो रेडियो में भी बार बार कहा जाता है कि रेडियो विविध भारती, जीवन का संगीत, तो सच में वो जीवन का संगीत बचपन से ही जुड़ा था। तो मैं बच्चा था, यानी 11-12 साल का, और मुझे क्या समझ है गीतों की। लेकिन बावजूद उसके मुझे वो बीच बीच में आती हुई एंकरिंग, बीच बीच में आते हुए एड, फिल्म्स के जो जिंगल्स, और इन सब के साथ इतना जुड़ाव हो गया कि एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
1: ओहो
0: मुझे लगा कि मैं नहीं, अभी के अभी रेडियो रिपेयर करो। और हमारे नानी माँ का आर्थिक परिस्थिति इतना अच्छा नहीं था कि वो तुरंत एक नया रेडियो ले आते।
1: हाँ
0: तो मैं एक 11 साल का लड़का रेडियो लेकर बाजार में घूम रहा है कि कोई इसे रिपेयर कर दे, क्योंकि इसकी वजह से मेरी दिनचर्या जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। तो रेडियो से वो जुड़ाव था कि जैसे एक मित्र आपका साथ छोड़ दे तो कैसा फील होता है। तो
1: कितनी प्यारी
0: वैसे
1: बात है कि
0: जी
1: आप
0: जी
1: इतना
0: जी
1: ज्यादा जुड़े थे। तो फिर
0: जी
1: वो रेडियो सुधर पाया कि नहीं सुधर पाया?
0: वो रेडियो तो नहीं सुधर पाया, लेकिन इतना है कि नानी माँ और ये लोग इतना प्यार करते थे मुझसे कि उन्होंने फिर मुझे एक नया ट्रांजिस्टर रेडियो, जो उस वक्त मुझे अभी भी कीमत याद है कि 92 रुपीज़ में हमने खरीदा था, जो मेरे पास ही रहता था। और तब फिर धीरे धीरे समझ बनी, हम स्पोर्ट्स खेलते थे तो क्रिकेट रेडियो के अंदर क्रिकेट सुनना, यानी कि वो स्टेडियम में जो आनंद आता है उससे भी ज़्यादा आनंद आपको रेडियो पे सुनने का आता है। क्योंकि एक एक बॉल, एक एक बैट, एक एक खिलाड़ी की हरकत जो हमको बयां करते थे रेडियो पर, वो पूरा विजुअलाइजेशन जब सामने आया तो पता चला कि ये केवल मशीन का पुर्जा नहीं है, लेकिन ये तो एक ऐसा यंत्र है जो शायद मनुष्य के साथ बातें कर रहा है। यानी कि एक हमारा गिव एंड टेक होता था। ये फिर आगे चल की बातें है, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी जुड़ा तो वहां पर भी रेडियो सुनते थे हम, क्योंकि एक FM मिल ही जाता था कहीं पे भी, है ना। तो वहां पर भी ऐसे लगता था कि आज मैं दुखी हूं ये रेडियो को कैसे पता चल गया,
1: अरे वाह वाह वाह,
0: आज मेरी मेरे मित्र के साथ अनबन हुई ये रेडियो को कैसे पता चल गया, और
1: वाह,
0: उन्होंने आज वही गीत क्यों चला दिया कि दोस्त दोस्त ना रहा, या प्यार प्यार ना रहा, या इस तरीके की। तो जिंदगी के साथ आपको साहित्य, संगीत और अभिनय या मनोरंजन, इन सबको जोड़ने वाला अगर कोई यंत्र है इस सृष्टि पे तो वो रेडियो है। और पूरी पृथ्वी में मुझे लगता है कि हमारा देश का, भारत देश का जो विविध भारती और आकाशवाणी रेडियो है, ये विशिष्ट प्रकार का रेडियो है। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं आज इस मंच पर बैठा हूँ और आपके सामने प्रस्तुत हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यानी मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है।
1: क्या बात है। तो ये आपका रेडियो से इतना ज्यादा जुड़ाव रहा,
0: जी
1: विविध
0: जी जी
1: भारती से इतना जुड़ाव रहा। बचपन में अभिनय की ओर रुझान कब हुआ था आपका?
0: अभिनय का ऐसा था कि स्कूल के दिनों में जब टीचर्स डे सेलिब्रेट होता था तो उसमें मुझे एक बार टीचर ने कहा कि आपको टीचर बनना है, क्योंकि
1: जी
0: उसमें हम देखते हैं कि क्या एटीट्यूड है, कितना डेवलपमेंट आया है। तो मेरे लिए यही था कि कौन सा विषय, तो सबसे सुंदर मजबूत टिकाऊ विषय था मेरे लिए हिंदी, कि इससे अच्छा विषय क्या हो सकता है। तो मैंने हिंदी विषय के लिए पार्ट लिया कि मैं हिंदी विषय पढ़ाऊंगा। और मुझे अभी तक शायद याद है कि मैं मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी को लेकर बात करने वाला था जो हमारे कक्षा में थी। तो वहाँ टीचर्स डे में टीचर बनने का जो एक पहला अनुभव रहा, वो मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, यह तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर नुक्कड़ नाटक, जो हमारा एक अहम हिस्सा है थिएटर का, तो गुजरात में हम थोड़ा अवेयरनेस को लेकर नुक्कड़ नाटक करते थे
1: जी,
0: कुछ गरीबों को समझाने के लिए, मजदूरों के लिए।
1: तो ये किसी समूह से जुड़ गए थे आप?
0: हाँ, हमारा एक थिएटर ग्रुप था जिसका नाम ही था बुधन थिएटर ग्रुप। तो बुधन एक विशिष्ट व्यक्ति था, तो उस बुधन के किरदार से हम बुधन जैसे और किरदारों के लिए कोई एक मैसेज तैयार करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। तो नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक मेरी, यानी कि ये जर्नी चली, कि जिसमें मैं सिर्फ सीख रहा था, सीख रहा था, सीख रहा था। क्योंकि अभिनय को जितना सीखो उतना कम है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी हम बड़े बड़े एक्टर्स को जब मिलते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ नया मनन चिंतन कर रहे होते हैं कि भाई आज आपको क्या जरूरत है अभिनय के बारे में इतना सोचने की, आप जो कुछ बोलोगे वो ही पत्थर की लकीर बन जाएगा। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि कितना सिंसियर वर्क है ये कि नजर हटी की दुर्घटना घटी, एक अभिनय यानी कि 2.25 घंटे की

0: में जब आदमी एक्टिंग करता है तो उसको कितनी बारीकाई से काम करना पड़ता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद और बारीकाई से मैंने इस पर काम किया, ध्यान दिया, और फिर लगा कि अब जिंदगी अभिनय के सहारे गुजर सकती है जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्योंकि अपने आप में 11-15 हज़ार लोगों का एप्लीकेशन वहाँ उस वक्त गया था।
1: हाँ, मैं
0: और
1: यही सोच रहा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना इतना आसान नहीं रह गया है। तो आप किस बरस गए थे और कितना कड़ा मुकाबला था?
0: कड़ा मुकाबला तो बेशक था, और मैं 2003 में मैंने अप्लाई किया था, उससे पहले मैंने 2002 में अप्लाई किया और मैं फेल हुआ।
1: ओ,
0: तो ये भी एक जिंदगी का सबक है
1: तो बहुत
0: कि
1: दुखी हुए
0: बहुत
1: होंगे।
0: दुखी हो गया था। मुझे ऐसे लगा था कि पता नहीं मैं जिंदगी में अभी कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक डॉक्टर देवेंद्र राज अंकुर जी, जिन्होंने बहुत समझाया था कि ऐसा नहीं होता है, आप थिएटर करते रहो, जुड़ते रहो। जब अगर आप NSD में नहीं हुआ सिलेक्शन तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खत्म हो गई, आप कहीं और जगह भी। लेकिन बावजूद उसके मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं बोला नहीं सर, मैं एक ऐसी जगह पर प्रशिक्षण लेना चाह रहा था कि जहां पर रात दिन आप सिर्फ अभिनय की बातें करते हैं, संगीत की बातें करते हैं, साहित्य की बातें करते हैं। तो फिर मन बनाया कि अगले साल दोबारा मेहनत करनी है, और अगले साल और ज्यादा मेहनत करके मैं वहां पहुंचा और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया 2003 और 2006। ये 3 वर्ष मेरे, यानी कि मिला जुला कर 1,000 दिन की ट्रेनिंग मैंने वहां पर ली है।
1: क्या बात, क्या बात है। यहां रुकते हैं और एक गाना सुनते हैं। आपकी पसंद का कौन सा गाना यहां बजाया जाए?
0: मुझे लग रहा है कि मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो दोस्ताना फिल्म में अमिताभ
1: जी
0: बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब पर फिल्माया है, और
1: बिल्कुल।
0: वो है सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो उसमें ना एक जगह पर वो एक सैड नोट भी है कि जहां पर किशोर कुमार और रफी साहब का दोनों का एक सैड नोट भी है, तो मुझे वो भी बड़ा पसंद है। लेकिन अगर वो एक फुल फेज में अगर वो गाना सुना दिया जाए तो बड़ा मजा आ
1: बिल्कुल, ये
0: जाएगा।
1: गाना सुनते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी

0: आलोक जी, दोस्ताना फिल्म का ये गाना हमने सुना, और इससे पहले बातें ये हो रही थी कि आपने पहले स्ट्रीट थिएटर से शुरू किया अहमदाबाद में, और वहां से आपने ये तय किया कि भाई अब मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना है। आपने ये भी जिक्र किया कि परिवार में जो है वो वकालत की परंपरा थी, पिताजी वकील थे।
1: जी जी जी जी।
0: तो ये कितना आसान था अभिनय की दुनिया में जाना एक वकील का बेटा होकर?
1: जी, पापा का तो यही था कि मैं वकील ही बनूं, क्योंकि होता है ना कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील। लेकिन पापा ने ये भी, एक उनमें गुण थे कि जब वो कॉलेज काल

0: में पढ़ते थे, तो उन्होंने भी काफी नाटक किए थे।
1: ओके
0: तो उन्होंने वो नाटक किए थे, शेक्सपियर के प्ले किए थे उन्होंने, सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो पढ़ते थे, जेवियर्स में अहमदाबाद में। तो उन्होंने फिर बादल सरकार का एक स्पार्टकस नाटक भी खेला था।
1: अरे बाप रे।
0: तो फिर जब उनसे मैं परमिशन मांगता था कि मैं मोहल्ले के नाटक में भाग लेने जा रहा हूँ गणपति के लिए या जन्माष्टमी के लिए, तो वो बेझिझक मुझे कहते थे जाओ बेटा उससे जिंदगी समझ में आएगी तुमको कि थिएटर एक रंगमंच है। लेकिन जब उनको ये कहा गया कि अब मैं पूरी तरीके से ही नाटक में हूं, तो उन्होंने कहा कि 100% करो लेकिन प्रशिक्षण के साथ करो। उन्होंने ये कहा कि हर चीज को सीखा जा सकता है। और यही बात फिर एनएसडी में मुझे अंकुर जी ने कही कि आप गौर कीजिए कि आपको कोई सलून में आप गए हुए हो और आपको पता चले कि जो आपके अभी बाल बनाने वाला है या कटिंग करने वाला है आपके बालों की, वो कहीं से सीखा हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? तो मैं तो उनको अपना सिर नहीं दूंगा। तो बोले कि आप कैसे सोच सकते हैं कि 2-3 घंटे का नाटक और आप बिना ट्रेनिंग के उतनी ही गुणवत्ता के साथ कर लोगे। तो पिताजी ने फिर मुझे परमिशन दी कि यू कैन गो। और फिर कॉलेज में मैंने कैंपस थिएटर किया। मेरे गुरु सौम्य जोशी जी जो फिल्मों में अभी लिखते हैं, उनकी फिल्म 102 नॉट आउट उन्होंने लिखी। उसके अलावा बहुत अच्छा थिएटर करते हैं वो गुजरात
1: लगातार, उनका तो बहुत अच्छा अच्छे प्लेज अभी भी चले।
0: अभिजात जोशी एंड सौम्य जोशी दोनों जी, भाई है
1: जी।
0: तो इन दोनों भाइयों के साथ मैंने थिएटर की जर्नी शुरू की थी अहमदाबाद में। तो पिताजी को लग रहा था कि ये जैसे वकालत भी एक अपने आप में रिस्की फील्ड है कि आपका काम हुआ तो ठीक है वरना कचहरी के चक्कर लगाते रहिए। तो पिताजी ने फिर हमको कहा कि आप कर सकते हो। तो फिर मैंने कॉलेज में दबा के थिएटर किया।
1: वाह वाह।
0: तीनों तीन वर्ष मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला।
1: क्या बात है।
0: INT एक संस्था है जिसको इंडियन नेशनल थिएटर बोलते हैं, जो मुंबई बेस्ड है, लेकिन वो गुजरात में कंपटीशन करती थी कॉलेज में। तो ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी का आखिरी अवार्ड मुझे मिला है और 21वीं सदी का प्रथम अवार्ड भी मुझे मिला।
1: वाह वाह।
0: तो 99 में मैंने पहला प्ले किया था तुत्तू तारा, एक शराबी का कैरेक्टर था जो जॉनी लिवर साहब के एक जोक पर हमने नाटक इम्प्रोवाइज किया था कि अहमदाबाद में चारों तरफ एक शराबी घूम रहा है बस। तो उस किरदार को मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर दूसरे दिन मैंने एक किसान की बायोपिक की थी, फार्मर सुसाइड्स बहुत हो रहे थे गुजरात में। तो सौम्य जोशी साहब की कलम थोड़ी वैसी इंकलाबी कलम रही शुरुआत।
1: तो ये सब उन्होंने लिखे?
0: उन्होंने ही लिखे। दो शौक का सही नगर वस्तु तो, और बहुत कमाल के लिरिसिस्ट है वो, कमाल के म्यूजिक कंपोजर है, कमाल के एक्टर, कमाल के डायरेक्टर। और मेरा सौभाग्य है कि मैं तो, मेरा पूरा परिवार उनका ऋणी रहेगा कि मुझे ऐसे माहौल से उन्होंने निकाला जहां थोड़ा मुश्किल था ग्रो करना, तो वहां से उन्होंने मुझे एक ग्रोइंग एक्टर एक बनाया। तो ये आज इस मंच पर उनको याद कर रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे गुरु को।
1: एनएसडी में पहुंचने के बाद आपका एक तरह से सपना पूरा हुआ और आपने कहा कि 1000 दिन वहां तकरीबन आपने निकाले हैं। तो एनएसडी की कुछ यादें हैं और वहां जो आपके बैचमेट्स थे, आपके सीनियर्स थे, उन सब के बारे में बताइए
0: जी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा यह है कि आप वहां जाते हो ना तो उन्होंने ही लिखे, दो शौक का सही नगर वस्तु तो, और बहुत कमाल के लिरिसिस्ट है वो, कमाल के म्यूजिक कंपोजर है, कमाल के एक्टर, कमाल के डायरेक्टर। और मेरा सौभाग्य है कि मैं तो, मेरा पूरा परिवार उनका ऋणी रहेगा कि मुझे ऐसे माहौल से उन्होंने निकाला जहां थोड़ा मुश्किल था ग्रो करना, तो वहां से उन्होंने मुझे एक ग्रोइंग एक्टर एक बनाया। तो ये आज इस मंच पर उनको याद कर रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे गुरु को।
1: एनएसडी में पहुंचने के बाद आपका एक तरह से सपना पूरा हुआ और आपने कहा कि 1000 दिन वहां तकरीबन आपने निकाले हैं। तो एनएसडी की कुछ यादें हैं और वहां जो आपके बैचमेट्स थे, आपके सीनियर्स थे, उन सब के बारे में बताइए
0: जी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा यह है कि आप वहां जाते हो ना तो आपके साथ प्रांगण में, उसके कैंपस में पूरा देश आपके साथ रहता है। तो सबसे पहला मजा तो वो आया कि जब सीनियर जूनियर के बीच में एक इंट्रो फेस होता था हमारा, जस्ट एक इंट्रो फेस होता था कि लोग पूछते थे आपके बारे में, तो बड़ा अच्छा था कि पहले ही हमारा इंटरेक्शन ऐसे होता था कि आप गुजराती हो और आपका एक बैचमेट आसामी है, असम से, तो आपको असामी भाषा सीखनी है और आपको उन्हें गुजराती सिखानी है।
1: अरे गजब।
0: तो ये कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम से जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी हमारी आज तक बनी हुई है कि अब हम लाइक कोई

0: में एक्सेंट डालना हो तो हम बड़ी आसानी से बंगाली एक्सेंट ले लेते हैं, एमपी का एक्सेंट ले लेते हैं। और किस्से तो इतने हैं, जैसे कि हमारे सीनियर पंकज त्रिपाठी जी थे, तो
1: ओहो
0: वो थर्ड ईयर में थे और हम फर्स्ट ईयर में थे, तो जब बातचीत होती थी विद्यार्थियों के बीच में तो हमको वो कहते थे कि अच्छा तुम गुजरात से हो, तो गुजरात का फोक थिएटर के बारे में तुम्हारा क्या समझ है? तो हमने कहा कि हाँ भवाई और ऐसा फोक थिएटर है, और उनका बिहार का एक अलग फोक थिएटर है, लौंडा नाच और इन सारी चीज़ों का। तो उस जगह से लाइक एक होता है ना कि आप टीचर से जितना सीखते हो उतना आपके सीनियर्स भी आपको इतने प्यार से सिखाते थे। इश्तियाक भाई थे तो उनका म्यूजिक पर कमांड था,
1: अरे हारमोनियम पे बैठ जाए वो तो
0: हारमोनियम पर बैठ जाएंगे तो वो
1: फिर
0: चलता ही रहेगा उनका। तो हर तरह से, यानी कि सुबह से लेकर रात तक हमारा पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती थी। एक मजेदार किस्सा है वो ये है कि हम लोग गए थे के एन पणिकर जी के थिएटर में केरला, तो वहां पर हमको तैया तैयम नाम का एक नाटक करने को कहा गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म था। ये तैया तैयम एक रिचुअलिस्टिक थिएटर
1: बिल्कुल
0: केरला का होता है कि जिसकी यात्रा करीबन 9-10 दिन तक चलती है, यानी
1: जी
0: 12-15 दिन तक एक ही शो चल रहा है।
1: जी
0: रोज रात को आ रहे हैं लोग, शो चल रहा है 2-3 घंटे, फिर प्रसाद बट रहा है, फिर दूसरे दिन आ रहे हैं। तो हमको वहां पर वहां की गवर्नमेंट के साथ टाई अप होकर और हम वहां पर गए, तो पणिकर जी की एक बात जो मुझे इतनी अच्छी लगी, जो सीखने को मिली, कि वो व्यक्ति ने हमको विलंबित विधा में, यानी कि विलंबित लय में, आप संस्कृत नाटक की जो एक लय होती है, जिन फिर हमको पता चला कि मोहनलाल जी भी उनके वहां प्ले कर चुके थे, तो वो विलंबित लय में आप म्यूजिक के साथ बीट के साथ एक सेंटर स्टेज पर आते हो और वहां लार्जर देन लाइफ आपको एक्ट करना पड़ता है, तो दैट्स गुड। यानी एनएसडी की तो बात ही अलग है। तो
1: बिल्कुल।
0: हमारे
1: और
0: सीनियर कई रतन थियाम जी का थिएटर करने गए थे वहां
1: अच्छा
0: पर, वहां थांगटा सीख कर आए। हम
1: हाँ
0: केरला गए तो हम वहां कल्लरीपयट्टम सीख कर आए, तो आज भी
1: हाँ
0: वो कल्लरीपयट्टम की आर्ट मुझे आज भी याद है और आज भी मैं उसी से व्यायाम करता हूं अपना।
1: अरे वाह वाह वाह। तो एक तरह से ये होता है कि एक तो आप भारत से परिचित होते हैं, परंपराओं से, संस्कृति से परिचित होते हैं, और दूसरा नाट्य परंपराओं से अच्छी तरह से परिचित होके एक ठोस एक्टर या एक ठोस कलाकार बना के एनएसडी आपको
0: भेजती है।
1: मैदान में भेजता है कि अब जाओ। आपके साथ भी ये हुआ कि तय करना था कि दिल्ली में रहना है कि मुंबई जाना है?
0: नहीं, मेरा तो पहले से ये था कि मुझे मुंबई ही जाना है, क्योंकि मैं अगर गुजरात में भी जाता तो गुजराती थिएटर अपने आप में एक कमर्शियल थिएटर है, कि जहां से आदमी आज भी सिर्फ गुजराती थिएटर करने वाले, परेश रावल जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आज अगर पूरे भारत देश में रोज थिएटर हो रहा हो तो वो सिर्फ गुजराती है।
1: वाह सही बात
0: रोज
1: है।
0: रोज, यानी कि आज आप बोरीवली का प्रबोधन ठाकरे या घाटकोपर का ऑडिटोरियम या भाईदास अब, लेकिन तेजपाल हॉल या वहां पर कहीं पे भी चले जाओ कि रोज आपको एक नया नाटक देखने को मिल सकता है। तो मुझे तो पता था कि मुझे थिएटर करना है या सिनेमा करना है, तो मेरे लिए पृष्ठभूमि मुंबई से अच्छी कुछ नहीं हो सकती थी। तो दिल्ली में मेरा रुकने का प्लान नहीं था, यानी कि रंगमंडल से जुड़ने का और उसका मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा यही था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ट्रेनिंग ली है, अब जल्दी से इस कैंपस को मुझे छोड़ देना है, क्योंकि मैंने ऐसे कई हमारे सीनियर विद्यार्थियों को देखा कि फिर वो वहीं रहते थे, तो और हम रोज पूछते थे कि दादा आप कौन सी बैच के हो, तो कोई कह रहे थे कि हम 95 के बैच के हैं, 92 के बैच के हैं, और वहीं कैंपस में आकर और कैंपस के साथ ही जुड़ जाते हैं, तो आदमी आगे चल के ग्रो नहीं कर पाता। तो हमने सोचा कि हमें दिल्ली तो नहीं रहना है, हम मुंबई चले चलेंगे, और मुंबई और अहमदाबाद के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो कॉन्फिडेंस मेरा बरकरार रहा, और मुंबई में आते ही सरस्वती माता की कृपा से काम भी अच्छा मिलने लगा।
1: यहां एक गाना सुनते हैं फिर
0: जी
1: मुंबई की बातें
0: जी
1: करेंगे।
0: जी जी
1: तो बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना होगा यहां पर? हाँ
0: जी धर्मवीर फिल्म का गाना मेरा बहुत फेवरेट है, जो दोनों सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं
1: वाह
0: अपनी जोड़ी, और वहां पर भी एक सैड नोट आता है
1: बिल्कुल आ जाए।
0: माता को लेकर, कि ये जो सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है, तो रानी माँ से मुझको भी मिल जाए ममता थोड़ी,
1: वाह वाह वाह
0: तो ये एक अगर आप सुना दे तो
1: जरूर सुनते हैं
0: बहुत
1: ये
0: अच्छा।
1: गाना।
2: सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी, सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं

0: धर्मवीर फिल्म का ये गाना हमने सुना और बातें मुंबई की हो रही हैं। दिल्ली की दुनिया बहुत अलग है और मुंबई की दुनिया संघर्षों की दुनिया है। जब आप मुंबई आए तो क्या कैफियत थी और क्या परिस्थितियां थी?
1: बहुत वैसा सवाल है कि सच में आज भी वो लम्हा याद करता हूँ तो थोड़ा पेट में एक घबराहट सी हो जाती है कि मैं आया था तब मैं शादीशुदा था।
0: अच्छा,
1: यानी कि मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फर्स्ट ईयर के बाद ही अरेंज मैरिज मेरा घर में गुजरात में शादी हो गई थी।
0: अच्छा ऐसा?
1: हाँ।
0: और आपने ये तय किया कि भाई पढ़ाई के दौरान शादी कर लेते हैं?
1: हाँ, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत जल्दी हो ही जाती थी तो उससे कोई छुटकारा था नहीं। तो
0: एक काम करते हैं, संघर्ष के बारे में बाद में बात करते हैं, ये शादी वाली बात पूरी कर लेते हैं पहले।
1: जी, फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा था, उससे पहले ही हमारी शादी की बात तय हो गई थी। मेरी वाइफ, जिसका नाम रुक्ष्मणी है, और वो बीकॉम कर रही थी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और मैं बीए कर रहा था, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसका थिएटर से कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन अच्छे घर की संस्कारी लड़की थी तो घर वालों ने कहा कि शादी तो आज नहीं तो कल करनी है। तो हमने कहा कि नहीं, हमको तो अभी दिल्ली जाना है, पता नहीं क्या। बोले नहीं, तुम शादी दिल्ली में छुट्टियों में आकर शादी कर सकते हो और उसके बाद फिर आराम से तुम जिंदगी बसर कर सकते हो। तो मुझे भी ऐसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जब इतने ही संघर्ष ले लिए है जिंदगी ने तो ये भी एक संघर्ष निपट जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में जब मैं घर आया 2004 में, तब हमारी शादी हुई और अभी हमारी शादी को 22 साल कंप्लीट हो गए। और जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं पास आउट होने के बाद जब बंबई आए तो ये हालत थी कि अब पत्नी को लेकर आपको बंबई निकलना है।
0: तो और वही ऑलरेडी वो आपके बिना इतने समय रह चुकी।
1: क्योंकि आप कितना ही अत्याचार कर लोगे अगर आप

0: की सहूलियत के हिसाब से अगर आप जिंदगी को चाहते हैं तो सब कुछ नहीं मिलता। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो करते हैं संघर्ष जैसे सभी लोगों ने किया है। तो माहड़ा में हम लोग रहते थे, मलाड में, और शुरुआती दिनों में काम को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने थिएटर किया रात दिन अच्छे से, प्रांगण था, हर तरह की सहूलियत हमको मिल जाती थी, रहने के लिए हॉस्टल, हवा गर्मी लग रही है तो कूलर लग गया, ठंडा पानी खराब हो गया तुरंत बन गया। अब यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ पहली बार पता चला कि लाइट बिल आता है 350 रुपया एक वन रूम किचन का, वो भी बहुत मायने रखता है एक हिसाब किताब में। तो ये संघर्ष शुरू किया, लेकिन वही मैंने कहा था ना कि पापा की एक बात मुझे वो हमेशा याद रही थी कि लाइफ में कुछ इस तरीके से करो कि आप अभिनय भी कर सको और घर भी तुम्हारा चले उस तरीके से। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ट्रेनिंग क्या है, अपने आप में थिएटर में आपको इतना वो मांझ देते हैं कि आप किसी को थिएटर पढ़ा भी सकते हैं, यानी उतना लेवल का नहीं जैसे वहां के फैकल्टी पढ़ाते हैं, लेकिन मोटा मोटा खाका आप किसी को बता सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती है। तो मैंने एनजीओ सेक्टर पे आकर काम करना शुरू किया, और मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्ट्रीट प्लेटफॉर्म बॉयज के साथ थिएटर एज अ थेरेपी काम करता था, आगरी पाड़ा, मलाड़ से आगरी पाड़ा जाना। तो पहले ही दिन जब लोकल ट्रेन में मैं चढ़ा तो मैं रो पड़ा, क्योंकि वो एक तो पहले चढ़ने को नहीं मिल रहा था, और हमको यही सिखाया कि टाइम पे पहुंचना है कोई भी क्लास में, तो मुझे 150 रुपये पर क्लास मिलता था उसके लिए। तो मुझे लगा कि यार अगर दो क्लास मिल जाए तो रोज का 300 रुपया तो मुझे यहीं से मिल रहा है, यानी महीने का 9,000 रुपये, और घर का किराया ये सब मिला के 5-6 हज़ार में हो रहा था। तो वो संघर्ष के दिनों में मैंने एनजीओ सेक्टर में काम किया, और साथ साथ में ऑडिशन देना शुरू किया,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: फिर यात्रा धीरे धीरे सहूलियत के साथ आगे बढ़ने लगी।
1: क्या बात है। तो लोकल ट्रेन में जाके और आप वहां सिखाते थे बच्चों
0: जी
1: को,
0: जी
1: वो यात्रा ज्यादा बड़ा संघर्ष थी या वो बच्चों को सिखाना ज्यादा बड़ा संघर्ष था?
0: बच्चों को सिखाना बहुत बड़ा संघर्ष था, क्योंकि यात्रा तो क्या है कि हमको लग रहा था कि ये भीड़ है, लेकिन मुंबई में आपको कहीं पे भी भीड़ दिखाई देगी, कोई ऐसी जगह होगी नहीं जहां भीड़ ना हो। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ क्या होता था कि मैं सिखाते सिखाते बहुत सीखता भी रहता था, जैसे तरह तरह के लोग थे, और वही एनएसडी जैसा माहौल वहां पर भी था कि कोई उड़ीसा से एक बच्चा आया है। अब उसमें कुछ केसेस ऐसे होते थे कि कुछ बच्चे हीरो बनने आए थे,
1: लो अब ये समझाना भी मुश्किल है।
0: और उनको मैं ही समझा रहा हूं क्योंकि मैं भी हीरो बनने आया हूं। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि ये सेल्फ लर्निंग हो रही थी। तो कुछ लोगों को वो एनजीओ ऐसी थी कि वो ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करती थी जो बॉम्बे में बेचारे भटक रहे हैं, है ना, फिर कोई एडिक्शन में घुस गए हैं, तो उनके बच्चों की पहले बातचीत होती थी, तो पता चलता था कि एक बच्चा है जो सलमान खान के घर के बाहर ही सोता था,
1: ओ
0: वो सलमान खान को देखने ही इधर आया था, फिर उसको लगा कि मुझे सलमान खान से अच्छे से मिलना है तो एक्टर बन जाना पड़ेगा।
1: अरे बाप रे।
0: तो ऐसे मेंटालिटी के बच्चों के साथ मैंने वैसे ही काम किए कि फिर उनको जिंदगी का फलसफा समझ में आया, और फिर उनको हमने एक अच्छे ट्रैक पर लेकर गए। उसमें से जो टैलेंटेड लोग थे उनको भी एक्टिंग का भी काम दिया गया, लेकिन वही होता है ना कि टारगेट किस तरीके से सेट करके आते हैं और कैसे लोग आ जाते हैं।
1: तो उनमें से कई लोगों को एक दिशा मिली।
0: दिशा मिली, जैसे कि कई लोगों ने पेपर बैग बनाने का काम शुरू किया, कई लोगों ने पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का काम शुरू किया, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात थी कि जो बेसहारा थे, सड़क पर सोते थे, फुटपाथ
1: अपना
0: पे
1: अपना
0: सोते,
1: काम कर पाए।
0: अपना अपना काम कर रहे हैं। आज वो शादीशुदा है, कुछ लोग आज भी फोन करते हैं, आलोक सर कैसे हैं आप, हमको याद है आपने हमको ये डायलॉग सिखाया था। तो मैंने डायलॉग उनको जिंदगी के लिए सिखाया था कि भाई कोई भी ऐसा एक टोंग ट्विस्टर ले लेते थे, एक ऊंचा ऊंट है पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ ऊंची ऊंट की, अब इसी को अलग अलग इमोशन में बोलो।
1: यस।
0: तो कोई गुस्से में बोलता था एक ऊंचा ऊंट है पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ ऊंची ऊंट की।
1: हाँ, अलग
0: तो
1: अलग
0: ये
1: तरह की
0: थिएटर
1: एक्टिंग।
0: एज अ थेरेपी, तो बच्चे हंसते थे, और वही उनके साथ भी एक परिवार जैसा संबंध बन गया था। साथी नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, आज तो शायद वो नहीं है वहां, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती थी, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि साथी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे शुरुआत में काम दिया, जिससे मैं बॉम्बे में टिका रहा, और फिर धीरे धीरे फिल्मों के ऑडिशन देना जो रोजमर्रा है, जो अमरीश पुरी साहब ने जो काम किया होगा वही हमने किया, कि लोगों से
1: जी, वो
0: मिलना,
1: एक प्रोसेस है कि वो
0: वो एक
1: करनी ही
0: प्रोसेस है,
1: पड़ती है।
0: वहां से कोई नहीं बच सकता।
1: तो शुरुआती तौर पर किस तरह के एक्सपीरियंसेस थे जब आप काम मांगने जाते थे? और क्योंकि तब शायद

0: उस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं आए
1: नहीं थे, नहीं थे,
0: अपने
1: नहीं
0: फोटोज लेकर और पोर्टफोलियो लेकर जाना
1: जी जी, जी जी जी मुझे आज भी याद है कि चंदन टॉकीज के पास एक फोटोग्राफर था
0: जूहू में
1: और वो कुछ 100 रुपए की एक तस्वीर निकाल के देते थे
0: जी।
1: और मेरे पास एक ही डेनिम का शर्ट था, जींस का, जो मुझे एनएसडी से ही दिल्ली में ही खरीदा हुआ था क्योंकि वहां वो सेल वगैरह लगते रहते हैं मंडी हाउस। तो वो पहनकर मैंने उसको कहा कि 5 फोटो भैया हमको ऐसे निकाल दो जिससे लोग समझ जाए कि हम भी एक्टिंग करने के लिए आए। तो 5-5 एक ही कॉस्ट्यूम में तो हो नहीं सकती थी
0: बिल्कुल।
1: तो मैंने कहा कि अंदर हमने एक गंजी पहनी हुई है, 2-3 फोटो शर्ट में निकाल लो, 2-3 गंजी में निकाल लो स्पोर्ट्स लुक। तो वो 5 फोटो से हमने हमारी यात्रा शुरू की। और मुझे याद है कि जय माँ संतोषी माँ की फिल्म रिमिक बन रही थी उस वक्त दोबारा। तो उसमें हमारे एनएसडी के कास्टिंग डायरेक्टर थे परेश पारेख जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम आ गए, फोन किया उनको, 2-4 नंबर लेके निकला था। तो उन्होंने सीधा मुझे दादर बुलाया। अब दादर मेरे लिए अपने आप में वैसा था जैसे हम अहमदाबाद से कहीं
0: बड़ौदा चले,
1: बड़ौदा चले गए वैसी यात्रा थी। तो दादर बुलाया और मैं चप्पल पहनकर चला गया। चप्पल भी वो थी बरसाती प्लास्टिक वाली, है ना, उसका एक अंगूठा निकला हुआ था। अब वो अंगूठे को उंगलियों में फंसाते हुए मैं सीढ़ियां चढ़ा कि भाई यहां तक हो जाए। फिर वहां गए तो उन्होंने कहा कि हाँ ऑडिशन दे दो। तो मैं बोला चलो यार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, ऑडिशन तो दे ही देंगे। लेकिन हमसे हो नहीं पाया ऑडिशन।
0: ओह,
1: हमको समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहे थे, कैसे समझ रहे थे। फिर हमने सिर पकड़ लिया, मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है अभी भी, तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया क्या है। तो फिर वो परेश भाई ने बहुत प्यार से समझाया कि थोड़ा खुल के करो, थोड़ा तुम टेंशन में हो, सुखद अवस्था में रहो। मैं बोला सर सुखद अवस्था में कैसे रहूं, 3-4 दिन के बाद फिर रेंट देना है, ये भी होता है। लेकिन इस तरीके से कारवा चल पड़ा। और पहली फिल्म मैंने की थी टशन। ये भी बड़ी बात है कि यश चोपड़ा की फिल्म में मेरा कास्टिंग हुआ
0: और ये पहली फिल्म बनी,
1: पहली फिल्म बनी।
0: इसमें कितना संघर्ष करना पड़ा?
1: इसका ऑडिशन ग्रुप में हुआ कि भाई सबको चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी। अनिल कपूर
0: मल्टी स्टार,
1: हाँ, अनिल कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार का एक अलग लेवल। अनिल कपूर उसमें पहली बार नेगेटिव रोल कर रहे थे, विलन, और अक्षय कुमार का नाम उसमें बच्चन पांडे था। और डायरेक्टर थे विक्टर साहब, विजय कृष्ण आचार्य, बहुत अच्छे डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि यार वैसे तो रामलीला का सीन है और कोई हनुमान बना हुआ है, कोई भाला पकड़, तो ये जो वो भाला पकड़ने वाली कहावतें जो सुनी थी एनएसडी में कि यार क्या करोगे, भाला पकड़ के खड़े रहोगे पीछे। तो मैं बोला ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों शुरुआत हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार इसमें से कोई अच्छी लाइन बोलने वाला एक एक्टर चाहिए। तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया, मैं बोला सर मैं बोल लूंगा, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा आपको, कि बताओ तो सही आपको आता है।
0: बिल्कुल।
1: तो फिर उन्होंने मुझे रामलीला का कोई कैरेक्टर नहीं दिया, बल्कि रामलीला देखने के लिए जो लोग बैठे थे उसमें फर्स्ट रो में मैं बैठा हूं।
0: ओके।
1: अब बड़ी बात क्या है, बहुत मजेदार किस्सा है कि अक्षय जी को जो डायलॉग बोलना था वो उन्होंने मेरी छाती पे लिखा हुआ था।
0: ओ।
1: तो प्रिंटआउट उन्होंने मेरी छाती पे लगा दिया। तो मुझे लगा ये मेरे डायलॉग तो नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा ऐसे देखकर। तो फिर का पता चला कि वो अक्षय जी के डायलॉग है, वो आपको भी देखेंगे और प्रिंटआउट को भी देखेंगे। और मेरा डायलॉग था उनके साथ, बढ़िया सा डायलॉग जो उसके बाद भी बहुत हिट हुआ वो डायलॉग, कि वो आते हैं और लड़की को बोलते हैं कि अरे पार्वती तू यहाँ क्या कर रही। लड़की का नाम पार्वती था लेकिन रामलीला चल रही थी तो वो सीता का रोल कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अरे भैया वो सीता है, सीता पार्वतिया तो शिव पुराण का हीरोइन है, कहा कुछ भी बोलते ऐसा कुछ। हमने हंसा तो वहां जो एक्चुअल ऑडियंस थी ना वो भी हंसने लगी कि हमने इस तरीके से कुछ डायलॉग बोला। एंड अक्षय जी के साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा। वो मेरी पहली फिल्म थी। फिर वो रिलीज हुई तो देखने जाना है पहली बार कि अपने आप को
0: पर्दे पर,
1: 70 mm के पर्दे पर कैमरा ये वो। तो फिल्म चली नहीं, लेकिन मजा आया कि हमने अपने आप को देखा कि यार एडिटिंग में कहीं वो सीन कटा नहीं, मैं पूरा दिखा। और मराठा मंदिर में मैंने देखी।
0: वाह,
1: मराठा मंदिर अपने आप में एक
0: ऐतिहासिक थिएटर,
1: ऐतिहासिक थिएटर है। तो दिस इज अ थिंग।
0: वाह। और इसके बाद फिर कारवां आगे बढ़ा?
1: हाँ, फिर तो वही है कि एक काम से दूसरा काम, लेकिन हाँ संघर्ष तो बीच बीच में चल ही रहा था। ऐसा नहीं है कि एक फिल्म कर ली तो दूसरी कल ही कल मिल

0: जाएगी। आज तक भी हमको फिल्में ढूंढने के लिए थोड़ा वो संघर्ष तो करना ही पड़ता है कि कौन सी जगह पर आपकी जरूरत है, इम्पोर्टेंट ये है। तो यही कह रहे थे ना कि यार तुमको कैसे यश चोपड़ा के वहां से काम मिल गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि तुम तो राम गोपाल वर्मा के एक्टर हो।
1: अच्छा
0: हाँ, एक ये भी होता था ना कि रामू जी के फिल्मों में ज्यादातर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक वो पैटर्न बनी हुई थी। राजपाल यादव जी हो गए और भी एक्टर्स जैसे विजय राज जी हमारे एनएसडी रिपेट्री के, तो ये भी एक बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी कमर्शियल फिल्म में मुझे एक छोटा सा किरदार मिला, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई टशन। फिर आगे तो धीरे धीरे काईपियो छे, काईपियो छे में मैंने सुशांत जी के साथ काम किया, उसमें गट्टू जी डायरेक्टर थे अभिषेक कपूर, वो बहुत अच्छा उसमें किरदार, धीरे धीरे बढ़ता गया किरदार, और अब ऐसा है कि हमको अच्छे किरदार मिलने लग गए हैं।
1: बिल्कुल, बजरंगी भाईजान में भी आपने काम
0: जी
1: किया।
0: जी जी जी बजरंगी भाईजान का मेरा सलमान जी के साथ काफी अच्छा वो सीन था बस में।
1: हाँ, बस वाला सीन,
0: जी जी
1: बिल्कुल। उसके बारे में बताइए कैसा रहा हो?
0: बढ़िया। उस वक्त दुनिया को बस यही लगता था कि भाई सलमान जी पता नहीं किस तरीके से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत सहज तरीके से हमसे मिले थे। और उसमें भी यही था कि तीन चार लोग बस में बैठे थे, अब बोले कि डायलॉग बोलने वाला है, फिर हमने हाथ ऊपर कर दिया था, मैं बोला हम बोल लेंगे सर। और वहां पर भी हमारी सीट के वहां सलमान जी के डायलॉग लिखे हुए हैं।
1: अच्छा, ऐसा भी था।
0: हाँ, डायलॉग तो उनके लिखे हुए ही रहते थे, और मैं तो तुगलक के भी याद करके चला गया था डायलॉग
1: अरे बाप रे।
0: कि जहां कम पड़ जाए तो हम बोल देंगे। तो वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूं,
1: तुम
0: तू
1: हाँ
0: हाथ
1: करना।
0: करना। तो
1: हाँ,
0: वो शहरों के सारे नाम मेरे सीट पे लिखे थे,
1: ओ
0: बड़ोड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, ये वो, और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, वो
1: हाँ
0: मुझे पकड़ना था। तो वो बड़ा मजेदार सीन है वो, कभी आप आज
1: बिल्कुल
0: भी वो
1: बिल्कुल।
0: फिल्म सेटमैक्स पे चलती है तो उस सीन की। और इतना अच्छा भाईचारा हमारा बना कि फिर मैंने जब दूसरी बार ट्यूबलाइट फिल्म में काम किया, सेम डायरेक्टर
1: हाँ
0: सेम स्टार, तो वो मुझे मुझे पहचान गए सलमान भाई। अरे बोले तुम तो पहले भी काम कर चुके हो ना मेरे साथ में, बोला हाँ सर मैंने बजरंगी भाई। हाँ, कमाल का यार तुम्हारा वो हंसी बहुत अच्छा है, तो उसमें मैंने हंसने का
1: जी
0: एक
1: जी
0: सिग्नेचर बनाया
1: जी
0: था।
1: जी जी
0: तो ये है। और उस वक्त वो तीन सेट पर काम कर रहे थे,
1: ओके
0: प्रेम रतन धन पायो,
1: हाँ
0: बिग बॉस
1: हाँ
0: और बजरंगी भाईजान,
1: ओके
0: और एनडी देसाई स्टूडियो था क्योंकि सब नजदीक है, क्योंकि बिग बॉस लोनावाला में था, प्रेम रतन धन पायो वहीं था,
1: और ये कर्जत में था।
0: हाँ करजत में था। तो उनके साथ खाना वाना भी हुआ, तो बहुत अच्छे से वो खिलाते हैं अपने को एक्टर को, खुद बहुत कम खाते हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कबीर खान सर बहुत प्यार से समझाते हैं एक एक किरदार को, तो हंसी ठल्ले हुए वहां पर भी कुछ उनकी बातों के। जब शूट नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप बात करते हैं ना को एक्टर से, तो सलमान,
1: बिल्कुल।
0: हाँ तो सलमान भाई से बोले अच्छा है अच्छा है, हाँ गुड गुड ऐसा। तो अब इतना बड़ा एक्टर, आई मीन हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा है सलमान खान, तो बचपन से जिनको मैंने प्यार किया फिल्म में देखा, हमने जिनको हमने बागी फिल्म में देखा, वो किरदार आपके सामने बैठा है आपके साथ एक ही फिल्म में, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत
1: मायने
0: मायने
1: रखता है
0: रखता है।
1: जी। एक तो ये कि अभी एक गाने की जगह बनाई जाए और उसके बाद आगे की बात करेंगे, तो
0: मैं
1: कौन सा
0: चाहता
1: गाना
0: हूं
1: होगा?
0: बजरंगी भाईजान फिल्म का ही एक गाना हो जाए, भर दो
1: बिल्कुल,
0: झोली मेरी,
1: क्या
0: जो
1: बात
0: अदनान
1: है,
0: सामी
1: सुनते
0: ने।
1: हैं अदनान सामी की
0: जी जी
1: आवाज
0: जी जी
1: से।
0: जी जी

0: भाई बजरंगी भाईजान की हमने बातें की और फिल्मों में फिर उसके बाद आपका काम आगे जो है वो बढ़ता चला गया और एक तरह से मुंबई में एक जगह बनती चली गई।
1: जी
0: टेलीविजन भी किया और थिएटर की दुनिया में भी आप दोबारा सक्रिय हुए मुंबई में।
1: हाँ
0: ये बातें
1: हम करेंगे। तो थिएटर तो मैंने कहा ना कि मुझे गुजराती थिएटर से बहुत होप थी शुरुआत से और वो आज भी है मुझे, क्योंकि एकमात्र ऐसा थिएटर है जो आपको रोज एक शो दे रहा है।
0: जी
1: जैसे ही आप ग्रीन रूम में पहुंचते हो अपना कॉस्ट्यूम होते हैं ना, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, कुली फिल्म का बच्चन साहब का डायलॉग, तो वैसा वहां वो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थिएटर किया था काफी, सिनेमा करता रहा, टीवी शो के लिए मैंने ऐसे अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने टीवी शो के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब थिएटर मेरे पास है जो गुजराती थिएटर है जो पैसों वाला थिएटर है तो क्यों फिर मैं अपने आप को दो तीन जगहों पर बांटता चला जाऊं। तो फिर मैंने सिनेमा और थिएटर, थिएटर में मैं गुजराती थिएटर, हिंदी थिएटर, अभी लेटेस्ट अभी भी मैं लाइलाज प्ले कर रहा हूँ,
0: पंकज त्रिपाठी जी,
1: पंकज त्रिपाठी जी जिसके प्रोड्यूसर है, उनकी वाइफ मृदुला त्रिपाठी और फैज मोहम्मद ने उसको, वो भी एनएसडी के मेरे जूनियर है, और बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूजिकल प्ले है, एक बैंड वालों की कहानी है।
0: हाँ।
1: कितनी गजब कहानी है कि बैंड वाले जो होते हैं वो कई बार अपनी ही गर्लफ्रेंड की शादी में बैंड बजाने चले
0: अरे बाप रे,
1: दिस इज अ वन लाइन।
0: जी जी
1: तो क्या ये ऐसी ट्रेजेडी है, तो बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके और इतने सहज तरीके से वो आज भी लोगों से हमसे मिलते
0: और बहुत
1: हैं।
0: पुराना आपका तो नाता है, आपके सीनियर रहे हैं।
1: फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर तो समझ लो ना कि वो एक बहुत है आपके, आप तीशु भाई, इरफान भाई, इनका भी ऐसा ही फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर वाला जो रिलेशन होता है।
0: हाँ।
1: ये बहुत मायने रखते।

0: है, तो वही मेरे साथ भी हुआ।
1: जी, तो ये जो इन दिनों थिएटर की जो परंपरा है वो फिर से समृद्ध है, और फिल्मों के कलाकार भी अब थिएटर की दुनिया का रुख करते हैं, और दर्शक भी प्लेस को अलग-अलग शहरों में इंतजार करते हैं, देखना चाहते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, और ये कितनी अच्छी परंपरा है कि थिएटर समृद्ध हो रहा है?
0: बिल्कुल, मुझे तो जहां तक लगता है कि आज से 3,000 साल पहले भी थिएटर चल रहा था।
1: जी
0: बिफोर बीसी में, हम बिफोर क्राइस्ट, हम ग्रीक थिएटर की हिस्ट्री वगैरह देखते हैं, तो वहां से लेकर आज तक कभी थिएटर वीक नहीं हुआ है। हम ही कमजोर पड़ गए हैं, करने वाले ही कमजोर पड़े हैं, थिएटर कभी वीक नहीं हुआ है। ये नसीर साहब का भी एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, नसीर सर का, कि उन्होंने एक जगह कहा था कि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर रहा था तब लोग बोल रहे थे कि थिएटर ऑक्सीजन पर है। आज तक भी वो ऑक्सीजन पर, यानी आज तक नहीं मरा तो
1: हाँ,
0: कैसे
1: लेकिन हमेशा
0: ऑक्सीजन।
1: ये कहा जाता है कि थिएटर ऑक्सीजन पर है।
0: हाँ, हमेशा कहा जाता है। तो ये एक मिथ जो बना हुआ था वो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे टूट रहा है, और अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जैसे कि पहले मुंबई में हम सिर्फ पृथ्वी थिएटर में ही एक डिपेंडेंट थे, लेकिन अब नीता मुकेश अंबानी के वहाँ पर भी कल्चरल सेंटर में ऑडिटोरियम बन गए। बहुत इंटीमेट स्पेसेस सब डेवलप हुई है कि आप 4 किरदारों को लेकर एक परसाई जी की कहानी उठा लो और उसको भी नाटक का रूप दे दो। और इसमें सबसे बड़ा रोल है, अगर मैं कहूँ ना, कि थिएटर घर घर तक पहुँचाने में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो है ही, अब्राहम अलकाज़ी साहब तो है ही, लेकिन उनके जितने भी शिष्य हैं, वो उनमें अंकुर जी है, उनमें रामगोपाल बजाज है, रतन थियाम है, बंसी कौल है, इन सब लोगों ने थिएटर की बहुत बड़ी साधना की, और उस वजह से आज वो थिएटर हमको हमेशा अपनी तरफ चुंबकीय आकर्षण की तरह वो हमें खींचता है। जैसे कहानियों का रंगमंच, इतनी प्यारी विधा है ये,
1: अंकुर जी ने
0: अंकुर
1: रंगमंच
0: जी की
1: लिखी।
0: विधा है ये,
1: जी
0: अंकुर जी, महेश आनंद जी, लेकिन अंकुर जी का ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगता था हमको। हमने प्रेमचंद जी की कहानियां भी की थी, जिनेंद्र जी की भी कहानियां की थी, और उनका एक ही था कि जीरो कॉस्ट बजट है इसमें, आपके पास कहानी है और मंच है,
1: बस
0: लाइट अगर हुई तो ठीक है, बोले बोले अगर एक आध हेलोजन जल गया तो ठीक है आलोक, बाकी और कुछ नहीं है। और एक कहानी की हमको तीन तीन ड्राफ्ट बनाने को कहते थे, कि पहली कहानी में मैं बड़े भाई साहब बनाऊं तो दूसरे ड्राफ्ट में मैं छोटा भाई बनूंगा। हाँ? अब वो छोटा भाई क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, और कहानी का एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए,
1: सेम का सेम
0: सेम
1: होगा।
0: टू सेम। तो फर्स्ट टाइम मैंने फील किया कि व्हाट इज द नैरेटिव एक्टिंग एंड व्हाट इज द सब्जेक्टिव एक्टिंग, तो नैरेशन के साथ। तो आज थिएटर अपने आप में एक अच्छा रोल अदा कर रहा है समाज में, और बहुत अच्छी बात है कि बड़े बड़े स्टार फिल्मों में काम करने के बाद भी थिएटर को एज अ अपना वो समझ कर रहे हैं कि हमें और कुछ नया सीखने को मिल जाए थिएटर में, और
1: बिल्कुल
0: व्हाट इज द थिएटर का कंट्रीब्यूशन फिर सिनेमा में ले जाते हैं,
1: हाँ, तो दोनों तरफ की धाराएं
0: दोनों
1: चल रही
0: तरफ
1: हैं।
0: की धारा।
1: आप तो कई भाषाएं जानते हैं, और जाहिर है कि अब फिर ये थिएटर में भी ये काम आते हैं। आपने यहां मुंबई में गुजराती थिएटर भी किया?
0: मैंने गुजराती थिएटर किया, मैंने एक हमारी खुद की जो मदर टंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, भांतू बोली बोलते हैं उसको,
1: अच्छा
0: हम लोग ट्राइबल हैं एक्चुअली,
1: जी
0: वो
1: जी
0: दो
1: तो ये
0: घुमक्कड़
1: मराठी का एक प्रकार है या
0: नहीं,
1: गुजराती का एक प्रकार है?
0: ये अपने आप में है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती भाषा है,
1: अच्छा
0: बट ये लोग बंजार यानी घुमक्कड़ रहे, तो कोई गुजरात में स्थायी हो गया, कोई महाराष्ट्र में हो गया, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं मराठी में और गुजराती में, लेकिन जब आपस में मिलेंगे तो उनकी एक विशिष्ट बोली है।
1: अरे वाह,
0: अगर आप कहें तो मैं उस बोली में ना, मेरी
1: जी
0: एक फिल्म भी आई है दिल्ली क्राइम सीजन 2,
1: हाँ,
0: वो किरदार मेरा उसी कम्युनिटी के था।
1: तो
0: तो
1: आपने वो किरदार वैसा बनाया
0: नहीं
1: या?
0: नहीं मैंने राइटर के साथ डिस्कस किया था, भावेश मांडलिया राइटर
1: जी जी
0: जिन्होंने ओ
1: जी
0: माई गॉड
1: जी
0: लिखी, तो उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि ये बैक स्टोरी आपकी बहुत अच्छी जा रही है, यानी मैंने अपनी बैक स्टोरी को उस किरदार के अंदर रखा। तो वो भांतू बोली में बात करते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि कहाँ जा रहे हो और शाम तक वापस आ जाओगे ना, अरे कितोड़ जा रहा था, सांझ सुधी उल्टा ही जांगड़ा ना,
1: ओहो,
0: एकदम
1: इसमें
0: डिफरेंट है।
1: कुछ शब्द वो
0: आ
1: गुजराती के आ रहे हैं।
0: गुजराती के थोड़े मराठी, तो ये क्या घुमक्कड़ लोगों की ने कभी महाराष्ट्र से कुछ ले लिया, कोई गुजरात से
1: हाँ,
0: कुछ
1: तो
0: ले
1: एक
0: लिया,
1: मिक्स है।
0: कुछ राजस्थान से कुछ ले लिया, तो ये भाषा मुझे आती है, गुजराती भाषा मुझे आती है, हिंदी मुझे आती है, उर्दू जबान भी, यानी कि नुक्ते उकते
1: हाँ
0: लग जाते हैं ठीक ठाक, तो ये है। अंग्रेजी व्यवहारिक रूप से जितनी बोल सकता है उतनी मैं बोल लेता हूँ।
1: जी
0: तो भाषा मुझे लग रहा है कि एक अभिनेता का सबसे बड़ा वो होता है एलिमेंट, कि जिसको वो जितना मांझ ले उतना अच्छा है।
1: बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग-अलग शहरों में हैं और हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनको

0: लगता है कि एनएसडी जाएं और मुंबई आ जाएं, बस लाइफ सेट है,
1: नहीं नहीं नहीं नहीं
0: तो
1: बिल्कुल नहीं।
0: उनको अपनी तरफ से कुछ कहिए।
1: मैं बस उनको इतना ही कहूंगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको विधा सिखाता है
0: जी
1: और प्रोफेशनल विधा सिखाता है, व्यावसायिक रंगमंच की तालीम देता है, लेकिन वो व्यवसायी एक बहुत बड़ा व्यवसायी है,
0: हाँ
1: तो उस व्यवसाय में आपको आपके ग्राहक खुद ही ढूंढने हैं, है
0: हाँ
1: ना।
0: और मुंबई शहर आपको पीसता
1: हाँ,
0: है।
1: पीसता है, जलना पड़ता है। और ये भी नहीं है कि इसमें नकारात्मकता ही भरी पड़ी है,
0: जी
1: कहीं पर आपका कुछ अच्छे काम आप करते हो तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा कि जो आते हैं और एडिक्शन में भी डूब जाते हैं, है ना, कई और तरह की चीज़ों में भटक जाते हैं। तो उन चीज़ों में अगर ना भटके और अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, चाहे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से किया हो, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से किया हो, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से किया हो, BNA से किया हो, तो प्रशिक्षण का जो एक बल लेकर अगर आप काम करते हो तो सफलता आपको मिलेगी। सफलता को आप ही कैटेगराइज करते हो कि किसको है। जैसे अभी अक्षय खन्ना जी को हम देख रहे हैं धुरंधर फिल्म में,
0: बिल्कुल
1: तो उन्होंने यही कहा कि सफलता को आप कैसे मापते हो, है ना, कि मुझे आप सलमान खान और शाहरुख खान के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो, मैं
0: बिल्कुल
1: अपने लेवल पर सफल हूं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात है।
0: क्या बात है। चलते चलते एक गाने की फरमाइश है
1: शैलेंद्र जी मेरे बहुत फेवरेट रहे,
0: जी।
1: और रेणु जी
0: वाह
1: की
0: वाह,
1: कहानी पर उन्होंने जो
0: तीसरी
1: फिल्म
0: कसम बनाई।
1: तीसरी कसम, उसका अगर आप सुना दे, दुनिया बनाने वाले क्या
0: वाह वाह
1: तेरे मन
0: वाह,
1: में से।
0: जरूर ये गाना सुनाते हैं आपको।
1: जी।

0: आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपना जी, समय देने के लिए।
1: जी जी जी धन्यवाद, और बहुत ही शुभकामनाएं हैं विविध भारती को, आप पूरी टीम को, जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं। और क्या बताऊं मैं आपको कि रेडियो सच में हमारी जिंदगी का एक संगीत है, और अगर इंसान को आप किसी एक अरण्य में डाल दे, किसी घोर जंगल में डाल दे, जहां सिर्फ निराशा निराशा ही हो गुफाओं में, और वहां एक रेडियो चल रहा हो ना, तो वो भी कहते हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक दिया सारे अंधेरे को भगा देता है। तो रेडियो घर में ऐसा है जो हमारी नकारात्मक शक्ति को बाहर फेंकता है और एक रचनात्मक ऊर्जा को हमारे घर में लाता है। तो रेडियो यंत्र घर में रहना वो ऐसा ही है जैसे एक परिवार का सदस्य आपके साथ रह रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दूपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई आप बड़ा।
2: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफरिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं

दी जानी चाहिए। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने रचनात्मक ढंग से अपने मुद्दे रखे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी संबंधित मुद्दों पर अपने विचार और प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। ये दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। इसमें 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ब्रिक्स देशों के युवा मंत्रियों की बैठक आज शाम विशाखापट्टनम में होगी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। बैठक में खेल के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है।

0: ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। बैठक में खेल के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल है। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था के मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
1: 2 ships which are foreign flagged. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कैनेडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज तड़के लागू हो गए। कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कैनेडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच एम्स्टरडेम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के साथ भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया। उधर BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैंडिंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं झूम बराबर झूम फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं नीरज श्रीधर और अलीशा चेन्नई की।

0: लीजिए दोस्तों, अब सुनिए काल फिल्म का गीत सोनू निगम, कुणाल गांजावाला, सुनिधि चौहान और ऋचा शर्मा की आवाजों में।
1: I experienced it too. I experienced it.

दोस्तों भी आपने सुना सुखविंदर सिंह और विशाल दादलानी की आवाज़ों में कमीने फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. सजीवों, मनुष्य समेत सभी जीव जंतु के शरीर में जैविक क्रियाओं यानी बायोलॉजिकल फंक्शन के संचलन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। सजीवों द्वारा भोजन पोषक पदार्थ का अंतर्ग्रहण भोजन को शरीर में पहुंचाने की क्रिया पाचन अवशोषण और स्वागीकरण करने एवं अपच पदार्थ का परित्याग करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन शारीरिक वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं। हमारे आहार में ऐसे फूड शामिल होने चाहिए जो सही

मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सके। इस तरह के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ऊर्जा उत्कों के रखरखाव और शारीरिक क्रियाओं के लिए हर व्यक्ति को 6 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी और खनिज शामिल है। आइए विस्तार से इनके बारे में जानते हैं आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स है, जिसका सेवन हर किसी को करना चाहिए। हमारे शरीर को अच्छे तरह से काम करने के लिए, मांसपेशियों के निर्माण तथा हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाने और सुधारने के लिए प्रोटीन अत्यंत जरूरी है। साथ में प्रोटीन हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत भी है। प्रोटीन के समृद्ध स्रोत में अंडा, मछली, मीट और बीन्स शामिल है। प्रोटीन शरीर को अमीनो एसिड्स प्रदान करता है। विटामिन, हमारे शरीर को विटामिन की बहुत ही जरूरत है। यदि किसी भी कारण कोई विटामिन हमारे शरीर को न मिल पाए तो हमारे शरीर विटामिन जनित रोगों से ग्रस्त हो सकता है। विटामिन वह पदार्थ है जो आपके शरीर को ग्रो करने में मदद करते हैं। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं तथा कोई बीमारी न आए। ज्यादातर विटामिन हमें फल और सब्जी से प्राप्त होते हैं। मिनरल्स एक अच्छे न्यूट्रिशन है। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल या खनिज हमारे शरीर के ठीक ढंग से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। ये न केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करते हैं बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखते हैं। इसके स्रोत में फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली शामिल है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च या मन प्रमुख भोजन पदार्थ है, जो कई तरह के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। आलू, साबुदाना, चावल, साबुत अनाज, पास्ता, रोटी, मक्का आदि में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा यह पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वसा या फैट हमारे आहार का मुख्य घटक है और शरीर में कई काम करता है। इसके आवश्यक स्रोत में डेयरी प्रोडक्ट, मांस, बीन्स और नट तथा वनस्पति तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल है। फैट फैटी एसिड्स में पच जाता है, जिसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। पानी को भी हम न्यूट्रिशन में शामिल करते हैं। शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। यह पर्याप्त पानी पीने से शरीर में तरल संतुलन को बनाए रखने में सहायता मिलती है, जो शरीर में पोषक तत्वों को परिवहन में मदद करते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भोजन को पचाने में सहायता करती है। इसीलिए कभी अपने शरीर में पानी की कमी न आने दें। किसी भी सजीव के लिए पोषण जरूरी है। इसके लिए शरीर क्रियाएं संभव नहीं है। जिस प्रकार से किसी वाहन के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आवश्यक ऊर्जा के विभिन्न अवयवों मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। भोजन शरीर की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त अंगों एवं ऊतकों की मरम्मत में योगदान करता है। इस कार्य को प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि सम्मान करने में योगदान करना है। भोजन शरीर के विभिन्न अंगों एवं जंतुओं को उचित दशा में बनाए रखता है और उनका उचित संचालन कर उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने में योगदान करता है। संतुलन भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। आमतौर एक ह्यूमन बॉडी को उसकी उम्र और जैविक क्रियाओं के अनुसार पोषक तत्वों की जरूरत होती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वर्कर्स के लिए अलग

0: अलग मानक तय किए गए हैं और इन्हीं मानक के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना है। स्वस्थ भोजन करने से सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि आपका दिमाग भी तेज होता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना खाने से शरीर मजबूत होता है। स्वस्थ आहार हड्डियों को मजबूत रखता है। पौष्टिक भोजन गर्भावस्था के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हरी सब्जियों और फल मोटापा, कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाव करते हैं, खासकर वो खाद्य पदार्थ जिसमें फाइबर की अधिक मात्रा होती है। जितना हो सके तेल मसाले वाले खाद्य पदार्थ के सेवन से बचें। इनको लगातार सेवन करने से तरह तरह के बीमारियां आ सकती हैं। पानी खूब पिए। शरीर में पानी की कमी निर्जलीकरण का कारण बनती है, दैट इज डिहाइड्रेशन, जिससे किडनी की समस्या, त्वचा संबंधी समस्या, उल्टी, बुखार और कई अन्य परेशानियां हो सकती है। शुगर शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा शुगर युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे दांत खराब हो सकते हैं, मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती है। उपवास करना शरीर के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, साथ साथ शरीर की कई अन्य समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। हालांकि उपवास के दौरान आप नियमित रूप से पानी पीते रहे, फल ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। तो दोस्तों, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्रोग्राम विच वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय
1: दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
2: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे।

0: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए प्रोग्राम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
1: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं स्टेट लाइजन ऑफिसर NSS यूटी चंडीगढ़ डॉक्टर नेमी चंद गोलिया। डॉक्टर नेमी चंद गोलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर गोलिया, इस सफर की शुरुआत आपके बचपन से करते हैं, तो आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
3: मैं मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले के गांव मुंडवाड़ा का रहने वाला हूँ। ये एक अर्ध मरुस्थलीय जिला है और एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी एक किसान थे। बाद में मेरी स्कूली शिक्षा गांव से ही शुरू हुई। पांचवी तक मैं गांव में पढ़ा। 3 किलोमीटर पैदल चल के हम स्कूल में जाते थे और वापस आते थे। बाद में मेरा कक्षा 6 के अंदर नवोदय विद्यालय के अंदर चयन हो गया। नवोदय विद्यालय में जो पाटन सीकर जगह है वहां पे मेरी 8वीं तक पढ़ाई की। फिर 9वीं-10वीं मैंने मणिपुर विष्णुपुर से की। फिर 11वीं-12वीं वापस पाटन सीकर से की और मेरी महाविद्यालय शिक्षा जिला स्तर के ऊपर राजकीय महाविद्यालय के अंदर हुई। बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय से मैंने स्नातकोत्तर MPhil PhD प्राप्त की
2: जी।
3: और पंजाब विश्वविद्यालय से मैंने सेवा में रहते हुए लॉ ग्रेजुएशन पूरी की
2: जी। तो डॉक्टर गोलिया, बचपन की आपकी बात करते हैं, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी भी रहती है।

0: आपने जैसे बताया कि वो मरुस्थलीय इलाका है, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको पढ़ाई के दौरान और अपने बचपन में?
1: मैं एक किसान का पुत्र था और उस किसानी के दौरान राजस्थान अकाल के लिए जाना जाता था। मेरा बचपन जब था 1987 के आसपास और मेरी स्कूली शिक्षा उस समय चौथी पांचवी में चल रही थी, तो मैंने लगातार 2-3 साल अकाल की स्थिति देखी है। और जमीन होने के बावजूद भी ऐसा लगता था खाने को अनाज नहीं, पशुओं के लिए चारा नहीं। तो उन परिस्थितियों ने मेरे जीवन में भी काफी बदलाव लाया और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के अंदर पीछे भी था कि किसानी के अंदर जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल है, तो शिक्षा के माध्यम से इसको सुधारा जाए। वही मैंने प्रयास किया और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया। जो सबसे बड़ी मूलभूत वहाँ पे समस्या थी वो पानी की थी। साथ ही साथ जब किसान खेती अच्छी नहीं होती है तो आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती। बड़े परिवार थे, खर्चे ज्यादा थे, तो उस स्थिति के अंदर आपका जो जीवन का स्तर है वो बहुत ही निम्नतम रहता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ, जहाँ हमेशा अभावों और चुनौतियों का सामना मुझे हर बार करते रहना पड़ा। और अब भी अगर हम उस क्षेत्र में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको ये सामना करना पड़ता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है, और आपने बखूबी उन चुनौतियों का सामना किया और उन चुनौतियों को पार करके आपने PhD भी की और आपका विषय भी जो था रिसर्च का वो पंचायती राज और गरीबी उन्मूलन नीति, सीकर जिले के विशेष संदर्भ में आपने ये रिसर्च की, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: जैसा आपको बताया कि गरीबी थी और ये मेरे बचपन से मेरे मनस पटल के ऊपर ये चीज थी और मेरा प्रयास यही था कि इसके ऊपर अध्ययन किया जाए और वो कौन से कारण हैं जिसके कारण गरीबी यहाँ पे व्याप्त है और उनके समाधान के लिए क्या प्रयास किया जाए। तो जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर आया शोध के लिए तो मैंने यही विषय चुना कि मेरे जिले के अंदर गरीबी का प्रमुख कारण क्या है। हमारे पास जमीनें हैं, जमीनें होने के बावजूद जो सामाजिक इंडिकेटर्स हैं वो बड़े पुअर हैं, तो इसलिए मैंने इसको चुना। बहुत सारी योजनाएं भी चल रही थी पर योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो इस संदर्भ में मैंने मेरी जो रिकमेंडेशन दी वो राजस्थान सरकार ने इसको अध्ययन भी किया। मूल रूप से मेरे ये जो शोध था वो अंग्रेजी में था, पर मेरे जो शोध पर्यवेक्षक थे उन्होंने कहा कि इसको हिंदी में रूपांतरण करेगा तो ये समाज के लिए उपयोगी होगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने इसको हिंदी के रूप में किया और राजस्थान सरकार ने इसके ऊपर गौर किया और जो बाद में जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना चली उसमें बहुत सारी चीजें को जो उन समाधानों को शामिल भी किया गया। जिला स्तर पे ऊपर भी ये सुझाव दिए गए और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर भी ये गरीबी के ऊपर मेरा शोध है उसको बाकायदा उदाहरण दिए जाते।
0: तो पढ़ाई के बाद किस तरह से आप जॉब में आए, ये सफर किस तरह से शुरू हुआ?
1: जब मैं BSc का स्टूडेंट हूँ, BSc करने के बाद मैंने MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया, तो इच्छा थी कि कोई प्रशासनिक सेवा के अंदर जाए
0: जी।
1: तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के भी एग्जाम दिए और केंद्रीय स्तर पे भी दिए, पर जब मैं MA में आया तो मेरे साथी लोग जब हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के क्लास लेते थे, एक दूसरे को पढ़ाते थे, बोले कि यार आपको प्रोफेसर बनना चाहिए क्योंकि आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो। तो MA में आने के बाद जब मेरा MA का रिजल्ट लेट आया, उससे पहले मेरी GRF हो गई, तो मैं आगे की स्टडी के लिए भी तैयार हो गया, MPhil की, PhD की। फिर एक वैकेंसी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से निकली और उस दौरान हमारे जो राजस्थान सरकार थी उसने 5 साल के लिए जो नौकरियों पे प्रतिबंध लगा दिया था, तो राजस्थान में नौकरियों की संभावना हमारा जब बैच आया उस समय नहीं थी, तो UPSC की ये वैकेंसी निकली। पूरे इंडिया में एक ही वैकेंसी थी लोक प्रशासन की और मैंने उसके अंदर इंटरव्यू दिया और मेरा यहाँ पे चयन हो गया UPSC के माध्यम से, और मैंने सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42 ज्वाइन किया।
0: तो इस तरह से राजस्थान से चंडीगढ़ तक का आपका सफर जो है वो शुरू हो गया।
1: हाँ जी।
0: तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गर्ल्स सेक्टर 42 में किस पोस्ट पे आप वहाँ पे आए?
1: मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के ऊपर आया
0: जी।
1: उस समय लेक्चरर बोलते थे जब 2006 में मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ, बाद में उसको डिजाइनेट कर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर।
0: तो आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गर्ल्स सेक्टर 42 में आप लेक्चरर के पद पर आप आसीन हो गए। तो वहाँ पे पढ़ाने के दौरान कोई खास आपका तजर्बा रहा हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस?
1: ये आम तौर पे ये कहा जाता है कि क्लास में शिक्षक जाएगा और पढ़ा के आ जाएगा, मेरी ये कार्य प्रणाली कभी नहीं रही। मैं जब क्लास में पढ़ाता था तो मेरे को लगता था कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, जो हमारी शिक्षा है और हमारी समस्याएं उनमें बहुत अंतर है। दूसरा पहलू ये था कि ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंटों की पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके व्यक्तित्व का निर्माण भी करना चाहिए। और देखो सर, हम आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं कि शुरुआत में मैंने 5

0: लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उनको ये कहा कि आप बहुत अच्छा लिखती हो, बहुत अच्छा करते हो, थोड़ी मेहनत करो। तो वो बड़े न्यूट्रल थी पहले, पर उनको लगा, मोटिवेट हुई कि अच्छा लिखते हैं और वो यूनिवर्सिटी के अंदर टॉपर्स में आई। दूसरा, कई बार क्या होता है कि बहु प्रतिभाएं होती हैं विद्यार्थियों के अंदर, तो एक टीचर की ऐसी नजर होनी चाहिए कि वो पहचान सके। और सर उसका एक परिणाम बताते हैं हम कि मेरी स्टूडेंट थी एक BA1 में, और उसको हमने बाकायदा पूछा कि आप, तो हमने कहा कि मॉडलिंग में जाओ, और उसने उस क्षेत्र को अपनाया और सी बिकेम मिस यूनिवर्स हरनाज संधू
1: जी
0: 2021।
1: हरनाज संधू जी।
0: तो 42 के अंदर हम केवल बच्चों को हमारी जो किताबी शिक्षा तक की सीमित न रख के उनको विभिन्न कार्यक्रमों में, समाज सेवाओं में, थिएटर में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते थे और उसके वांछित परिणाम हमारे सामने आए।
1: बिल्कुल, और जब ऐसा परिणाम हो, मिस यूनिवर्स आपकी स्टूडेंट बन जाए तो गर्व होना तो लाजमी है।
0: एक साधारण परिवार से एक लड़की जो कॉन्फिडेंस के बूते पे वहां तक जा सकती है, ये एक शिक्षक की भूमिका बड़ी होती है इसके अंदर।
1: बिल्कुल, जो गुरु होता है वो यही चाहता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और आपने बखूबी वो कर दिखाया है। तो अब क्योंकि आप स्टेट लाइजन ऑफिसर NSS हैं, तो आप हमें थोड़ा NSS के बारे में बताइए कि NSS यानी नेशनल सर्विस स्कीम का मूल उद्देश्य क्या है, और आज के समय की अगर बात करें तो इसकी प्रासंगिकता किस रूप से बढ़ी है।
0: जो राष्ट्रीय सेवा योजना है जिसको हम NSS के रूप में जानते हैं, ये दो महान महापुरुषों के दर्शन पे आधारित है। एक, महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हमारा युवा ये जो गांव और देश के निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाए, और दूसरा युवा अपना विकास करे, विवेकानंद जी का दर्शन। इन दिनों को समाहित करके 1950 के आसपास हमारे जो राजनीतिक गलियारों के अंदर और शैक्षणिक संस्थानों में ये बात उठने लगी कि युवाओं को समाज सेवा के साथ जोड़ा जाए, बहुत सारी कमेटियां बनी। 1959 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को कहा कि विद्यार्थियों को समाज सेवा के साथ जोड़ा जाए, और इसके लिए कमेटी बनी। बाद में वाइस चांसलर्स की कमेटी बनी, और आखिर में 24 सितंबर 1969 को, और जो गांधी जी के जन्म का 100वां वर्ष था, तो उस समय के हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने इस योजना की शुरुआत की। फिर इसको शुरुआती तौर पे ये 37 विश्वविद्यालयों में था, 40,000 NSS वॉलंटियर थे। आज इनकी संख्या बढ़ के 42 लाख से भी ज्यादा चली गई है, और 1985 में जाके ये स्कूल्स में भी लागू कर दिया। तो NSS जो स्कूल के क्लास 11 और 12th में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में ये इम्प्लीमेंटेड है, और इसका एक पूरी एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक यूनिट में 100 वॉलंटियर होते हैं और उनके ऊपर एक प्रोग्राम ऑफिसर होता है और वो शिक्षक की प्रोग्राम ऑफिसर होता है। फिर इसका एक मोटो है जो इसकी जान है, जिसमें लिखा होता है नॉट मी बट यू, कि निस्वार्थ भाव से दूसरे लोगों की सेवा करना। और जो NSS के अंदर आ गया वो एक योजना नहीं सर, वो जीवन जीता है। मैं मेरा बताता हूँ कि मैं एक NSS वॉलंटियर भी था, प्रोग्राम ऑफिसर भी, राजपुरी NSS को देख रहा हूँ कि एक बार NSS में आ गया, ही इज ऑलवेज ए वॉलंटियर, और वो कहीं पे भी खड़ा हुआ मिलेगा आपको, और उसके काम करने का तरीका भी अलग से मिलेगा। समाज के साथ हमारी शिक्षा को जोड़ना, क्योंकि NSS का मुख्य उद्देश्य यह था कि कैंपस को कम्युनिटी के साथ जोड़ा जाए। कहीं ना कहीं इस चीज की कमी रही, तभी हम हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, पर NSS इसका एक उदाहरण है जो खुद करके सीखता है। इसके दो आयाम है, पहला आयाम है कि युवाओं का विकास और दूसरा है समाज की सेवा
1: जी।
0: तो इसके अंदर युवा भी, अब उनके नेतृत्व की भावना आती है, टीम बिल्डिंग का आता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनके अंदर, और कहना चाहिए सिंपैथी जो समाज के प्रति है वो आती है, और साथ ही साथ सेवा भी हो जाती है
1: जी। डॉक्टर गोलिया, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: मौसम को देखते हुए जो आजकल चल रहा, तो एक गाना मुझे बहुत ही पसंद है, रिमझिम गिरे सावन
1: जी, बहुत ही अच्छा गाना है, आइए सुनते हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं स्टेट लाइजन ऑफिसर NSS शिक्षा विभाग यूटी चंडीगढ़ डॉक्टर नेमी चंद गोलिया। अगर आज के युवाओं की बात करें, आज का युवा जो है वो डिजिटल दुनिया में ज्यादा समय दे रहा है, तो उन्हें समाज सेवा और सामुदायिक गतिविधियों के साथ जोड़ना कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए?
1: बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। आज हमारे समाज के अंदर दो तीन चीजें हैं जो युवाओं के लिए बड़ी घातक हैं, जिसके अंदर एक डिजिटल दुनिया, जिसके दोनों पहलू हैं, अच्छे भी और बुरे भी। पर हमने ग्रहण इस समय की उसकी उम्र की नजाकत को देखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पहलू उनके लिए अच्छा है, और दूसरा है वो नशा। तो अगर हम समाज सेवा से उनको जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर समय है वो कम होगा, साथ ही साथ चीजों को समझने में भी उनको आसानी होगी, और साथ ही साथ आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल दुनिया पे, तो उससे संबंधित अपराध भी उनके साथ है जिनको साइबर क्राइम कहते हैं
0: जी।
1: तो हम युवाओं को साइबर क्राइम के बारे में कि समाज को वो जागरूक करें और खुद भी जागरूक रहें, इस दिशा में इसको हम सकारात्मक रूप में लेके भी युवाओं को हम एक नई दिशा दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा डॉक्टर गोलिया। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो क्या क्या गतिविधियां रहती हैं आपकी इसके दौरान?
1: NSS के अंदर हम समय को देखते हुए कि किस समय समाज के अंदर कौन सी समस्याएं हैं, जैसे हम सबसे ज्यादा हमारा एक तो हमने युवाओं को समाज सेवा के लिए लागू करने के लिए एक प्रोजेक्ट सारथी चलाया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2018 में की गई थी, पर बाद में कोविड के कारण ये सफल नहीं हो पाया। बाद में हमने इसको दोबारा शुरू किया और ये एक राष्ट्रीय मॉडल बन चुका है, और मंत्रालयों ने, भारत सरकार ने इसको स्वीकार भी किया
0: जी। थोड़ा विस्तार पूर्वक आप बताइए कि ये जो आपका सारथी प्रोजेक्ट है वो क्या है और किस तरह से आप इसमें काम कर रहे हैं?
1: चंडीगढ़ के अंदर जो सारथी प्रोजेक्ट है हम तीन जगह पे चला रहे हैं, PGI के अंदर सेक्टर 32 में और सेक्टर 16 के हॉस्पिटल के अंदर चला रहे हैं। इसके अंदर चंडीगढ़ NSS सेल रोस्टर बना के देती है इंस्टीट्यूट वाइज PGI को, और एक रोस्टर के विद्यार्थी 15 दिन के लिए उस हॉस्पिटल में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक काम करते हैं। जैसे PGI की बात कहूं तो न्यू OPD के अंदर है, कार्डियक वार्ड के अंदर है, आई के OPD के अंदर है, ट्रॉमा सेंटर के अंदर है, ब्लड डोनेशन में है वो काम करते हैं, और इस समय अप्रोक्सीमेटली 80 के लगभग वॉलंटियर पर डे वहां पे जाते हैं। और ये वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, टेस्टिंग है, व्हीलचेयर पुलिंग है, और भी कोई किसी भी तरह की अगर वॉलंटियर नॉन क्लिनिकल सर्विसेज होती हैं उनमें बाकायदा हेल्प किया है। पीछे स्ट्राइक हुई तो उन्होंने खाना भी दिया पेशेंट्स को, सफाई

0: भी की वहाँ पे, तो जो एक स्पेशलाइज सर्विस के अलावा जितने भी सेवाएं हैं हमारे एनएसएस वॉलंटियर देते हैं। इससे क्या हुआ कि पीजीआई का भी जो काम था वो कम हुआ है, बर्डन एक इमेज भी सुधरी है, क्योंकि वहाँ पे सबसे परेशान लोग आते हैं और जब उनको सेवाएं नहीं मिलती है तो वो बड़े दुखी होते हैं। तो इसमें हमारे जो सारथी वॉलंटियर है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, और एक स्टडी पीजीआई ने की थी कि इनके वेटिंग टाइम में भी काफी कमी आई है, जिस पेशेंट को दूसरे दिन आना था उनका काम एक दिन में हो जाता है।
1: जी, तो आप बता रहे थे कि ये आपका ये जो मॉडल है सारथी मॉडल, वो देश के विभिन्न हिस्सों में भी शुरू किया गया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए।
0: ये जो मॉडल जब हमने पायलट के तौर पे चलाया और जब इसको दिल्ली के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने बाकायदा इसको प्रेजेंट किया गया पीओ में, तो इसको अप्रिशिएट किया गया, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी और जो युवा मामलों के मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, इन्होंने भी इसको सराया, और सभी युवा और संस्थानों को बोला गया कि जो चंडीगढ़ का सारथी मॉडल है वो सभी हॉस्पिटल्स में लागू किया जाए और जो वॉलंटियर है उनको एंगेज किया जाए, जिससे कि समाज की बड़ी सेवा हो सके और हॉस्पिटलों के ऊपर जो दबाव है उसको भी कम किया जा सके।
1: जी, तो सारथी मॉडल जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर ही आप लोग चला रहे हैं या समाज के और वर्ग हैं उनके लिए भी आप लोग ये काम कर रहे हैं?
0: ये सारथी मॉडल हम केवल हॉस्पिटल्स के लिए चला रहे हैं, दूसरे कामों के लिए जैसे हमने साइबर सिक्योरिटी के लिए साइबर सोल्जर्स तैयार करके एनएसएस वॉलंटियर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाके स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं और फर्दर स्टूडेंट्स है वो कम्युनिटी में जाके लोगों को अवेयर करते हैं।
1: तो ये साइबर सोल्जर्स तैयार किस तरह से आप लोग करते हैं?
0: हमारा चंडीगढ़ पुलिस के साथ जो साइबर सेल है उसके साथ कोलैबोरेशन है, वो उनको ट्रेनिंग देते हैं और जो तरह तरह के क्राइम है उनके बारे में बताते हैं, और बाद में उन्हीं चीजों को लेके वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और समाज में जाते हैं।
1: चंडीगढ़ पुलिस उनको तैयार करती है साइबर सोल्जर्स को, और वो साइबर सोल्जर्स विभिन्न स्कूल कॉलेजेस या कम्युनिटी में जाके वो लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं
0: जी
1: साइबर क्राइम के बारे में
0: जी।
1: तो इस तरह से आप साइबर क्राइम को रोकने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
0: हाँ, एनएसएस की एक जिम्मेदारी है कि वो समाज के अंदर जो गलत चीजें चल रही हैं जिनसे हमारा नुकसान हो रहा है, बहुत कई बार हमारे एनएसएस वॉलंटियर जो वेटरन्स थे हमारे, उनके जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाते थे तो उनको बड़ा वो तसल्ली देते थे और कहते थे कि अब इतना पैसा कमाने की भी क्या जरूरत है, क्यों लालच में आते हो। तो जब बच्चा किसी बड़े को कहता है कि लालच क्यों करते हो, तो उससे भी चीजों में बड़ा फर्क पड़ता है,
1: क्योंकि आज का जो युवा है उनमें से बहुत से ऐसे युवा हैं जो नशे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या नशे की अंधी गलियों में खो जाते हैं। तो उनको नशे से दूर करने के लिए और जो लोग जाने अनजाने नशे की तरफ बढ़ चुके हैं उनको वापस लाने में एनएसएस का क्या योगदान है?
0: मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस शहर के अंदर 2-3 सालों के अंदर एनएसएस के 30-40 हजार वॉलंटियर निकले हैं। मेरा कोई भी एनएसएस वॉलंटियर नशे की लत में नहीं है। जब एक शहर के अंदर 40 हजार लोग नशे की लत में नहीं है, कहने का मतलब एनएसएस ने 40 हजार लोगों को नशे से बचा लिया। फिर दूसरा एस्पेक्ट इसका है कि ये जो नशे की लत में है उनके लिए काम करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। और मैं आपको अनौपचारिक रूप से बताना चाहता हूँ कि पिछले समय में, पिछले 2-3 सालों में एनएसएस वॉलंटियर ने कम से कम 2-3 हजार स्टूडेंट्स की शराब छुड़ाई है, नशे में जाने से रोका है, जो हमारे पास अनौपचारिक रूप से आंकड़े हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ये काम इन्होंने किया, और इनका एक अनौपचारिक संगठन है, पीयर ग्रुप है, जो लगता है कि नशे में जाने के उसमें है उनको रोकने का प्रयास करते हैं और सर्वे करते हैं डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से, और मदर से प्रश्न पूछते हैं क्या आपका बेटा या बेटी नशे की चपेट में तो नहीं है। तो हमें उस स्थिति का, खतरे का एहसास हो जाता है कि किस तरह तक जो नशा पेनिट्रेट कर चुका है। दूसरा, हमें यह भी पता चलता है एनएसएस वॉलंटियर के माध्यम कि कौन कौन से नशे प्रिवेल कर रहे हैं। अभी पीछे एक आया कि सर आजकल कूल लिप्स बहुत चल रही है, तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये कूल लिप्स क्या होता है, कोई लिपस्टिक होती है, क्या होता है, वो एक तंबाकू होती है, माउथ फ्रेशनर के नाम से बेची जाती है। तो जनरेशन के पास जो नशे के रूप चल रहे हैं ऊपर वालों को नहीं पता होता, तो यही लाके हमें बताते हैं कि आजकल ये चल रहा होता है। तो हमें जानकारी भी एनएसएस वॉलंटियर प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ उसको निकालने का भी प्रयास करते हैं, फ्रिस्किंग भी करते हैं स्कूलों के अंदर, तो ये इनकी भागीदारी रहती है। फिर बड़ी कैंपेन करते हैं, पीछे चंडीगढ़ के अंदर नशा मुक्ति को लेकर बड़ी बड़ी कैंपेन हुई, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी रही तो एनएसएस वॉलंटियर की रही। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चंडीगढ़ के अंदर अगर नशा मुक्ति के विरुद्ध कोई काम सबसे ज्यादा कर रहा है तो वो एनएसएस कर।
1: जी, चंडीगढ़ के जो गांव हैं या कॉलोनीज हैं या स्लम एरियाज हैं, तो उसमें एनएसएस की क्या भूमिका है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर करने में।
0: एन

0: एक्सेस एक गांव या स्लम एडॉप्ट करके रखता है एक यूनिट, और एक हमारा 7 दिन का कैंप होता है, और वो 7 दिन का कैंप एडॉप्टेड विलेज में ही लगता है। तो उस एडॉप्टेड विलेज के अंदर अगर कहीं सफाई नहीं है, जैसे इस दौरान बरसात का मौसम है, तो हर यूनिट अपने अपने एडॉप्टेड विलेज और स्लम में जाती है और देखती है कि कहीं मच्छर के लार्वा तो नहीं है, जो मलेरिया डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के वो उनके कूलर खाली करवाती है, देखती है लार्वा है नहीं, फिर पूरा एक सर्वे करके पूरे मलेरिया डिपार्टमेंट को बताती है। साथ ही साथ जब कैंप लग रहा होता है तो वहाँ के हेल्थ कंडीशन कैसी है, लिटरेसी कैसी है, अगर गंदगी फैली है तो वहाँ पे सफाई करने का भी काम करते हैं। साथ ही साथ उस एरिया के जो काउंसलर है, वहाँ कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाना हो उसके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। अब जैसे प्लांटेशन का दौर है, प्लांटेशन का भी काम करते हैं, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं पीजीआई के साथ मिलके, कई एनजीओ है उनके साथ मिलके, जैसे मेमोग्राफी का बहुत करवाते हैं एनएसएस वाले, तो वहाँ पता चलता है कि जो बेचारी महिलाएं अफोर्ड नहीं कर सकती उनको फ्री के अंदर डिटेक्ट हो जाती है या तो उनके इलाज कराने का। ये सब एनएसएस एक चैनल के रूप में काम करता है एनजीओ के साथ, और जो संस्थाएं दान देना चाहती हैं, जो हेल्प करना चाहती हैं, हेल्थ चेकअप कैंप लगाना चाहती हैं, तो एनएसएस उसमें एक ब्रिज का काम करता है।
1: तो डॉक्टर गोलिया, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि आप लोग उस अडॉप्टेड विलेज में जाके कैंप लगाते हैं 7 दिन का, तो इस दौरान अगर किसी स्वास्थ्य केंद्र में कहीं सफाई नहीं है या कोई और कमी है, तो उसके बारे में भी आप स्वास्थ्य विभाग को सूचना देते हैं?
0: बिल्कुल, इस बारे में देते हैं। पहली बात तो अगर सफाई नहीं है तो हमारे एनएसएस वॉलंटियर उसकी सफाई करते हैं, फिर कंसर्न जो डिपार्टमेंट है हेल्थ है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको बताते हैं कि हमने एक बार करती, अब आप इसको थोड़ा मेंटेन कीजिए।
1: रिसेंटली आपने कहीं ऐसा काम किया?
0: इस बारे में हमने मलोया की जो डिस्पेंसरी थी उसके अंदर बहुत गंदगी थी, तो हमने पूरा 7 दिन का कैंप वहाँ पे लगवाया और उसकी सफाई करके वहाँ प्लांटेशन भी करवाया, और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को बता दिया कि आगे से इसको मेंटेन रखें, और वो एक बड़ी अच्छी शुरुआत थी जी। इस तरह से भी हम काम करते हैं। और साथ ही अभी कुछ ही समय में डड्डू माजरा का जो डंपिंग ग्राउंड था वहाँ पे जो जगह खाली हुई जो उसको उठाने के बाद, तो एनएसएस वॉलंटियर्स ने भी वहाँ प्लांटेशन की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में।
1: डॉक्टर गोलिया, अगर कोई स्टूडेंट एनएसएस से जुड़ना चाहता है तो किस तरह से वो जुड़ सकता है?
0: देखो, इसके अंदर एनएसएस में जुड़ने के लिए जो सबसे पहली चीज है, जबरदस्ती नहीं है, ये वॉलंटियरिज्म है, और तभी यही जान है एनएसएस की। तो वो एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर के पास जाएगा और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा, फिर अगर नंबर ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वो इंटरव्यू लेते हैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर, और जज्बा देखते हैं कि किसकी ज्यादा वॉलंटियरली सर्विस करने का जज्बा, तो उस हिसाब से बाकायदा एनएसएस वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन होता है।
1: क्या कुछ ऐसा भी है कि जो स्टूडेंट एनसीसी में है वो एनएसएस का वॉलंटियर नहीं बन सकता है?
0: नहीं, ये हमारा मैंडेट है, जो एनसीसी का है वो एनएसएस का वॉलंटियर नहीं बन सकता।
1: तो डॉक्टर गोलिया, जो COVID-19 का दौर था उसमें एनएसएस ने क्या भूमिका निभाई, और खास तौर पर अगर आपकी भूमिका की बात करें तो किस तरह से रही आपकी भूमिका COVID-19 के दौर में?
0: COVID-19 ने एक एनएसएस को एक्सप्लोर करने का एक बहुत बड़ा मौका दिया, और एनएसएस का बहुत ही जबरदस्त मानवीय चेहरा उसमें उभर के आया। कोविड के दौरान जब देखा जाए तो जिनके नियर और डियर बीमार थे या कोविड थे वो भी नहीं थे, और एनएसएस के वॉलंटियर और एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर सड़कों पे थे। एनएसएस कोविड के दौरान जो मेरी भूमिका थी, मैं कंट्रोल रूम इंचार्ज था और 2 साल तक मैं लगातार रहा, और कंट्रोल रूम इंचार्ज के अंदर पूरा डाटा मैनेजमेंट और पूरे एरिया के ऊपर नजर, किसको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी, डिस्पेंसरी से जो डाटा आना, और पूरे कंटेनमेंट जोन बनाना, ये एक जिम्मेदारी थी मेरी। और उस दौरान जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली, बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे आज भी मेरा दृष्टिकोण बदल गया, उस दौरान हमारे एनएसएस वॉलंटियर और मैंने खुद ने क्रिमिशन किए हैं, और साथ ही साथ उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने आने से भी मना कर दिया। तो ये एक बड़ा ही अलग कि हम प्रोटोकॉल के तहत 25 सेक्टर में बुलाते थे तो कुछ लोगों ने मना ही कर दिया कि आप ही अपने आप कर दीजिए। साथ ही साथ सबको राशन पानी देना, मेडिकल सेवाएं देना, और ये जानते हुए कि हमारे जीवन को खतरा है, और इस चीज को लेकर राष्ट्र स्तर पे हमारे एनएसएस वॉलंटियर को अवार्ड भी मिला कि उन्होंने बॉडी भी क्रिमेट की, उनका दाह संस्कार किया, और इस चीज को सराहा गया। और एनएसएस की भूमिका कोविड में एक बहुत ही जबरदस्त समाज सेवी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर करके
1: जी।
0: मेरी जहां तक भूमिका है, मेरा कंट्रोल रूम का इंचार्ज था, सबको बांधे रखना और उनके आगे चलना, तो जो एक लीडरशिप का रोल था वो रहा
1: जी। डॉक्टर गोलिया, ये जो समाज सेवा करते हुए या आपकी सर्विस के दौरान आपको कौन कौन से अवार्ड्स जो हैं वो उनसे सम्मानित किया गया?
0: मैंने जब 42 के अंदर मैं टीचर था और एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर था, तो मैंने

0: कुछ प्रोजेक्ट चलाए थे, प्रोजेक्ट उदय, प्रोजेक्ट हेल्पिंग हैंड, नन्नी जान पीजीआई में, तो उनको बेस मानते हुए दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने मुझे ग्लोबल पीस अवार्ड दिया एक, और एक है कि इस्टेब्लिशिंग ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड, ये दो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड थे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर मुझे यूथ एम्पावरमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने यूथ एम्पावरमेंट अवार्ड दिया। फिर मुझे बीइंग ए एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर मुझे स्टेट एनएसएस अवार्ड मिला, और कोविड की जो मेरिटोरियस सर्विसेज को देखते हुए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे स्टेट अवार्ड प्रदान।
1: जी डॉक्टर गोलिया, क्योंकि आज बहुत से हमारे सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, खास तौर पर अगर युवाओं की बात करें तो उनको एनएसएस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि एनएसएस अपार संभावनाओं का समुद्र है, उसमें गोता लगाने की जरूरत है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। एनएसएस आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा ही नहीं है, आपके जीवन को आगे भी लेके जाएगा, और जो नेतृत्व क्षमता और एडवर्स कंडीशन में अपने आप को एस्टेब्लिश करने की जो स्किल है वो एनएसएस आपको प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ जो जिंदगी का मुख्य उद्देश्य होता है खुश रहना, दूसरों की सेवा करके जो खुशी मिलती है वो एनएसएस ही प्रदान कर सकता है।
1: जी डॉक्टर गोलिया, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, आप सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम का हिस्सा बने। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस अवसर पे आपने बुलाया मुझे और सबसे रूबरू होने का मौका प्रदान किया।
1: दोस्तों, आज सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे स्टेट लाइजन ऑफिसर NSS शिक्षा विभाग यूटी चंडीगढ़ डॉक्टर नेमी चंद गोलिया। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी अरुण बाबा ने। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है रमन भगत। अब आज का सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम समाप्त करने के अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
3: अभी आप सुन रहे थे सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकननेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया और प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामिन मैलिएट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। यह दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला

सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सीबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पहले कैथोलिक संघीय मंत्री और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक शहबाज भट्टी की हत्या के 15 साल बाद भी ईसाई हिंदू और अहमदिया सहित अल्पसंख्यक समुदाय देश भर में भेदभाव और धार्मिक स्थलों पर हमलों का सामना कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया संस्थान पीजे मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अत्याचारों में अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह शामिल हैं। रिपोर्ट में इश्निंदा कानूनों के दुरुपयोग का भी उल्लेख है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने

0: समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पहले कैथोलिक संघीय मंत्री और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक शहबाज भट्टी की हत्या के 15 साल बाद भी ईसाई हिंदू और अहमदिया सहित अल्पसंख्यक समुदाय देश भर में भेदभाव और धार्मिक स्थलों पर हमलों का सामना कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया संस्थान पीजे मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अत्याचारों में अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह शामिल हैं। रिपोर्ट में इश्निंदा कानूनों के दुरुपयोग का भी उल्लेख है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर दो श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की।
1: आज इस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों, विशेषकर युवाओं को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की। और खेलों में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से जारी है। महिला डबल्स के पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया है। यह मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच अम्स्टरडैम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉग इन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक। आकाशवाणी चंडीगढ़ के

0: क्लासिफाइड विज्ञापनों से
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
2: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

0: FM 107.2 MHz ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6:20 ਤੇ, ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने उत्पादन को दंडित करने की बजाय PLI योजना के माध्यम से पुरस्कृत करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा पिछले चुनाव के समय महिलाओं व युवाओं से किए वादे न निभाने का आरोप लगाया। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित। तीनों स्तर का कुल परिणाम 16.57% रहा और कुरुक्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में 183 प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान PLI योजना से की।
2: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और

0: डायरेक्ट जॉब बनी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है, इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर हो। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर 2 श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की। श्री पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने हाल में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें वर्ष 1937 के अपने प्रस्ताव का हवाला देते हुए वंदे मातरम के केवल पहले 2 श्लोकों के गायन की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रगीत की अवहेलना करने का प्रयास सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी वंदे मातरम गाने की बात कही थी। पात्रा ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्र का मंत्र है और इसका उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करना नहीं है।
2: देश को आप इस प्रकार वंदे मातरम के माध्यम से विभाजित करने की कोशिश करेंगे और वंदे मातरम, जैसे गांधी जी ने कहा, यह देश का गान है, यह मंत्र राष्ट्र का है, यह हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभाजन का तरीका नहीं।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा पिछले चुनाव के समय महिलाओं व युवाओं से किए वादे न निभाने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने आज पटियाला जिले के घनौर कस्बे में आयोजित तीज महोत्सव में पंजाब की मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं से हर महीने 1,000 रुपये देने का वादा किया था और अब अगले चुनाव सिर पर आ गए हैं, तब भी पंजाब के मुख्यमंत्री मंच से महिलाओं से पूछ रहे हैं कि कितने महीने के पैसे खाते में डाले जाएं। उन्होंने सवाल किया कि यह मातृशक्ति से मजाक नहीं तो और क्या है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की खराब हालत के चलते पंजाब से उद्योगों द्वारा पलायन करने और युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा होने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हताश निराश युवा लगातार नशे के दलदल में धंसता जा रहा है।
3: मैं भैनों आज आप दे विचे गल कह के जा रहे हैं, जदों भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब दे विच बनूगी नरेंद्र मोदी जी दे नेतृत्व दे विच, जेड़े नशे का कारोबार करने वाले लोग ने वो या तो नशे का कारोबार छड़ देंगे या पंजाब नू छड़ के वो बाहर चले जावांगे। मैं आप नू एक गल और दसना चाहता कि हरियाणा दे विच साडी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची दे गरीब परिवार के बच्चे नू भी नौकरी देने का काम कर रही है। हरियाणा दे विच किसी भी मां किसी पिता को किसी विधायक ते मंत्री मुख्यमंत्री दे को जान दी जरूरत नहीं है, ये साडी सरकार दी नीति है।
1: उन्होंने महिलाओं को कोथलियां और सूट वितरित किए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली महिला कलाकारों को सम्मानित किया। इस अवसर पर हरियाणा के पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल, तीज महोत्सव के संयोजक श्री विकास शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा के तीनों स्तर का कुल परिणाम 16.57% रहा। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया इस बार लगभग 1,92,000 अभ्यर्थियों ने प्राथमिक अध्यापक TGT और PGT के लिए यह परीक्षा दी थी। 31,847 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है जबकि 30,883 अभ्यर्थियों ने बायोमेट्रिक कराया था। प्रवक्ता ने कहा कि बायोमेट्रिक से वंचित 964 अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा। बोर्ड ने कहा कि अब जिला मुख्यालय नहीं बोर्ड परिसर में बायोमेट्रिक्स होगा। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण

0: कुमार बेदी ने आज कुरुक्षेत्र में हरियाणा दशनाम गोस्वामी समाज सभा द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में समाज के 183 प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इनमें 168 विद्यार्थी 10वीं में 12वीं कक्षा में 80% से ऊपर अंक लेने वाले और 15 विभिन्न खेलों में समाज का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी शामिल रहे। श्री कृष्ण बेदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी तुलसीदास जी सर्वश्रेष्ठ संतों में शामिल हैं जिन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की। उन्होंने लोगों को जागृत करने और समाज में चेतना लाने का काम किया। उन्होंने नागरिकों से महान संतों व महापुरुषों को दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने हरियाणा दशनाम गोस्वामी समाज सभा को धर्मशाला निर्माण कार्य के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर कुरुक्षेत्र शहर में गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर चौक का निर्माण करवाए जाने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में श्री बेदी ने बताया,
1: दशनाम स्वामी तुलसीदास समाज सभा द्वारा आज कुरुक्षेत्र के धर्मशाला के पावन पवित्र तट पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मोत्सव मनाया। वहीं पर समाज के जो मेधावी छात्र हैं छात्राएं सभी को समाज की तरफ से मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। इससे अवश्य ही उन बच्चों का उनके परिवारों का हौसला बढ़ेगा और बच्चों को शिक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी।
0: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज चरखी दादरी में कैप्टन जिले सिंह स्कूल परिसर में 59वीं 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्कूली कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री महिपाल ढांडा व विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया और उनका उत्साहवर्धन किया। 3 दिवसीय खेल स्पर्धा में प्रदेश के सभी जिलों से 14, 17 एवं 19 आयु वर्ग की कबड्डी टीमें हिस्सा ले रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने उत्पादन को दंडित करने की बजाय पीएलआई योजना के माध्यम से पुरस्कृत करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा पिछले चुनाव के समय महिलाओं व युवाओं से किए वादे न निभाने का आरोप लगाया। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित, तीनों स्तर का कुल परिणाम 16.57% रहा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें।
1: साढ़े जलंधर वाले पत्रकार ने खबर दी है कि कमीशन ने यह मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महिला सुरक्षा विभाग को भी भेज दिया है। ये शिकायत कानूनी अधिकार ऑब्जर्वेटरी एलआरओ वालों दायर की गई है। इस दौरान आप पंजाब के महिला विंग के सूबा प्रधान से मोगा तो विधायक डॉ अमनदीप कौर अरोड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस च दसिया कि साबका जस्टिस रणजीत सिंह वालों सीएम मान की सुपत्नी से लाए इल्जाम बेबुनियाद ने और उन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2: रणजीत सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हां ते झूठे इल्जाम लगाए जिस दा नोटिस अज डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी ने उन्हां नूं भेज दिता लीगल नोटिस कि 24 घंटे दे विच माफी मंगण नहीं तां अदालत दे विच ओ पेश होण।
1: भारतीय हवाई फौज ने हवाई कुशलता अते जंग दे मैदान विच समर्था वधाउण लई सरहदी सूबे पंजाब विच अत आधुनिक ड्रोना दी अपनी पहली बास बटालियन कायम कीती है। ए बटालियन आसमान विच अखां वजों काम करेगी अते जंग दे मैदान विच भी कुशलता नूं वधाएगी। साडे जलंधर वाले पत्रकार ने खबर दित्ती है कि वज्र कोर जां फौज दी 11 कोर जिस नूं पंजाब दे रक्षकां वजों जाणिया जांदा है बास बटालियन नूं संचालित करन वाली पहली कोर है। बास नां शिकारी पंछी तों लिया गया है। एक्स ते इक सोशल मीडिया पोस्ट विच वज्रकोर दे जनरल अफसर कमांडिंग जीओसी ने सारे रैंकां नाल बटालियन नूं इसदे स्थापना दिवस ते शुभकामनावां दित्तियां ने। बास चलाउण वालियां ते योद्धियां नाल गल्लबात करदिआं जीओसी ने जोर दे के कहा कि तकनालोजी नवीनता ते संचालन महारत भविख दे जंग दे मैदान लई हवाई कुशलता नूं होर वधाएगी। सरकारी विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल पटियाला के अध्यापक श्री दिनेश कुमार ने सिक्ख्या खेत्र विच मिसाली योगदान लई वक्कारी कौमी अध्यापक अवार्ड 2026 जीत के पंजाब का नां रोशन किया है। जिक्र योग है कि यह अवार्ड जो कि देश भर विच अध्यापकां लई सर्वोच्च सम्मान विचों एक है सिक्ख्या के खेत्र विच बेमिसाल कारगुजारी नवे विचारां ते समर्पित भावना नूं मानता दिंदिआं हर साल 5 सितंबर नूं अध्यापक दिवस मौके भारत के राष्ट्रपति वल्लों प्रदान किया जांदा है। श्री दिनेश कुमार नूं वधाई दिंदिआं पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने उन्हां नूं सूबे दे समुच्चे अध्यापक भाईचारे लई प्रेरणा स्रोत दस्सिआ। पंजाब सरकार वालों आशीर्वाद स्कीम तहत माली साल 2025-26 ते 2026-27 दौरान हुण तक 75,199 लाभपात्रियां नूं 383 करोड़ रुपए तो वधी माली सहायता जारी की गई है। ए जानकारी दिंदिआं पंजाब दे समाजिक न्याय अधिकारिता ते घट गिणती मंत्री डॉ बलजीत कौर ने दस्सिया कि माली साल 2025-26 दौरान पंजाब सरकार वालों पट्टीदर्ज जात नाल संबंधित 42,203 लाभपात्रियां नूं तियां दे 42,215 करोड़ रुपए तो वध जारी कीते गए। इस तों इलावा आर्थिक तौर ते कमजोर वर्गां ते पछड़ियां श्रेणियां नाल संबंधित 20,212 लाभपात्रियां नूं 103 करोड़ रुपए तो वध दी माली सहायता प्रदान की गई। उन्होंने भी दस्सिया कि माली साल 2026-27 दौरान हुण तक पट्टीदर्ज जात वर्ग के 8,774 लाभपात्रियां नूं 44 करोड़ रुपए तो वध अते आर्थिक तौर ते कमजोर वर्गां ते पछड़ियां श्रेणियां के 4,010 लाभपात्रियां नूं 20 करोड़ रुपए तो वध दी सहायता जारी की गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पारदर्शिता अते प्रभावशाली सेवा प्रदान करन नूं यकीनी बनाउण लई माली सहायता सीधे लाभ तबादले डीबीटी प्रणाली राहीं सीधा लाभपात्रियां दे बैंक खात्यां विच जमा करवाई जांदी है जिस नाल रकम दी समय सिर ते पारदर्शी वंड यकीनी बनदी है। ग्रेटर मोहाली एरिया विकास अथॉरिटी गमाडा ने जायदादां दी नीलामी संबंधी हुण तक दी अपनी बेहतरीन कारगुजारी 27 जायदादां नूं सफलता नाल नीलाम करके कुल 5,391 करोड़ रुपए दी आमदन प्राप्त कीती है। इस संबंधी जानकारी सांझी करदिआं पंजाब दे मकानां दी उसारी ते शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने दस्सिया कि 20 जुलाई नूं शुरू होई नीलामी विच कुल 36 जायदादां बोली लई पेश कीतीआं गईआं सन। श्री मुंडिया ने दस्सिया कि नीलामी विच पेश कीतीआं जायदादां दी राखवीं कीमत 3,872 करोड़ रुपए रखी गई सी ते इन्हां नूं नीलाम करके अथॉरिटी ने कुल 5,391 करोड़ रुपए दा मालिया प्राप्त कीता है। उन्हां कहा कि यह आमदन गमाडा दे अधिकार खेत्र अधीन आउंदे इलाके विच नवीआं अर्बन स्टेटां विकसित करन उत्ते खर्च कीती जाएगी। कपूरथला दे डिप्टी कमिश्नर आकाश बांसल ने 30 अगस्त नूं होण वाली आउंदी नीट पीजी प्रीख्या दीआं तैयारियां दा जायजा लिया ते संबंधित अधिकारियां नूं प्रीख्या दे निर्विघन संचालन लई व्यापक प्रबंध करन दे निर्देश दित्ते। डिप्टी कमिश्नर ने एक निजी यूनिवर्सिटी विच बनाए गए प्रीख्या केंद्रां दा दौरा कीता ते उम्मीदवारां ते प्रीख्या स्टाफ लई कीते जा रहे प्रबंधां दा जायजा लिया। उन्हां संबंधित अधिकारियां नाल गल्लबात कीती अते यकीनी बनाउण लई जरूरी दिशा निर्देश जारी कीते कि सारे प्रबंध समें तों

0: ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀ ਔਜਲਾ ਦੇ ਗਾਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 MHz ਤੇ।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
2: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी,
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 MHz ਤੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸਪੌਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗਨ ਇੰਡੀਆ।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं AIR FM और अब समय हो गया है ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक उपहार का।
4: ब्रॉट यू बाय TVS क्रेडिट, इजी लोन्स फॉर ऑल योर नीड्स।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूं। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ पराशर फाउंडेशन की पहल है, जो अंगदान, उत्तक दान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
2: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, मैं हूं आरजे सागर। आज को हूं लेकर के प्रोग्राम जीवन एक अनमोल उपहार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय जयपुर से। डॉक्टर संजय एक किडनी रेसिपिएंट हैं, इनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद एक डॉक्टर हैं, तो और कुछ इनसाइट्स हमें मिल पाएंगे। हाय सर, वेलकम टू आवर शो।
3: थैंक यू सागर, थैंक यू वेरी मच।
2: सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, आप प्लीज अपने चाइल्डहुड के बारे में।

0: थोड़ा सा बताइए, हाउ वाज इट ऑल अबाउट, कि कैसा सा आपका बचपन रहा है?
1: मेरा बचपन से जो थोड़ा इंक्लिनेशन था वो स्पोर्ट्स की तरफ था, तो और बहुत सारे अवार्ड्स मैंने जीते हैं, तो मेरा चाइल्डहुड पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज्यादा रहा है मेरा।
0: और आपके घर में लाइफस्टाइल कैसा सा हुआ करता था, खाना, डाइट और जो एक डिसिप्लिन लाइफ होती है उसके बारे में और थोड़ा जानना चाहूंगा।
1: बिकॉज मेरा 72 का बॉर्न मेरा बर्थ है, तो उन दिनों जो फैमिली स्टाइल होती थी पुराने टाइप के हिसाब से, हम लोग के घर में प्योर वेज खाना, घी वगैरह चलता था। वो फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, वो काफी फिट थे, हेल्दी नहीं, ही वाज 93, तो हमारी फैमिली के अंदर हमेशा खाने पे बहुत ध्यान दिया गया, हाइजीन हमेशा मेंटेन किया।
0: कैसे होता है ये, मतलब आपकी किडनीज में प्रॉब्लम आनी कैसे शुरू हुई, कुछ अगर चीजें आप आइडेंटिफाई करके बता पाए अपनी लाइफ में?
1: देखिए, स्कूल के बाद मैंने कॉलेज किया, कॉलेज के अंदर से मैंने MBBS किया, MBBS के मैंने MD किया, लाइफ बहुत कूल थी, प्रैक्टिस सब बढ़िया चल रही थी। ये बात है करीबन आज से 2 साल पहले की, तब तक सब कुछ परफेक्ट ही, ऑलराइट, लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। 2022 के अंदर मेरे को आफ्टर कोविड एक बार फीवर शुरू हुआ शाम के टाइम पे मेरे को अचानक से, तो 2-3 दिन बाद फीवर रहने के बाद मुझे लगा समथिंग इज रॉन्ग, कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों फीवर हो रहा है। तो मैंने अपने टेस्ट डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा वेट करो, बट मैं थोड़ा सा एग्रेसिव रहता हूँ अप्रोच, तो मैंने फटाफट अपने टेस्ट कराए, टेस्ट में कुछ करीब प्रॉब्लम्स आई, तो वो डॉक्टर से मैं दिखाया, तो उनको लगा नॉर्मल है, तो उन्होंने थोड़े बहुत एडवाइस किया, पर फिर मुझे लगा नहीं प्रॉब्लम कुछ और है, तो मैंने एक्सरे कराया, तो एक्सरे में मेरे एक लीजन था कुछ, तो उस एक्सरे में लीजन के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। शुरू में डायग्नोसिस बनने में बहुत प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे बहुत लेट मेरा डायग्नोसिस बना, दैट वाज वेस्कुलाइटिस, तो वो एक सिंड्रोम होता है वैगनर्स रेलबिडोसिस, विच इज वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है, मेरे को ऑटोमेटिक डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ, और उसकी दवाइयाँ शुरू हो गई थी, और मैं धीरे धीरे रिकवरी हो रही थी उस चीज़ से मेरे को, बट 4th या 5th डोज के बाद मेरे लंग में कुछ पैच बना, तो पैच बनने के बाद वो वहाँ पे थोड़ा सा मिसडायग्नोस हुआ, डॉक्टर्स को लगा ये फंगल है, तो वो प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बनने की वजह से, और मुझे कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दी गई जिसकी वजह से मेरी किडनी डैमेज हो गई, और मैं फिर डायलिसिस पे रहा करीबन 1.5 साल तक, और वो टाइम थोड़ा अजीब सा इसलिए लगा मेरे को कि बीइंग ए डॉक्टर मेरे साथ में ऐसा अनफॉर्चुनेट हुआ कि दे कुड नॉट मेक ए प्रॉपर डायग्नोसिस, तो वो मेरी लाइफ का सबसे एक यू टर्न था उस टाइम पे, और उसकी वजह से कुछ एंटीफंगल ड्रग्स दी गई मेरे को, तो जिसकी जरूरत नहीं थी मेरे को, उसकी वजह से मेरी वो किडनी वहाँ पे डैमेज हो गई, पर डॉक्टर से ट्राई किया कि रिवर्ट हो जाए, पर अनफॉर्चुनेटली वो रिवर्ट नहीं हो पाई। तो
0: वन मोर फैक्टर इज देयर सर, स्ट्रेस की बात करना चाहूंगा मैं, आज के लाइफस्टाइल में बहुत बहुत बड़ा एक फैक्टर हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है, लाइक डज इट प्ले अ रोल?
1: यस डेफिनेटली मिस्टर सागर, स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है आज की तारीख में, सबसे इम्पोर्टेंट रोल स्ट्रेस का है, बिकॉज स्ट्रेस सीधा रिलेशन है आपका हेल्थ से, जैसे स्ट्रेस होता है आपका BP बढ़ता है, आपको स्ट्रेस होता है आपको टेंशन होती है, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगेन BP बढ़ती है आपकी जो धमनियां होती है, जो आर्टरीज होती है वो सिकुड़ना शुरू करती है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है, एक फर्दर कारण है किडनी डैमेज होने का।
0: जी जी सर, कोई ऐसी चीजें, कुछ ट्रिक्स या कुछ ऐसे टिप्स आप देना चाहेंगे जिसमें हम लोग डील कर सके स्ट्रेस से, बिकॉज यू आर इनटू अ प्रोफेशन जहां पर आप शायद एक सही इंसान है उस चीज का जवाब देने के लिए, कि कैसे हम लोग कोप अप कर सकते हैं अपने स्ट्रेस के साथ?
1: टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज, टाइम मैनेजमेंट, आपको एक पर्टिकुलर टाइम आपके लाइफ में आपको सब चीजें सिखा देता है, आपको मॉर्निंग के अंदर एक टाइम देना पड़ेगा अपने हेल्थ को, एक घंटा चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एक घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालना है, टाइम पे खाना, अगर मुझे 8 से 9 के बीच ब्रेकफास्ट करना है इस टाइम के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट और हेल्थ को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर।
0: वन मोर एस्पेक्ट आई वॉन्ट टू आस्क, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स एंड शुगर बेवरेजेस हमारी लाइफ का एक बहुत कॉमन पार्ट बन गई है, वेस्टर्न कल्चर को हमने इतना क्विकली अडॉप्ट किया है कि ये चीजें मतलब हर एक हाउस होल्ड में हमें मिल जाएंगी, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, या ये क्या मैं बोल सकता हूँ ये स्लो पॉइजन है हमारी लाइफ में?
1: सर एग्री, स्लो पॉइजन है, आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने अपनी लाइफ के अंदर इतना कम बाहर खाना खाया, मैंने हमेशा होममेड कुक ही खाना खाता हूँ मैं, और मैं सबको एडवाइस करूंगा कि लोग वीक में 4-4, 5-5 बार जाके नाइट आउट वो खाना बाहर खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, होटल्स में रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, ये नहीं खाना चाहिए। आजकल जो खाने में अल्ट्रेशन हो रहा है, सबसे मेन कॉज जो होता है इंजरी का बॉडी के अंदर वो होता है अल्ट्रेशन, फूड अल्ट्रेशन। आज जो बाहर खाना मिल रहा है सर, यू वोंट बिलीव, वो इतना गद्दा खाना होता है आप सोच नहीं सकते, मैक्सिमम बीमारियों की जड़ ही वो खाना है जो बाहर खा रहे हैं। एटलीस्ट घर पे आप जो खाना बना रहे हो जानते हो हम क्या बना रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। आज मेरी वाइफ जो खाना घर पे जो खाना बनता है, ट्रांसप्लांट के बाद तो खाना इतना और ज्यादा प्यूरिफाइड हो गया, आप सोच नहीं सकते, बर्तन को उबालना, इसको उबालना, ये नॉर्मल रूटीन होना चाहिए आज के दिन में खाना खाने के लिए सर, खाने का बहुत बड़ा रोल है सर।
0: जी जी जी दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, जो खुद एक MBBS है, खुद एक MD है और खुद उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि आपके जीवन के ऊपर आप जो खाते हैं उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए बी माइंडफुल अबाउट इट जो भी आप चीजें खा रहे हैं। और हम लोग बोलते हैं अमूमन कि हम लोग घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन घर को भी हमने कितना रेस्टोरेंट बनाया हुआ है,

0: ये भी एक बहुत मेजर क्वेश्चन उठता है कि आपके घर में कितना खाना है जो बंद पैकेट में आ रहा है। अगर आप अपने घर पर नूडल्स खा रहे हैं जो पैकेट में बंद होकर के आई है, तो आप उसको घर का खाना नहीं बोल सकते हैं। घर के खाने का जो अब यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, दैट मींस कि जो हम फ्रेश अपना खाना घर पे बनाते हैं। सर, मैं बात करना चाहूंगा आपके उस फेज के बारे में। उस फेज को थोड़ा अच्छे से बताइए, डायलिसिस से लेकर ट्रांसप्लांट तक की वो जो पूरी एक जर्नी थी वो कैसी थी, क्या थॉट्स थे, क्या सब बातें आपके घर में हुआ करती थी, प्लीज वो बताइए।
1: सागर, जब मुझे पता पड़ा कि मेरी किडनी डैमेज हो गई है और डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं रिवर्ट करने का, तो आई वाज सो एक्साइटेड कि चलो ठीक है, कुछ टाइम बाद आई विल बिकम नॉर्मल, वापस से मेरी हेल्दी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं बहुत होपफुल था। शुरू के अंदर जब मैं फर्स्ट टाइम डायलिसिस पे गया तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मतलब सुनते थे डायलिसिस पे ऐसा होता है, वो सब चीज़ें मेरे साथ होना शुरू हो गई। डायलिसिस के थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो मेरे साथ हुए, बट आई ऑलवेज स्टेड पॉजिटिव कि हाँ आई विल कम आउट ऑफ इट। उसके बाद एक टर्म होती है प्लाज्माफेरेसिस, उसके अंदर भी ब्लड को फिल्ट्रेशन करते हैं ऑटो एंटीबॉडीज बाहर निकालने के लिए, वो एक प्रोसेस के थ्रू गया मैं। डेफिनेटली पेन था, सफरिंग थी, पर हमेशा एक पॉजिटिव होप मैंने रखी कि नहीं आई विल बी ऑल राइट कुछ टाइम बाद। तो बींग स्पोर्ट्समैन कहीं ना कहीं शायद फाइटिंग इंस्टिंक्ट मेरे पे थी शायद उसकी वजह से, पर हाँ मैं ये बोलूँगा कि अगर पेशेंट कोई भी डायलिसिस में जाता है तो उसको डीमोटिवेट नहीं होना है, बिकॉज डायलिसिस इज नॉट एंड ऑफ योर लाइफ। डायलिसिस किडनी ट्रांसप्लांट सबसे सेफ चीज़ होती है, ट्रांसप्लांट आराम से हो जाता है, 98% चांसेस होते हैं अच्छे तरीके से ट्रांसप्लांट होता है। तो मैं उसी उम्मीद से रहा, मुझे थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन भी हुई, इचिंग बॉडी में बहुत ज़्यादा थी मेरे को, बहुत प्रॉब्लम हुई पीछ पीछ के अंदर, बट मैं हमेशा पॉजिटिव रहा लाइफ के अंदर कि हाँ सब चीज़ ठीक होता। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, आपको डिप्रेस नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, 3-4 घंटे आपकी लाइफ के जाते हैं उस चीज़ के अंदर डायलिसिस के अंदर, बट कैसे ना कैसे टाइम निकलता है सर। तो वही मैंने देखा और आज मैं भगवान का बहुत ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ कि आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं सारे काम कर रहा हूँ। लोग कहते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट लाइफ नियर टू नॉर्मल हो जाती है, पर मेरा फंडा अलग है, मेरा कहना है लाइफ बेटर देन नॉर्मल हो जाती है लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट।
0: सर, आपको ऑर्गन किसने दिया, आपको किडनी किसने दी?
1: मेरी फैमिली में दिया था मेरे को।
0: बट काफी सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको नहीं मिल पाते हैं टाइमली ऑर्गन्स और अपनी जान वो गंवा देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, भारत में हर रोज पता नहीं कितने ही लोगों की जान जाती है। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस?
1: मुझे लगता है गवर्नमेंट को कुछ रूल्स के अंदर रिलेशन करना चाहिए ना कुछ चीजों के, ये कि मतलब किडनी कौन को डोनेट कर सकता है। अभी तक ये कि फर्स्ट जो आपके रिलेशन में वो किडनी डोनेट कर सकते हैं, आई थिंक कहीं फ्रेंड्स के लिए भी कुछ मेंशन किया है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैंने पता नहीं किया क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर किडनी मेरे को मिल गई थी। तो गवर्नमेंट को जो भी इस पर डील करते हैं उनको सोचना चाहिए कि किडनी कौन कौन दे सकते हैं और उसको कैसे लीगल तरीके से अपन उसको कर सकते हैं उस चीज को। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना है या फिर आप जैसे लोग जो है जिसमें काम कर रहे हैं ताकि किडनी आसानी से अवेलेबल हो जाए, पर कुछ ना कुछ होना चाहिए सर।
0: सर, सर्जरी का फेज कितना लंबा था, कितना टाइम लगा?
1: सर्जरी से बिल्कुल नहीं डरना, हालांकि मेरी राजस्थान के अंदर फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी मेरी हुई है। रोबोटिक सर्जरी में जो फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी राजस्थान में हुई मेरी हुई है। दिल्ली से डॉक्टर आए थे ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे, और सर्जरी में लगभग आई थिंक 4-5 आवर्स लगे थे मेरे को। रोबोटिक सर्जरी बिल्कुल पेनलेस थी, मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जो रूटीन सर्जरी होती है उसमें शायद पेन होता है हल्का फुल्का, बट वो टाइम आराम से निकल जाता है। 7 दिन जो होते हैं पोस्ट सर्जरी वो आराम से निकल जाते हैं बिल्कुल। तो इस पे पेशेंट को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत खींच होती है लोगों की ट्रांसप्लांट के बाद, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, डोनर भी बहुत घबराता है। तो मैं जितने भी लोग मेरे से मिलते हैं, मेरे को फोन आते हैं, मैं सबको मोटिवेट करता हूँ कि आप आके मुझसे मिलिए, मेरे साथ बैठिए, आपको पता ही नहीं पड़ेगा मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। आफ्टर 15 डेज ऑफ सर्जरी मैं बिल्कुल नॉर्मल था, एब्सोल्यूट नॉर्मल।
0: ओके सर, कोई भी ऐसी चीज जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आपके मन में हो आप लोगों से कहना चाहते हो प्लीज फील फ्री।
1: मेरा लोगों से यही कहना है कि अगर किसी पेशेंट की किडनी डैमेज हो गई है, वो डायलिसिस पे है, तो अगर उसको किडनी लीगल तरीके से किसी मिलती है उसको किडनी लेके ट्रांसप्लांट जरूर करना चाहिए, बिकॉज लाइफ डायलिसिस पे कुछ लोग चलते हैं करते हैं, लेकिन अगर आपको ये चांस मिल रहा है मौका ट्रांसप्लांट का तो यू शुड गो फॉर इट। ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहती है, आई थिंक बेटर देन नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो आप बिल्कुल नॉर्मल। क्योंकि अभी मैं बहुत सारे काम शायद सागर जी मेरे से पूछे कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा था, आई विल एक्सप्लेन यू मैं अभी क्या करने वाला हूँ पिछले अगले 1-2 महीने के अंदर।
0: प्लीज सर, प्लीज प्लीज फील फ्री बताइए।
1: यस, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली सागर, मैंने जब मैं डायलिसिस पे था तो मैंने जब देखा लोगों की सफरिंग देखी तो मुझे लगा कि यार बहुत प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ प्लान मैं डेफिनेटली करूँगा आफ्टर ट्रांसप्लांट। और ट्रांसप्लांट करते करते मैंने सोचा था कि मैं एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट करूँगा क्रिकेट का, तो अभी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कर रहा हूँ 40+ डॉक्टर्स के लिए, जिसमें मोर देन 10 टीम्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, डॉक्टर्स कॉर्पोरेट लीग इसका नाम है, और बहुत बड़े बड़े ब्रांड मेरे साथ जुड़े हैं, बिकॉज मेरी फाउंडेशन का लॉन्च भी है इसके अंदर। उस फाउंडेशन के थ्रू मेरा प्लान है कि जयपुर के अंदर एक फ्री डायलिसिस यूनिट प्लान करने का आने वाले 2-3 साल के अंदर। मैं जो बचा हुआ लाइफ है वो मैनकाइंड के लिए करना चाहता हूँ काम, बेसिकली किडनी एंड हार्ट के पेशेंट के लिए।

0: सारे डॉक्टर मेरे से जुड़े हुए हैं इस फाउंडेशन के अंदर, तो ये लाइफ एक चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज।
1: जी। डू यू बिलीव कि इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए डायलिसिस बहुत डिफिकल्ट एक चीज़ है और उसके लिए होना चाहिए?
0: डिफिकल्ट होना चाहिए, होना चाहिए।
1: जी सर, मैं बस ये बोलना चाहूँगा ऑनेस्टली ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गन इंडिया, सर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। वी नीड मोर पीपल लाइक यू जिनको इतनी चीज़ समझ आती है कि ये प्रॉब्लम है और अगर हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं देन व्हाई नॉट।
0: श्योर थैंक यू सागर, थैंक यू वेरी मच, गुड टू टॉक टू यू।
1: थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। और दोस्तों आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया यहां तक इस शो को सुनने के लिए।
2: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में।
3: दोस्तों अंगदान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर संपर्क कर सकते हैं। अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सबको प्रेरणा दें।
4: ब्रॉट यू बाय TVS क्रेडिट, इजी लोन्स फॉर ऑल योर नीड्स।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।
3: सुन रहे सी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑर्गन इंडिया।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: अजी आकाशवाणी चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 मेगाहर्ट्ज से। अगला प्रोग्राम विशेष जयमाला। ये प्रोग्राम असी विविध भारती मुंबई तो रिले करांगे।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जानी मानी संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंदी जी के कल्याण जी ने।
1: फौजी भाइयों को कल्याण जी का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज फिर एक बार विविध भारती के माध्यम से आप तक मेरी आवाज पहुंचने का मौका मिला। फौजी भाइयों, आपके मनोरंजन के लिए कितने सालों से हम लोग फिल्मों में म्यूजिक देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज मेरे लिए एक बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि हमने कुछ 100 के ऊपर फिल्मों में म्यूजिक दिया है। हम जब भी कोई गाना बनाते हैं तो वह हमें जरूर प्यारा लगा होगा, तभी हमने बनाया होगा, लेकिन फिर भी गानों का कुछ डिवीजन होता है। जैसे मेरे हिसाब से मैंने गानों को 3 डिवीजन में बांटा है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। आप सब सोच रहे होंगे कि कोई डॉक्टर प्रोग्राम दे रहा है कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर दे रहा है प्रोग्राम, लेकिन इसमें ऐसा है कि जैसे होम्योपैथिक गाना, मतलब कि जब हम बनाते हैं तो हम खुद भी डाउट में रहते हैं कि ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और नहीं तो बिल्कुल नहीं लगता है। और एलोपैथिक गाना, जैसे

एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। आप सब सोच रहे होंगे कि कोई डॉक्टर प्रोग्राम दे रहा है कि कोई मेडिटेटर दे रहा है प्रोग्राम, लेकिन इसमें ऐसा है कि जैसे होम्योपैथिक गाना, मतलब कि जब हम बनाते हैं तो हम खुद भी डाउट में रहते हैं कि ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और नहीं तो बिल्कुल नहीं लगता है। और एलोपैथिक गाना जैसे हम लोग जब बनाते हैं तो सुनाते हैं तो इतना अच्छा लगता है, जैसे हम सुनाते जाते हैं ऐसे उसकी थोड़ा थोड़ा रिएक्शन आते जाता है और थोड़े दिनों के बाद इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आयुर्वेदिक गाना जो पहले सुनाते थे फिर खास नहीं लगता है, लेकिन जैसे आप सुनते जाएंगे ऐसे बार बार उसकी मिठास बढ़ती जाती है, और ऐसे लगता है कि सदियों तक हम ये गाना सुनते रहे, सदियों तक ये गाना हम सुनते रहे। तो ऐसे मैंने कोई तीन डिवीजन बनाए हैं, तो मैं आपको आज कुछ आयुर्वेदिक गाने सुनाता हूँ कि जिसमें भारतीय संगीत का काफी उसमें झलक दिखेगी आपको। तो लीजिए, आपको पहले मैं गाना सुना रहा हूँ सुहाग रात का, गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। ये लता मंगेशकर जी ने गाया है और हिंदी वर्जी का लिखा हुआ है।

अब इसके बाद और एक मैं आपको आयुर्वेदिक गाना सुनाता हूँ। ये गाने के पीछे एक कहानी है। ये गाना कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कन्हैया जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए और मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उसको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मना डीजी ने गाया हुआ है। आप ये गाना सुनिए आप।

अभी जो मैं आपको एक गाना सुना रहा हूँ वो फिल्म हिमालय की गोद में, मैं तो एक ख्वाब हूँ इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए, तो इसमें तो सही वाक्या हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुन लूँ। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफे सुनाया, उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ इस बाप से तू प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है। तो लीजिए कमर जलालाबादी का लिखा हुआ और मुकेश जी का गाया हुआ और विजय भट्ट जी का फिल्माया हुआ ये गाना सुनिए।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला। आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जानी मानी संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी ने। तो सुनिए कल्याण जी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग।

अब जो आप गाना सुनेंगे वो है फिल्म समझौता। समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। बोला गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफ़ी उलझनें कम हो जाती हैं। तो लता जी का गाया हुआ समझौता गमों से कर लो, जरूर सुनिए।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला। आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जानी मानी संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी ने। तो सुनिए कल्याण जी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम का शेष।

अब ये मेरा और काफी लोगों का प्यारा गाना सरस्वती चंद्र फिल्म का, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। मुझे लगता है इस गाने के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, ये आप सिर्फ सुनिए इस गाने को। इंदिवर जी का लिखा हुआ, फिल्म सरस्वती चंद्र का।

0: दर्शक फौजी भाइयों, आज के ये कुछ आयुर्वेदिक गीत आपको पसंद आए होंगे। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया था जानी मानी संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: वादा,
1: हाँ जी वादा।
0: आप है विविध भारती के संग।
4: असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz से। पेश ने मुख प्रदेशक खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने वध उत्पादन नू दंड देने की बजाय PLI स्कीम राही लाभ देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम बारे जागरूकता फैलाउण अते इस दे गायन नू उत्साहित करने लई एक देश व्यापी मुहिम शुरू करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब विच आम आदमी पार्टी ते पिछलियां चोणां दौरान औरतां अते नौजवानां नाल कीते गए वादियां नूं पूरा करन विच असफल रहण दा दोष लगाया। हरियाणा अध्यापक योग्यता प्रीख्या 2025 दे नतीजे घोषित कीते गए। तीनों पदरां लई कुल नतीजा 16.57% रहा। गोस्वामी तुलसीदास की जन्म वरेगंढ मनाउण लई कुरुक्षेत्र विच आयोजित एक प्रोग्राम विच 183 होनहार विद्यार्थियों नूं सन्मानित किया गया। राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमीशन ने पंजाब सरकार नूं मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी वल्लों कथित तौर पर बलात्कार के एक मामले नूं दबाउण लई 5 करोड़ रुपए की मंग करन दे इल्जाम ते नोटिस जारी किया। केंद्र सरकार ने टैलीविजन चैनलों लई 12 मिनट की वध तो वध विज्ञापन की मियाद हटाउण बारे नोटिफिकेशन जारी किया। हरियाणा सेहत विभाग की वधीक मुख सकत्तर डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने 8 जच्चा ते बच्चा सेहत विंगा दे निर्माण विच तेजी लियाउण अते 1 नवंबर तक सारियां विशेष नवजात देखभाल इकाइयां नूं जच्चा बच्चा देखभाल इकाइयां विच बदलण दे निर्देश दित्ते। हरियाणा दे सिक्ख्या मंत्री महिपाल टांडा ने अज चरखी दादरी दे कैप्टन जिले सिंह स्कूल कैंपस विच 59वें 3 रोज़ा राज पदरी स्कूल कबड्डी खेड मुकाबले का उद्घाटन किया। मुख प्रदेशक खबरां खत्म होईयां। तेलों हुण सुनो कुछ पंजाबी गीत।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। सुनो कहानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह है सुनो कहानी कार्यक्रम का सीजन टू। सीजन वन में हमने आपको सुनवाई मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानियां। इस सीजन में आप सुनेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी। आज सुनिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी काबुलीवाला। ये इस कहानी का पहला भाग है।

मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से पल भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। दुनिया में आने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ एक ही वर्ष लगाया होगा। उसके बाद से जितनी देर तक वो सो नहीं पाती है, उस समय तक का एक पल भी वो चुप्पी में नहीं रहती। उसकी माता बहुधा डांट फटकार कर उसकी चलती हुई जबान बंद कर देती है। मुझसे ऐसा नहीं होता। मिनी का मौन मुझे ऐसा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है कि मुझसे वो अधिक देर तक सहा ही नहीं जाता। यही कारण है कि मेरे साथ उसके भावों का आदान प्रदान कुछ अधिक उत्साह के साथ होता रहता है। अब सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर आरंभ कर दिया कहना, बाबूजी रामदयाल दरबान कल काक को कौआ कहता था, वो खुद जानता ही नहीं है ना बाबूजी। विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। बाबूजी भोला कहता था आकाश ना मुंह से पानी फेंकता है, इसी से बरसात होती है ना। अच्छा बाबूजी भोला झूठ मूठ कहता है ना, खाली बक बक किया करता है, दिन रात बकता रहता है। इस विषय में मेरी राय की तनिक भी परवाह न करते हुए चट से धीमे स्वर में एक जटिल प्रश्न कर बैठी, बाबूजी अच्छा ये बताइए माँ तुम्हारी कौन लगती है? मन ही मन मैंने कहा, साली लगती है मेरी। लेकिन उससे कहा, अब मिनी तू जा भोला के साथ खेल, मुझे अभी काम है। अच्छा, तब उसने मेरी

मेज के पार्श्व में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटने और हाथों को हिला हिलाकर बड़ी शीघ्रता से मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटा के कहना आरंभ कर दिया। जबकि मेरे उपन्यास के अध्याय में प्रताप सिंह उस समय कंचनमाला को लेकर रात्रि के प्रगाढ़ अंधकार में बंदीगृह के ऊंचे झरोखे से नीचे कलकल करती हुई सरिता में कूद रहे थे। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। सहसा मिनी अपने अटकन बटकन को छोड़कर कमरे की खिड़की के पास दौड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुलीवाला, काबुलीवाला। मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर कुल्ला रखे, उस पर साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की मैली झोली लटकाए, हाथ में चमन के अंगूरों की कुछ पिटारियां लिए एक लंबा तगड़ा सा काबुली मंद चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी बेटी के हृदय में कैसे भाव उदय हुए वो बताना असंभव है। उसने

0: नीचे कल कल करती हुई सरिता में कूद रहे थे। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। सहसा मिनी अपने अटकन बटकन को छोड़कर कमरे की खिड़की के पास दौड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी,
1: काबुली वाला, काबुली वाला।
0: मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर कुल्ला रखे, उस पर साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की मैली झोली लटकाए, हाथ में चमन के अंगूरों की कुछ पिटारियां लिए एक लंबा तगड़ा सा काबुली मंद चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी बेटी के हृदय में कैसे भाव उदय हुए वो बताना असंभव है। उसने जोरों से पुकारना शुरू किया। मैंने सोचा अभी झोली कंधे पर डाले सर पर एक मुसीबत आ खड़ी होगी और मेरा 17वां अध्याय आज अधूरा रह जाएगा, किंतु मिनी के चिल्लाने पर जो ही काबुली ने हंसते हुए उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, त्यों ही मिनी भय खाकर भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहां छिप गई। उसके छोटे से मन में वो अंधविश्वास बैठ गया था कि उस मैली कुचैली झोली के अंदर ढूंढने पर उस जैसी और भी जीती जागती बच्ची निकल सकती है। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे हाथ उठाकर अभिवादन किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा वास्तव में प्रताप सिंह और कंचनमाला की दशा अत्यंत संकटापन्न है, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ ना खरीदना अच्छा ना होगा। कुछ सौदा खरीदा, उसके बाद मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। रहमत, रूस, अंग्रेज, सीमांत रक्षा के बारे में ये सारी गपशप होने लगी। अंत में उठकर जाते हुए उसने अपनी मिलीजुली भाषा में पूछा, बाबूजी आपका बच्ची कहाँ है? मैंने मिनी के मन से व्यर्थ का भय दूर करने के अभिप्राय से उसे भीतर से बुलवा लिया। वो मुझसे बिल्कुल लगकर काबुली के मुख और झोली की ओर संदेहात्मक दृष्टि डालती हुई खड़ी रही। काबुली ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकालकर देनी चाहिए, पर उसने न ली और दोगुने संदेह के साथ मेरे घुटनों से लिपट गई। उसका पहला परिचय इस प्रकार हुआ। इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक दिन सवेरे मैं किसी आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा था। देखता हूं तो मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से हंस हंस कर बातें कर रही है और काबुली उसके पैरों के समीप बैठा मुस्कुरा रहा है, उसे ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में अपनी राय मिली जुली भाषा में व्यक्त करता जाता है। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में बाबूजी के सिवाय ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। देखा तो उसका फिराक का अग्रभाग बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, इसे ये सब क्यों दे दिया भाई? हैं? देखो अब कभी मत देना। ये कहकर कुर्ते की जेब से मैंने एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी हिचक के अठन्नी लेकर अपनी झोली में रख ली। कुछ देर बाद घर लौटकर देखता हूं तो उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की मां एक सफेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांट डपट कर मिनी से कुछ पूछ रही है। तूने ये अठन्नी कहां पाई बता मुझे? काबुल वाले ने दे दी है। काबुल वाले से तूने अठन्नी ली कैसे बता मुझे? मिनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा,
1: मैंने नहीं मांगी थी, उसने अपने आप ही दी है।
0: मैंने जाकर मिनी की उस अकस्मात मुसीबत से रक्षा की और उसे बाहर ले आया। मालूम हुआ कि काबुली के साथ मिनी की ये दूसरी ही भेंट थी सो बात नहीं। इस दौरान वो रोज आता रहा है और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे दे कर मिनी के छोटे से हृदय पर बहुत अधिकार कर लिया है। देखा कि इस नई मित्रता में बंधी हुई बातें और हंसी ही प्रचलित है। जैसे ही मेरी बिटिया रहमत को देखती है हंसते हुए पूछती है,
2: काबुल वाला, काबुल वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है?
0: काबुली, जिसका नाम रहमत था, एक अनावश्यक चंद्रबिंदु जोड़कर मुस्कुराता हुआ उत्तर देता है,
1: हाँ बिटिया।
0: उसके प्रयास का रहस्य क्या है ये तो नहीं कहा जा

0: सकता। फिर भी इस नए मित्र को इससे अधिक विशेष खेल सा प्रतीत होता है। और जाड़े के प्रभात में एक सयाने और एक बच्ची की सरल हंसी सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। उन दोनों मित्रों में और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता है,
1: तुम ससुराल कभी नहीं जाना। अच्छा,
0: हमारे देश की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती हैं, किंतु हम लोग तनिक कुछ नई रोशनी के कारण तनिक सी बच्ची को ससुराल के विषय में विशेष ज्ञानी नहीं बना सके थे। अतः रहमत का अनुरोध वो स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाती थी। इस पर भी किसी बात का उत्तर दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के बिल्कुल ही विरुद्ध था। उल्टे वो रहमत से ही पूछती,
1: तुम ससुराल जाओगे?
0: रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त घूंसा तान कर कहता,
1: हम ससुर को मारेगा।
0: सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अनजाने जीव की दुरावस्था की कल्पना करके खूब हंसती। देखते देखते जाड़े की सुहावनी ऋतु आ गई। पूर्व युग में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए कूच करते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी कहीं नहीं गया, शायद इसीलिए मेरा मन ब्रह्मांड में घूमा करता है, यानी मैं अपने घर में ही चिरप्रवासी हूं। बाहरी ब्रह्मांड के लिए मेरा मन सर्वदा आतुर रहता है। किसी विदेश का नाम आगे आते ही मेरा मन वहीं की उड़ान लगाने लगता है। इसी प्रकार किसी विदेशी को देखते ही तत्काल मेरा मन सरिता पर्वत बीहड़ वन के बीच में एक कुटीर का दृश्य देखने लगता है और एक उल्लासपूर्ण स्वतंत्र जीवन यात्रा की बात कल्पना में जाग उठती है। इधर देखा तो मैं ऐसी प्रकृति का प्राणी हूं जिसका अपना घर छोड़कर बाहर निकलने में सिर कटता है। यही कारण है कि सवेरे के समय अपने छोटे से कमरे में मेज के सामने बैठकर उस काबुली से गपशप लड़ाकर बहुत कुछ भ्रमण का काम निकाल लिया करता हूं। मेरे सामने काबुल का पूरा चित्र खिंच जाता है। दोनों ओर ऊबड़ खाबड़ लाल लाल ऊंचे दुर्गम पर्वत हैं और रेगिस्तानी मार्ग, उन पर लदे हुए ऊंटों की कतार जा रही है। ऊंचे ऊंचे साफे बांधे हुए सौदागर और यात्री कुछ ऊंट की सवारी पर हैं तो कुछ पैदल ही जा रहे हैं। किसी के हाथों में बर्छा है तो कोई बाबा आदम के जमाने की पुरानी बंदूक थामे हुए है। बादलों की भयानक गर्जन के स्वर में काबुली लोग अपनी मिलीजुली भाषा में अपने देश की बातें कर रहे हैं। मिनी की मां बड़ी वहमी तबीयत की है। राह में किसी प्रकार का शोरगुल हुआ नहीं कि उसने समझ लिया कि संसार भर के सारे मस्त शराबी हमारे ही घर की ओर दौड़े आ रहे हैं। रहमत काबुली की ओर से भी वो पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष नजर रखने के लिए मुझसे बार बार अनुरोध करती रहती। जब मैं उसके शक को परिहास के आवरण से ढकना चाहता तो मुझसे एक साथ कई प्रश्न पूछ बैठती। अरे, क्या कभी किसी का लड़का नहीं चुराया गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते? क्या एक लंबे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे बच्चे का उठा ले जाना असंभव है? ये सारे प्रश्न मुझे मानना पड़ता कि ये बात नितांत असंभव हो सो बात नहीं, पर भरोसे के काबिल नहीं। लेकिन केवल इसलिए बिना किसी दोष के रहमत को अपने घर में आने से मना न कर सका। हर वर्ष रहमत माघ मास में लगभग अपने देश लौट जाता है। इस समय वो अपने व्यापारियों से रुपया पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता है। उसे घर घर दुकान दुकान घूमना रहता है। लेकिन फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार अवश्य हो जाती है। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के मध्य किसी षड्यंत्र का श्री गणेश हो रहा है। जिस दिन वो सवेरे नहीं आ पाता उस दिन देखूं तो वो संध्या को हाजिर है। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढाले जामा पाजामा पहने झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच में ही मन में अचानक भय सा पैदा हो जाता है। लेकिन जब देखता हूं कि मिनी ओ काबुल वाला ऐसा कहकर पुकारती हुई हंसती हंसती दौड़ती आती है तो दो भिन्न भिन्न आयु के असम मित्रों में वही पुराना हास परिहास चलने लगता।

0: लगता है तब मेरा सारा हृदय खुशी से नाच उठता है। तो दोस्तों, सुनो कहानी के सीजन 2 की आज ये पहली कहानी आपने सुनी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी काबुलीवाला, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। अगले हफ्ते इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग सुनना ना भूलिएगा, कार्यक्रम वही सुनो कहानी हवा महल के अंतर्गत।
1: सुनो कहानी।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म रेड 2 से, आवाजें परंपरा टंडन और सचेत टंडन की थी। गीत के बोल कौसर मुनीर के और संगीत सचेत परंपरा का।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है.
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने. उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया.
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी. तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है.
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे.
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है.
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़. सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल.
5: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी.
6: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है.
5: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे.
6: तेरा जवाब नहीं,
5: छिड़ता है मोहब्बत का राग.
6: प्यार का राग सुनो रे.
5: बजता है छाया गीत विविध भारती से.
6: सदा रही है, सदा रहेगी.
5: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत.

श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से। आवाज जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के और संगीत जोश ब्रार और आगास का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म जवान से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार के और संगीत अनिरुद्ध रामचंद्र का।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की, संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी

0: माता बहने उनका सम्मान सौभाग्यता किया जाए।
1: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
0: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे, तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है, तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉ. सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉ. सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा

0: कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
1: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क एसेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारो भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉक्टर अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उड़ीसा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
2: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कालाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और एफआईएच हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से, आवाज अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल संदीप श्रीवास्तव के और संगीत प्रीतम का।
1: कुमा, कुमा।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेलुलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता ने गीत आपने सुना फिल्म आंखों की गुस्ताखियां से, आवाज विशाल मिश्रा की थी, गीत और संगीत भी विशाल मिश्रा के ही थे।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म रंग दे बसंती से, आवाज़ ए आर रहमान और नरेश अय्यर की थी। गीत के बोल प्रसून जोशी के और संगीत ए आर रहमान का।
1: रुपहले पर्दे के एक अभिनेता,
2: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है। वो
1: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार,
2: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी, सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता, तो एक ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
1: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
2: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
1: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज़, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोता, एक गीत आपने सुना फिल्म अतरंगी रे से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शाह शाह तिरुपति की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

0: श्रोता गीत आपने सुना फिल्म साथिया से, आवाजें के कुणाल और प्रवीण मनी की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
5: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
4: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
5: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: नमस्कार।
1: तुम काला बाजार किसके लिए करते थे? रघुवीर के लिए।
2: रघुवीर के लिए?
1: जुर्म करने वाला चूंकि अपना बचाव नहीं करता और साफ अपने जुर्म को कबूल कर लेता है तो इसी से वो रहम का हकदार नहीं हो जाता। योर वर्शिप, आज तक जो कानून को दगा देता रहा अचानक आज वो शहीद बनने चला है। ये तो वही बात हुई कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। हमारा ही खून चूस चूस कर जो पलता रहा अचानक आज वो अपना खून हमें दान करने चलाया है। कड़ी से कड़ी सजा अदालत अगर ऐसे आदमी को नहीं देगी तो और किसे देगी।
0: ये आवाज फिल्म काला बाजार में उस मशहूर अदाकार की है जिसे दुनिया जानती है किशोर साहू के नाम से। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर।

गुजरे दौर के सिनेमा के चहेते दर्शकों के लिए किशोर साहू एक सुपरिचित नाम है। बहुआयामी प्रतिभा के कलाकार किशोर साहू ने 1937 से 1980 के बीच 22 फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1915 में तब के मध्य भारत और आज के छत्तीसगढ़ प्रांत के दुर्ग शहर में जन्म हुआ था किशोर साहू का। नागपुर के मॉरिस कॉलेज से उन्होंने बीए की पढ़ाई की थी। किशोर साहू के पिता रायगढ़ रियासत के दीवान थे। कॉलेज के दिनों से ही किशोर साहू कहानियां लिखा करते थे। अपने कहानी लेखन से ही वो सिने जगत के संपर्क में आए। तब के बंबई में उन्हें सिने जगत में पांव जमाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। मुंबई में अशोक कुमार और देविका रानी के प्रयासों से किशोर साहू को बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जीवन प्रभात में काम करने का मौका मिला। किशोर साहू ने कुछ अरसा मुंबई में और बिताया और फिर परिस्थितियों के चलते वापस नागपुर लौट गए। नागपुर में किशोर साहू के मित्र थे द्वारकादास डागा। उन्हीं के सहयोग से किशोर साहू ने बाद में मुंबई वापस लौटकर अपनी फिल्म निर्माण संस्था की नींव रखी। इस संस्था का नाम था द इंडिया आर्टिस्ट लिमिटेड। अपने इस बैनर तले उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई बहुरानी। अपने फिल्म बैनर तले किशोर साहू ने जो कुछ और मशहूर फिल्में निर्मित की उनके नाम हैं पूनम की रात, पुष्पांजलि, मयूर पंख और बेटी नैना साहू को लेकर बनाई गई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां।

किशोर साहू अभिनेता, निर्माता, निर्देशक बनने से पहले लेखक थे। कहानी लेखन पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उनकी ये प्रतिभा कई फिल्मों में नजर आती है। एक लेखक के रूप में उनकी चर्चित फिल्में हैं मयूर पंख, दिल अपना और प्रीत पराई, हरे कांच की चूड़ियां, औरत और तीन बहुरानियां। इस फिल्म की कहानी एक मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार, उसके आर्थिक स्थिति और परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों को रेखांकित करती है। दिल अपना और प्रीत पराई का लेखन करने के साथ साथ किशोर साहू ने इस फिल्म को निर्देशित भी किया था। इस फिल्म के गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: अपना।
1: निर्देशक के रूप में किशोर साहू की अन्य मशहूर फिल्में हैं 1942 की कुंवारा बाप, राजा, शरारत, वीर कुणाल, सिंदूर, साजन, 1948 की नदिया के पार, सावन आया रे, काली घटा, मयूर पंख, हैमलेट, किस्म का खेल, बड़े सरकार, गृहस्थी, घर बसा के देखो, हरे कांच की चूड़ियां, पुष्पांजलि, धुएं की लकीर और पूनम की रात।

फिल्म निर्देशक महेश कौल और साहित्यकार अमृतलाल नागर किशोर साहू के अभिन्न मित्रों में से थे। नागर जी ने किशोर साहू के लिए 3 फिल्में लिखी थीं, राजा, वीर कुणाल और कुंवारा बाप। फिल्म वीर कुणाल की नायिका थीं अभिनेत्री तनुजा और नूतन की मां शोभना समर्थ। सन 1942 में बनी फिल्म कुंवारा बाप और सन 1943 में बनी फिल्म राजा हास्य प्रधान फिल्में थीं। इनमें स्वयं अमृत

लाल नागर जी ने भी अभिनय किया था। किशोर साहू एक समर्थ अभिनेता थे। यूं तो उनके अभिनय से सजी कई फिल्में हैं, लेकिन जिन फिल्मों में उनके अभिनय को बहुत सराहना मिली उनमें से ही एक है फिल्म गाइड में किशोर साहू द्वारा निभाई गई रोजी बनी वहीदा रहमान के पति मार्को की भूमिका। ये गीत है फिल्म काली घटा का।

28 अगस्त सन 1986 को इस दुनिया में अपने जीवन रूपी रंगमंच की आखिरी भूमिका निभाकर किशोर साहू इस दुनिया से विदा हो गए। हमारे पास अब उनके अभिनय से सजीव फिल्में हैं और उनके परिजनों इष्ट मित्रों के पास हैं उनकी स्मृतियां।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का। संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमान में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

धड़कनों का कारवां जो कभी किसी के नाम से तेज हो जाता है, बहकने लगते हैं कदम, प्यार में किसी से मिलने की ऋतुएं भी इन वादियों में कई महकते हुए गुल खिला देती हैं, जिनकी रंगत किसी के हुस्न की मिसाल बनकर तन मन को उमंग से भर देती है और दिल

अंतराल के बाद छाया गीत में आप और हम आ गए हैं साथ साथ। पेश है मोहब्बत भरे दिलों की दास्तां। ये इजहारे मोहब्बत भी खूब रंग लाया, मेरे दिल की सदा उनके दिल की सदा बन गई। वो पहलू में आए और यूं बैठ गए जैसे चांद के पास चांदनी रहती है। उनका वो साथ, गर्म सांसों का एहसास, फिर ओठों पे उनके थिरकते गीतों की फुहार इस मुलाकात को और भी रोशन कर उठी। बस दिल की ना पूछिए, वो तो चुपके चुपके आहें भरने लगा।

भला कौन रोक सकता है दिल को जब नजरों से नजरें मिलती हैं, बिना कहे ही सारी बात हो जाती है। मोहब्बत के सफर पे चल पड़ते हैं जब दो दिल, तो ढूंढते हैं मंजिल एक होने की। महफिल में हो या खुली वादियों में, अपने प्यार का इजहार करने को बेताब रहती है दिल की धड़कनें। और जब मौसम हो इश्क का, तो कहने ही क्या, वो अपनी रूहानी रंगत में दिलों को रंग देता है। और खामोशी

लेकिन खामोशी बहुत देर तक कहाँ खामोश रह पाती है। जब बात आशिकों के दिलों की हो तो जुबां बोल पड़ती है, और हम सफर बनने तक के सफर में कई वादे कस्में दिल कर ही बैठता है। तभी तो एक दूसरे के मोहब्बत पर चाहत पर यकीन करने को दिल मचल उठता है। तभी तो ये गीत होठों पर खुद ब खुद सज उठता है।

0: कहीं ना कहीं इन गीतों ने आपके दिल को छुआ तो होगा, आपकी यादों ने दस्तक भी दी होगी। फिलहाल मुझे इस सफर से विदा लेनी होगी। प्यार भरे नमस्कार के साथ मंत्री वर्मा को अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: देखो टर्मरिक।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सामन्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मर क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर

0: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
1: प्रोग्राम का अगला गीत एमी विर्क मन्नत नूर की आवाज़ों में।

0: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
0: प्रोग्राम का अगला गीत जोश अते सुखबीर की आवाज़

0: ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਗਾਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुँचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
2: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बलों और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थांकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तंत्र श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य महत्वपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपये के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपये की सुनिश्चित आय देने वाला दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जाँच इकाई ने कहा कि ये वीडियो AI से तैयार किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और तैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है।

0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है और कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ। 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 5:55 'ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।